श्रोताओं, भक्ति की चर्चा हो और भक्तों का स्मरण न हो तो बात अधूरी रह जाती है। भक्ति के इतिहास में श्री हनुमान जी जैसा अद्भुत उदाहरण दुर्लभ है। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन प्रभु श्री राम समर्पित कर दिया। वे शक्ति, समर्पण, विनम्रता और अटूट विश्वास के प्रतीक हैं। कहा जाता है कि यदि हनुमान जी को प्रसन्न करना हो तो सबसे सरल उपाय है प्रभु श्री राम का स्मरण, क्योंकि जहाँ श्री राम है वहाँ हनुमान है, और जहाँ हनुमान है वहाँ साहस, सेवा और संरक्षण है। आइए अंजनी नंदन हनुमान जी को समर्पित यह भक्तिमय प्रस्तुति सुनते हैं।

श्रोता, भक्ति का मार्ग अत्यंत मधुर है, किंतु यह सदैव सरल हो ऐसा भी नहीं है। इस पथ पर साधक को अनेक परीक्षाओं और आकर्षणों का सामना करना पड़ता है। शास्त्र बताते हैं कि इन सब का मूल कारण है माया। यही माया जीव को संसार के विविध मोहों में बांधती है, और यही शक्ति जब कृपा करती है तो वही जीव भक्ति के माध्यम से मुक्ति के पथ पर अग्रसर हो जाता है। सृष्टि की आदि शक्ति जग जननी माँ भगवती कृपा के बिना न भक्ति संभव है और न ही आत्मोन्नति। आइए माँ पार्वती के दिव्य स्वरूप को उनकी महिमा का गुणगान करते हुए अगली प्रस्तुति सुनते हैं।

मधुर और भक्तिमय वातावरण के साथ आज का हमारा कार्यक्रम वंदना यहीं संपन्न होता है। ईश्वर से प्रार्थना है कि आपका दिन मंगलमय हो, सुख शांति और समृद्धि का प्रकाश बना रहे। इसी शुभकामना के साथ मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। आइए,
1: ये कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जो संसार की भागदौड़ और मानसिक तनाव के बोझ तले दब चुका। संपत्ति और सुख सुविधा के सब साधन थे, लेकिन उसके हृदय में आत्मिक सुख और चैन का अभाव था। उसे ऐसा प्रतीत होता था जैसे कि वो एक अंतहीन दौड़ में दौड़ रहा है जिसका कोई गंतव्य नहीं है। शांति की अटूट खोज में वो व्यक्ति एक ऊंचे पर्वत के शिखर पर निवास करने वाले एक सिद्ध महात्मा के पास पहुंचा। उनकी आभा अत्यंत सौम्य और शांत थी। उसने महात्मा के चरणों में गिरकर अपनी व्यथा सुनाई और आंसू भरे नेत्रों से कहा, महाराज, मैं हर क्षण चिंताओं के सागर में डूबा रहता हूँ। मेरा चित्त कभी स्थिर नहीं रहता और मेरा मन हमेशा भारी रहता है। क्या मेरे जैसे अशांत जीव को कभी भी इस जीव

0: जीवन में सुख चैन प्राप्त होगा। महात्मा उसकी स्थिति बोले, वत्स, शांति का मार्ग अत्यंत सरल है, पर पहले तुम्हें मेरे साथ नीचे बहती हुई नदी के तट तक चलना हो। महात्मा ने एक मुट्ठी रेत उठाई और उस व्यक्ति को देते हुए कहा, इसे अपनी हथेली में भर लो और अपनी मुट्ठी को पूरी शक्ति का विशेष ध्यान रखना। जब तक हम वापस ऊपर मेरी कुटिया तक नहीं पहुंच जाते, तब तक तुम्हारी मुट्ठी जरा भी नहीं आज्ञा का पालन किया। आरंभ के कुछ पल उसको कोई कठिनाई नहीं हुई, वो बड़े आराम से महात्मा के पीछे चलने लगा। लेकिन जैसे जैसे पर्वत की कठिन और सीधी चढ़ाई चढ़ने लगा, उसके हाथ की मांसपेशियों में खिंचाव और पीड़ा होने लगी। मुट्ठी को निरंतर कसकर बंद रखने के कारण उसका पूरा हाथ जकड़ने लगा और उंगलियां थे। फूलों की सुगंध वायु में घुली हुई थी और शीतल पवन बह रही थी। उस व्यक्ति का ध्यान केवल अपनी मुट्ठी के उस असहनीय दर्द पर ही केंद्रित था। वो ना तो उन सुंदर दृश्यों को देख पा रहा था और न ही प्रकृति के मधुर संगीत को सुन पा रहा था। उसके मन में केवल एक ही विचार चल रहा था कि और कब वो इस मुट्ठी को खोलकर राहत पाए। कुटिया पर पहुंचते ही महात्मा ने उसकी ओर देखा और शांत स्वर में बोले, अब अपनी मुट्ठी को पूरी तरह, जैसे ही उसने अपनी मुट्ठी ढीली की, सारी रेत भूमि पर गिर गई और उस क्षण उसे जो शारीरिक और मानसिक संतोष प्राप्त हुआ वो अनिर्वचनीय था। उसका हाथ हल्का हो गया और वर्षों का बोझ जैसे उतर गया हो। महात्मा ने उसके चेहरे के भावों को पढ़ते हुए पूछा, वत्स, जब तुमने ये रेत पकड़ी हुई थी तब तुम्हें कैसा क्या अनुभव था? मेरा पूरा ध्यान केवल उस मुट्ठी की जकड़न पर था, इस कारण मैं मार्ग के दिव्य और प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद ही नहीं ले पाया। मुझे तो बस उस दर्द से मुक्ति चाहिए थी। महात्मा ने उसे अपने पास बैठाया और गंभीरता से समझाया कि पुत्र, ये मुट्ठी में दबी हुई रेत तुम्हारे अतीत की कड़वी स्मृतियां, पुरानी त्रुटियां और भविष्य की अनचाही चिंताएं हैं। तुम इन्हें जितने का वर्तमान उतना ही पीड़ादायक और कष्टकारी होगा। जब तक तुम इन व्यर्थ के विचारों को त्यागोगे नहीं, तुम्हें उस परम सुख की खोलने के बाद तुम्हें प्राप्त होता है। इस जीवन यात्रा में हम भी अक्सर उन बातों और यादों को हृदय से लगाकर बैठे रहते हैं। सुखों और उत्सवों को इसलिए नहीं मना पाते क्योंकि हमारा चित्त उन समस्याओं में उलझा रहता है जो या तो समाप्त हो चुकी है या जो अक्ष के गर्भ में है। जीवन की डोर उस परम सत्ता या विधाता के हाथ में सौंपकर अपने भीतर के अनावश्यक बोझ को उतार देना ही शांति का एकमात्र द्वार है। आज स्वयं से ये प्रश्न करें कि आपने अपने मन की मुट्ठी में कौन सा भारी बोझ दबा रखा है। उस बोझ को पहचानिए और उसे पूरी तरह विदा कीजिए। जैसे ही आप मोह और चिंता का त्याग करना सीखेंगे, शाश्वत शांति स्वयं आपके द्वार पर दस्तक देगी।
1: अभी आपने सुना आज का चिंतन। वाचक सर मनीष कुमार। मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। आइए आज के इस कार्यक्रम में बरसात के मौसम में पशुओं को सुरक्षित कैसे रखें, इस विषय पर हम आपको सुनवा रहे हैं ये जानकारी।
2: किसान भाइयों, बरसात का दिन शुरू हो तो का बाद में अपना घर छे तो अपना ज घर में पशु न की देखभाल कसी काय करना, ढोर डंगर न ख किस तरह से सुरक्षित रखा, ये जाननू बहुत जरूरी छे। क्योंकि इना ज मौसम में छे तो अपना ढोर डंगर न ख थनेला, खूर पका, मुँह पका, गलगटू जैसी बीमारी न को खतरो बढ़ी जाए। तो अपनी जो पशुशाला छे, जहाँ बाड़ो छे अपनो, ओखा अपन कसो काई रखा, ये जाननू भी जरूरी छे। क्योंकि हमारो पशुधन जो छे उका से हम बहुत अच्छो उत्पादन लेवाज। एका लेना सबसे पहले तो ये चाहिए कि जहाँ अपना ढोर डंगर नखा पन रखान, वो जगह सूखी होनी चाहिए। अच्छे तो जमीन जो छे वो सूखी होनी चाहिए। अगर ऐसो नहीं है तो वहाँ पर सूखी रेत या भूसो बिछे का ना रखो, ताकि वहाँ पर सूखो पन रहे। अपना जो पशु रहेगा तो उनका ठंडक भी ज़्यादा नहीं लगेगा और वो

सुरक्षित भी रहेगा। अगर बाड़ा में पानी भरी जाए से वहाँ मच्छर मक्खी अन्य कीड़ा मकोड़ा ये खूब ज़्यादा हो जाए, तो पानी की निकासी अच्छी रखा, जेका सी वहाँ खान पान को विशेष ध्यान रखा। खान पान अगर अच्छो रहेगा तो इना मौसम में उनको स्वास्थ्य अच्छो रहेगा। अपन देखा इन्हीं बखत में हरो चारो खूब ज़्यादा उग गया है ना, अपना ढोर डंगर हरो चारो खूब खाए, तो ये हरा चारा का ज़्यादा खाने से उनका पेट में अफारो हो जाए या पेट फूलने की बीमारी भी हो जाए। ऐसी वक्त में अपनों जो पशु छे वो घबराए उक छे तो बेचे नहीं होए, और ओका से अगर अपन दूध को उत्पादन ले रहा है तो वो भी ठीक से नहीं मिलते हैं। ध्यान रखा कि खूब ज़्यादा हरो चारो नहीं खिलाना चाहिए। साथ ही उनकी जो पानी पीना की टंकी छे या होदी छे ओखा ओमा छे तो ओखा अंदर से चूना सी पोती देवा, जेका सी छे तो पानी साफ भी रहे और पानी का असज उनका छे तो नमक भी इना मौसम में खाना का देना चाहिए। नमक की जो डल्ली हो उनका खाना या डल्ली रखा, जेका सी वो ओखा चाटी सकन नमक भी ले सकन। बीमारी न सी बचाव का लेना छे तो अपना का टीकाकरण तो बहुत जरूरी छे, इनको टीकाकरण जरूर से करवाना चाहिए। साथ ही इन्हीं बखत में उनका पेट नमक कृमि खूब हो जाए, तो कृमि ज़्यादा होने की वजह से भी अपना खर्चे तो अपनों जो पशु छे वो बेचैन रहे बीमार हो जाए, तो कृमि की दवा भी उनका देता रहा, जेका से हमेशा उनको पेट अच्छो रहे और वो स्वस्थ रहे। थनेला रोग इन्हीं बखत में हुई जाए, खुरपका मुँह पका रोग में छे तो जो पशु न का थन छे वो खूब ज़्यादा फूली जाए, तो उनका छे तो रोज साफ करा ओमा छे तो जब भी अपन दूध निकाला तब तो उनका इसी साफ करी का ना पोटेशियम परमैंगनेट जो दवा हो ओका सी धोवा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा और अपना पशु का ये बीमारी नहीं।

0: तो हमारा सभी किसान भाई बहन इन्हीं बात को ध्यान रखा।
1: अभी आप सुन रहे थे खेती की बातें। बारिश के मौसम में पशुओं की 1.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। आइए सुने श्री रामचरितमानस गान का आज का प्रसंग।

श्री रामचंद्र के ब्रह्म होने के संबंध में पूछे गए पार्वती के प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान शिव उनकी इस शंका को लोक कल्याणकारी बताते हैं। जिन्होंने अपने कानों से भगवान की कथा नहीं सुनी उनके श्रवण रंध्र सांप के बिल के समान हैं। जिन्होंने संतों के दर्शन नहीं किए उनकी आंखें की नकली आकृतियों के समान हैं। जिसके हृदय में भगवत भक्ति नहीं वो प्राणी मृतक के समान है। भासे श्री राम का गुणगान नहीं हुआ वो मेढक की जीभ के समान है। वो हृदय वज्र के समान कठोर होता है जो प्रभु चरित का गान सुनकर हर्षित नहीं होता। इन उक्तियों के साथ भगवान शिव ने पार्वती को राम कथा सुनाना आरंभ किया। गिरिराज किशोरी आदरपूर्वक श्रद्धा नत हो पति के वचन सुनने लगी।

अभी आपने सुना श्री रामचरितमानस गान का आज का प्रसंग। मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 वाणी का इंदौर केंद्र है। कार्यक्रम विवरण में श्रोताओं, अब आइए आपको जानकारी दे दें हमारी आज की सभा में प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों की।

प्रातः 7:20 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम योग निरोग। आज के इस कार्यक्रम में आप जानेंगे महिलाओं के स्वास्थ्य में योग की भूमिका, इस विषय पर अभिलाषा गांव शिंदे की जानकारी। सदाबहार ये कार्यक्रम आप सुनेंगे प्रातः 8:30 से। आज का विषय होगा बारिश और बच्चों का रिश्ता, साथ ही साथ छोटे छोटे बच्चों के मुख से आएंगे बारिश पर कविताएं और कहानियां। लोक संगीत में बैरू सिंह चौहान के गाए 10 मिनट पर।

बजकर 30 मिनट पर और महिला कार्यक्रम का आनंद आप लेंगे दिन में 1 बजे। बच्चों का कार्यक्रम मुस्कान हम लेकर हाजिर होंगे दिन में 2:30 पर। सुगम संगीत होगा 1:45 पर और फिल्म संगीत आप सुनेंगे दिन में 2 बजे।

हमारी सांध्यकालीन सभा की शुरुआत होगी युवा साथियों के पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी के साथ शाम 5 बजे। लोकगीत आपको एक बार पुनः सुनने को मिलेंगे शाम 6:45 पर। फिल्म संगीत का

0: ಇಎಂ ಆಕಾಶವಾಣಿ ಅಥ ವಾರ್ತಾಃ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಣಾ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿನಾ ಹ್ಯಃ ಗುಜರಾತಸ್ಯ ಸಾನಂದ ಕ್ಷೇತ್ರೆ ಸಿಜಿ ಸೆಮಿ ಸಂಸ್ಥಾಯಾಃ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕಸ್ಯ ಅತ್ರಾವಸರೆ ಜನಸಭಾಂ ಸಂಬೋಧಯನ್ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಣಾ ಪ್ರತಿಪಾದಿತಂ ಯತ್ ಅಯಂ ವಿಕಾಸಃ ಭಾರತಸ್ಯ ಪ್ರಗಾಢ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಕ್ರಾಂತೇಃ ಆಗಾಮಿ ಚರಣಮಸ್ತಿ ಯೇನ ದೇಶಃ ಪೂರ್ವಮೇವ ವಿಶ್ವಸ್ಯ ದ್ವಿತೀಯಃ ಬೃಹತ್ತಮಃ ದೂರಭಾಷ ನಿರ್ಮಾತೃತ್ವೇನ ಸಮೇಧಿತಃ सः दृढविश्वासं प्रकटितवान् यत् सानन्दक्षेत्रं वैश्विक सेमीकंडक्टर केन्द्रत्वेन समेधिष्यते।
1: आज का ये कार्यक्रम इस बात का प्रमाण है कि भारत जो ठान लेता है वो करके दिखाता है। पांच रत्न ने संकल्प लिया था कि देश को सेमीकंडक्टर हब बनाएंगे। हम डिजाइन इन इंडिया, मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़े और आज देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट में भी चिप पैकेजिंग का कॉमर्शियल
0: गदितम यत सानंदम प्रतिवर्षम विंशति कोटि चिप्स निर्माणार्थम सज्जमस्ति तेन पंचशत कोटि परिमितस्य लक्ष्य निर्धारणार्थम शुभाशयाः अपि प्रकटिताः। अत्रावसरे केन्द्रीय मन्त्रिणा अश्विनी वैष्णवेन घोषितं यत् 26,000+ वर्षान्तं या संयन्त्राणि पूर्णतः क्रियाशीलानि भविष्यन्ति। प्रधानमन्त्रिणा जोधपुर विमानपत्तने नूतनस्य टर्मिनल भवनस्यापि उद्घाटनं कृतम्। तदनन्तरं सः बालोत्तरा मण्डलस्य पचपदरा क्षेत्रे देशस्य अत्याधुनिकं ग्रीनफील्ड रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स इत्येतत् राष्ट्राय समर्पितवान्। अत्रांतरे तेन जयपुर मेट्रो द्वितीय चरणस्य शिलान्यासोऽपि कृतः। अवसरेऽस्मिन् प्रधानमन्त्रिणा प्रोक्तं यत् पश्चिम एशिया क्षेत्रस्य संघर्षेण एकविंशतितमायाः शताब्द्याः महत्तमः ऊर्जा संकटः समुत्पन्नः, किन्तु भारतेन समयोचित निर्णयैः कूटनीत्या च एषः कालः सम्मुखीकृतः।
1: भारत ने हर स्तर पर सही फैसले लिए, संकट का समय रहते सटीक आकलन किया, प्रभावी रणनीति बनाई, भारत के संसाधनों का संतुलित प्रयोग किया, भारत की डिप्लोमेटिक पावर का सकारात्मक इस्तेमाल किया और तब जाकर है।
0: श्री मोदी राजस्थान सर्वकारस्य विभिन्न विभागेषु नवनियुक्तेभ्यः 45,000 युवभ्यः नियुक्ति पत्राणि अपि प्रायच्छत्। केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाहः सानन्द क्षेत्रे नूतन सीजी सेमी ओसेट इत्यस्य उद्घाटन भारतस्य अभिनव पदक्षेपः इत्युदीरितवान्। अस्य अत्याधुनिक संयन्त्रस्य उद्घाटनं प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना कृतम्। गृहमन्त्रिणा सामाजिक संजालीय तन्त्रे स्वलेखे प्रकटितं यत् भारतस्य प्रौद्योगिकी महाशक्तित्वेन विकास यात्रायामेषः कश्चन नूतनः कीर्तिस्तम्भः अस्ति। विदेशमन्त्री डॉ एस जयशंकरः अद्य प्रभृति अस्य मासस्य 10 दिनांकं यावत् कतार, बहरीन, कुवैत, ओमान देशानां आधिकारिक यात्रायां भविष्यति। स्वप्रवासकाले विदेशमन्त्री तत्तद्देशीयानां समकक्ष नेत्री विदेशमन्त्रालयेन प्रोक्तं यत् अयं प्रवासः एतैः देशैः सह भारतस्य द्विपक्षीय सम्बन्धानां दृढीकरणे विशेषेण संसदः वर्षाकालीन सत्रमस्य मासस्य 20 दिनांकात् अगस्त मासस्य 23-10 दिनांकं यावत् प्रचलिष्यति। कार्यमन्त्री किरण रिजिजू सूचितवान् यत् राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुः जुलाई मासस्य 20 दिनांकात् संसदः वर्षाकालीन सत्रस्य आह्वानाय सर्वकारस्य प्रस्तावं स्वीकृतवती। आईसीसी महिला 20 प्रतिविंशतिः विश्व

0: चषके लंडन नगरस्य लॉर्ड्स क्रीडांगणे इंग्लैंड दलम अद्य अन्त्यद्वन्द्वे ऑस्ट्रेलिया दलम सम्मुखी करिष्यति। इयं प्रतिस्पर्धा तावत् भारतीय इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल राजस्थान के पचपदरा में 1,05,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण, जोधपुर हवाई अड्डे पर नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन भी किया। श्री मोदी ने कहा कि जोधपुर हवाई अड्डे का नया टर्मिनल भवन मारवाड़ व्यापार और रोजगार को बढ़ावा देगा। उन्होंने कहा कि जोधपुर से संशोधित उड़ान योजना शुरू होने से छोटे शहरों और दूर दराज के क्षेत्रों तक हवाई होगा। श्री मोदी ने कहा कि वर्तमान सरकार राष्ट्र प्रथम के दृष्टिकोण से काम कर रही है और हर क्षेत्र तथा हर नागरिक के विकास पर ध्यान केंद्रित कर रही है। इससे पहले श्री मोदी ने पचपदरा में देश की सबसे आधुनिक ग्रीनफील्ड रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल संयंत्र का लोकार्पण किया। उन्होंने जयपुर मेट्रो के दूसरे चरण की आधारशिला भी रखी। बाद में गुजरात के सांणंद में देश के तीसरे सेमीकंडक्टर संयंत्र में चिप पैकेजिंग के वाणिज्यिक उत्पादन का शुभारंभ करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इस संयंत्र में प्रत्येक वर्ष 20 करोड़ चिप तैयार होंगी। उन्होंने कहा कि एक्स क्रांति का अगला कदम है जिसने देश को दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता बना दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि संकट का सफलतापूर्वक सामना किया।
2: भारत ने हर स्तर पर सही फैसले लिए, संकट का एक आकलन किया, प्रभावी रणनीति बनाई, भारत के संसाधनों का संतुलित प्रयोग किया, भावर का सकारात्मक इस्तेमाल किया और तब जाकर भारत संकट से उबर पाया है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर जकार्ता जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी प्रबोवो सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री जकार्ता में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर आज से 10 जुलाई तक कतर, बहरीन, कुवैत और ओमान की सरकारी यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे इन देशों के विदेश मंत्रियों और नेताओं से मुलाकात करेंगे। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि एथेनॉल कोई नई योग एक सदी से अधिक समय से हो रहा है। राजस्थान में एक जनसभा को संबोधित करते हुए श्री पुरी ने कहा कि सरकार अपने जय रचनात्मक आलोचना का स्वागत करती है। श्री पुरी ने कहा कि भारत में एथेनॉल मिश्रण का विचार सर्वप्रथम पिछली कांग्रेस सरकार के दौरान 10 राज्यों में 5% एथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, लेकिन केवल 1.4% मिश्रण ही। सरकार ने मूल्य स्थिरीकरण बफर के लिए प्याज के खरीद मूल्य में 13% की वृद्धि की है। प्याज की कीमत अब 1,875 रूपये प्रति क्विंटल से बढ़कर 2,125 रूपये प्रति क्विंटल हो गई है। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा कि संशोधित मूल्य से किसानों को लाभ मिलेगा और बफर खरीद प्रयासों को बढ़ावा मिलेगा। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होगा और 13 अगस्त तक चलेगा। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 20 जुलाई से संसद का मॉनसून सत्र बुलाने के सरकार के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। पूर्वी अमेरिका में भीषण लू चल रही है, इससे बिजली आपूर्ति पर भारी दबाव पड़ रहा है और फीफा विश्व कप मैचों की तैयारियों में बाधा आ रही है। अमेरिका के सबसे अधिक आबादी वाले शहर न्यूयॉर्क में तापमान 46 डिग्री सेल्सियस से अधिक होने की आशंका है, जबकि अटलांटिक तट पर भी लू की चेतावनी जारी की गई है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में फ्रांस ने अंतिम 16 के मैच में पैराग्वे क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। अब क्वार्टर फाइनल में फ्रांस का सामना मोरक्को से होगा। इससे पहले ह्यूस्टन में मोरक्को ने कनाडा पर 3-0 से शानदार जीत हासिल कर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। इंग्लैंड ने कल मैनचेस्टर में 5 मैचों की टी

0: ट्वेंटी क्रिकेट श्रृंखला के दूसरे मैच में भारत को 4 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम व्यू 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है।
2: अरे तनिष्का, कहाँ थी इतने दिनों से?
3: अरे राधिका, मैं गई थी कुल्लू मनाली।
2: तो क्या क्या किया कुल्लू मनाली में? मजा आया कि नहीं?
3: अरे काहे का मजा,
2: क्यों, क्या हुआ?
3: अरे मैंने वहाँ आकाशवाणी और विविध भारती इंदौर को बहुत मिस किया।
2: अरे इसमें मिस करने वाली क्या बात है, अब तो आकाशवाणी और विविध भारती इंदौर मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध है।
3: क्या? तो अब मैं जब भी बाहर जाऊंगी मोबाइल ऐप के जरिए आकाशवाणी ऐप से जुड़ी रहूंगी।
2: ये हुई ना बात।
4: NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर से प्रसारित हो रहा है शाम 6 बजे।
2: युवाओं के जोश, उमंग और ज्ञान से भरे कार्यक्रम युववाणी का प्रसारण होता है प्रतिदिन शाम 5 बजे,
3: जिसमें होती है नित नई जानकारियाँ, मनोरंजन और ज्ञान की बातें।
2: तो सुनते रहिए मालवा की शान
5: आकाशवाणी इंदौर।
3: आकाशवाणी इंदौर अब मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR है।
4: NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम आकाश है शाम 6 बजे।

श्रोताओं, एक बार पुनः आपको कार्यक्रम संबंधी जानकारी दे दें। सुबह 8:30 पर आप सुनेंगे बच्चों का कार्यक्रम कल के सितारे बच्चे हमारे, और 10:30 पर आकाशवाणी की पॉडकास्ट सीरीज प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ इस सीरीज के 8वें भाग का प्रसारण किया जाएगा। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से यह कार्यक्रम अनुप्रसारित होगा, और साथ ही साथ आज शाम 7:30 से हम आपको सुनवाएंगे ICC वुमेन्स T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल मैच के अंतर्गत इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जाने वाले मैच का आंखों देखा हाल।

श्रोताओं, 10:05 से आज आप सुनेंगे सजीव फोन इन कार्यक्रम MH हॉटलाइन। और आप सभी जानते हैं कि हम अपने इस कार्यक्रम में अपने श्रोता होते हैं, जुड़ते हैं, उनसे ढेर सारी बातें करते हैं फोन कॉल्स के जरिए। तो इस कार्यक्रम में आज हमें आप सबके फोन कॉल्स का इंतजार रहेगा। फोन कॉल करने के लिए हमारे सकते हैं, हमारे नंबर हैं 2710223 और 2710224। एक बार फिर से नंबर सुन लीजिए, 2710223 और 2710224। और इंदौर का स्टडी कोड आप सभी जानते हैं 0731, इसे डायल करना आप ना भूलें। तो कार्यक्रम के दौरान आप हमें फ़ोन कर सकते हैं और अपने फरमाइशी गीत जो है वो सुन सकते हैं। कार्यक्रम में आप सभी के फ़ोन कॉल्स का हमें इंतज़ार रहेगा।

0: यह आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। थोड़ी देर में प्रादेशिक समाचार हम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। कृपया समाचारों की प्रतीक्षा करें।
1: ये आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण है, प्रादेशिक समाचार थोड़ी ही देर में।

0: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सानंद में सेमीकंडक्टर संयोजन और जांच केंद्र का उद्घाटन किया, कहा यह भारत की जबरदस्त इलेक्ट्रॉनिक क्रांति का अगला कदम। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज शिवपुरी में 2,500 करोड़ की लागत वाले अत्याधुनिक रक्षा संयंत्र का शिलान्यास करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 35,000 करोड़ रूपये के इस रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा और प्रदेश में मूसलाधार बारिश से कई जिलों में जनजीवन प्रभावित। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल गुजरात के सानंद में अत्याधुनिक सीजी सेमी आउटसोर्स्ड सेमी कंडक्टर संयोजन और जांच केंद्र का उद्घाटन किया। इस मौके पर सभा को संबोधित करते हुए कहा कि यह विकास भारत की जबरदस्त इलेक्ट्रॉनिक्स क्रांति का अगला कदम है, जिसने देश को पहले ही दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल। प्रधानमंत्री ने इसे विकसित भारत की रूपरेखा और मेक इन इंडिया का दूसरा कदम बताया।
1: मुझे बताया गया है यहाँ से हर चिप्स निकलेगी और मुझे बताया गया आप सभी यही नहीं रुकने वाले हैं। आपने हर साल 500 करोड़ चिप्स का लक्ष्य रखा है, यानी हर दिन 1.5 करोड़ से ज्यादा। मेरा पक्का विश्वास है कि आप उसे बहुत जल्द हासिल करके रहेंगे।
0: केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस वर्ष के अंत तक भारत में 5 सेमीकंडक्टर संयंत्र चालू हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि सानंद संयंत्र में निर्मित चिप्स का उपयोग कारों, स्कूटरों और कई तरह के औद्योगिक कार्यों में किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस केंद्र में निर्मित चिप्स जापान, अमरीका और यूरोप भेजी जाएंगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज शिवपुरी में अडानी समूह द्वारा स्थापित किए जा रहे लगभग 2,500 करोड़ रूपये की लागत वाले अत्याधुनिक रक्षा संयंत्र का शिलान्यास करेंगे। इस परियोजना मंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया अभियान के औद्योगिक विकास के विजन को नई गति मिलने की आशा है। केंद्रीय संचार एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री मौजूद रहेंगे। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि रक्षा क्षेत्र के संयंत्र से इस इलाके में विकास को गति मिलेगी।
2: पूरी में यंत्र प्रोपेलेंट गैस और अनेक उपकरणों का 3,000 करोड़ का भूमि पूजन किया जा रहा है। ये एक अपने आप में एक इतिहास रचेगा कि डिफेंस कॉरिडोर के साथ शिवपुरी को जोड़ा जा रहा है। एक नया इतिहास औद्योगिकरण की सूर्य की किरण के रूप में अब स्थापित होने जा रहा है। इस रक्षा के संयंत्र से हमारे देश के रक्षा करने वाले वीर जवानों को नई टेक्नोलॉजी के अस्त्र शस्त्र मिलेंगे।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि देश का रक्षा निर्यात 38,000 करोड़ रुपए के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। नई दिल्ली में एक निजी कार्यक्रम में श्री सिंह ने कहा कि वित्त वर्ष 2025-26 में ये 1,78,000 करोड़ रुपए से अधिक रहा, जो कि 2014-15 की तुलना में लगभग 3 गुना अधिक है। उन्होंने कहा कि वृद्धि रक्षा विनिर्माण और प्रौद्योगिकी की पूर्ण प्रगति और मेक इन इंडिया रक्षा प्लेटफॉर्म पर बढ़ते वैश्विक विश्वास को रेखांकित करती है।
3: आज हमारा डिफेंस प्रोडक्शन मोर देन करोड़ पहुंच चुका है। 7-8 साल 9 साल पहले तक हमारा ये डिफेंस प्रोडक्शन अप्रॉक्सिमेटली 46,000 करोड़ था। 48,000 करोड़ रुपए से ऊपर पहुंच गया है और मैं आपको बतलाना चाहूंगा 2013 और 2014 में यह केवल 680, यह बढ़कर 57 टाइम्स बढ़ चुका है।
0: मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कल इंदौर में कहा कि आयोग के आधार स्तंभ होते हैं। उन्होंने इंदौर, उज्जैन, देवास, धार और खंडवा जिले के 1,500 से अधिक बूथ लेवल अधिकारियों के साथ

0: सीधे संवाद में कहा कि मध्य प्रदेश में चुनाव कर्मियों और बीएलओ ने मिलकर एसआईआर का काम बहुत अच्छा किया है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त आज ओंकारेश्वर और महेश्वर के धार्मिक और ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण करेंगे। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
1: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर एआईआर न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या न्यूज ऑन

इनमें माध्यमिक शिक्षकों के 4067 एवं प्राथमिक शिक्षकों के 950 पदों को नियुक्ति प्रदान की गई है। विभाग द्वारा ये नियुक्ति आदेश 3 और 4 जुलाई को जारी किए गए हैं। स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप निर्वहन करते हुए शिक्षा के क्षेत्र में सकारात्मक परिवर्तन लाने का कार्य करेंगे। मुख्यमंत्री दिव्यांगजन शिक्षा प्रोत्साहन योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 31 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गतिशीलता से जोड़ने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री दिव्यांगजन शिक्षा प्रोत्साहन योजना दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए उच्च शिक्षा के मार्ग को सरल और सुलभ बनाएगी। उन्होंने पात्र विद्यार्थियों से समय सीमा के भीतर आवेदन करने तथा जिलाधिकारियों को योजना का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के। देश में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से कई जिलों में जनजीवन प्रभावित हो गया है। नदियां और नाले उफान पर हैं, जिससे कई गांवों का

मुख्यालय से संपर्क टूट गया है। मौसम विभाग ने अगले चौरी की है। बड़वानी और खरगोन जिले सबसे अधिक प्रभावित रह सकते हैं, जहां पर रेड अलर्ट घोषित किया गया है। मौसम विभाग ने इंदौर और जबलपुर संभाग के जिलों में अति भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं देवास सीहोर सहित 13 जिलों में भारी बारिश होने का अनुमान है। अब कुछ जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट ने इंदौर के सावेर में 27 करोड़ की लागत से बनने वाले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और कॉलेज भवन के निर्माण का निरीक्षण किया। वहीं इंदौर में कल युवा संगम रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। डिंडौरी के बरगांव में आज सुबह 10 बजे से विद्यार्थियों के लिए एक विश्वेश्वर के प्रसिद्ध ममलेश्वर मंदिर में विकास कार्यों की तैयारी तेज हो गई है। मंदिर प्रबंधन समिति का गठन किया गया है।

समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सांगलद में सेमीकंडक्टर संयोजन का अगला कदम। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज शिवपुरी में 2500 करोड़ की लागत वाले अत्याधुनिक रक्षा संयंत्र का शिलान्यास करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, देश का रक्षा निर्यात 38,000 करोड़ रूपये के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा और प्रदेश में मूसलाधार बारिश से कई जिलों में जनजीवन

0: योग निरोग।
1: कार्यक्रम योग निरोग में मैं अभिलाषा गांव शिंदे योग थेरेपिस्ट आपका स्वागत करती हूं। महिलाओं के स्वास्थ्य में योग की क्या भूमिका है, यह आज का हमारा विषय है। योग शब्द इसमें हम ये समझते हैं कि जोड़ना या एकजुट करना किसे। योग एक ऐसी साधना है जो शरीर और आत्मा को जोड़ती है, इनमें एक सामंजस्य स्थापित करती है। योग के द्वारा शारीरिक और मानसिक सुख मिलता है। अब हम बात करते हैं महिलाओं की, तो महिलाएं परिवार का आधार स्तंभ मानी जाती, बिना महिला के परिवार की कल्पना अधूरी है। हम पुराने समय की अपेक्षा अब देखें तो महिलाएं

स्वास्थ्य पर ढंग से ध्यान नहीं दे पाती है। व्यस्त दिनचर्या और अनियमित खानपान से कई तरह की शारीरिक समस्याएं, कमर दर्द, माइग्रेन और भी कई तरह की बीमारियां। क्या मेरा वजन बढ़ रहा है? क्या चेहरे पर झुर्रियाँ आ गई है? क्या मेरे बाल सफ़ेद हो रहे हैं? इस कारण भी महिलाएं तनाव में रहती हैं कि योग महिलाओं के स्वास्थ्य में किस तरह की भूमिका निभाता है। गीता में कहा गया है, योग कर्मेशु कौशलम, अर्थात कर्म में कुशलता लाना योग के द्वारा संभव है। यदि योग को आप अपने जीवन का हिस्सा, अभ्यास से हम शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहते हैं। योग करने से शरीर स्वस्थ रहता है, ब्लड सर्कुलेशन में सुधार होता है, साथ ही पाचन तंत्र मजबूत होता, तत्तियाँ हैं उनका निरोध होता है। योग आसनों में ध्यान का भी एक विशेष स्थान है। आसनों के साथ साथ अगर हम ध्यान को भी अपने जीवन का एक हिस्सा बनाते हैं तो हम शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहेंगे। ध्यान से तनाव और चिंता पैदा करने वाले हार्मोन करता है, मन की एकाग्रता को बढ़ाता है। नियमित अभ्यास करने से सकारात्मकता बढ़ती है। योग के नियमित अभ्यास से शरीर लचीला होता है, मांसपेशियां मजबूत होती है। योग में कुछ हम ऐसे आसनों की जानकारी देने जा रहे हैं जिसके अभ्यास से हर महिला शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रह सकती है, और महिला के स्वस्थ रहने से एक परिवार स्वस्थ रहेगा और परिवार के स्वस्थ रहने से समाज। तो हम यहाँ कुछ आसन बताने जा रहे हैं। छह आसन है, इसके करने से रक्त प्रवाह नियंत्रित होता है। इस आसन को करने से पैरों, घुटनों, पीठ दर्द में राहत मिलती है, क्योंकि इस आसन की फाइनल पोजीशन में रक्त का संचार हमारे लोअर ऑर्गन्स की ओर होता है, लाभ मिलता है। इसके बाद हम दूसरा आसन लेने जा रहे हैं, भद्रासन। यह आसन मासिक धर्म में होने वाले दर्द को कम करता है। इस आसन से जांघों के ऊपरी और गहरी मांसपेशियों में खिंचाव होता है। जब हम पुनः इस आसन से वापस आते हैं तो रक्त संचार सुचारू रूप से पूरे शरीर में होने लगता है। इस आसन से कमर की मांसपेशियां और पेट के निचले हिस्से से को मजबूती मिलती है। गर्भवती महिलाओं के लिए एक बेहतर आसन है। यह आसन कूल्हे के जोड़ों की अकड़न दूर करता है और इससे प्रसव आसान हो जाती है। इसके बाद हम लेंगे मत्स्यासन। मत्स्यासन मतलब मछली वाला पोज। इस आसन में शरीर की स्थिति मछली के समान मानी गई है। यह आसन महिलाओं के मेटाबॉलिज्म को बढ़ा, यह आसन मांसपेशियों, घुटनों और पैरों के दर्द को कम करता है। अब धनुरासन। धनुरासन जैसे नाम से ही है, इसमें शरीर की स्थिति एक धनुष के समान हो जाती है। इसमें आसन की स्थिति में हमारा शरीर का हिस्सा मजबूत बनता है। रीढ़ की हड्डियों की विकृति दूर होती है। इससे पेट और प्रजनन अंगों में रक्त का संचार होता है। जैसे कि आज की महिलाएं घर के साथ साथ बाहर का भी काम करने लगी है, तो बाहर काम करने वाली महिलाओं के लिए भी कुछ आसन की स्थिति में अगर हम थोड़ा समय देकर कर लें तो इससे उनका शारीरिक और मानसिक

अनुलोम विलोम में बाई नासिका से हमें श्वास अंदर लेनी रहती है, लेकर बाई नासिका पर श्वास बाहर छोड़ते हैं। यह इसका एक राउंड होता है। ऐसा 5 से 10 मिनट करने पर हाई बीपी में हमें बेहतर लाभ मिलता है। अब हम यहाँ लो बीपी की, ब्लड प्रेशर लो हो जाना ऑक्सीजन की कमी होने से लो बीपी की समस्या होती है, इसमें भी हम सूर्यवेदी प्राणायाम ले सकते हैं। इस प्राणायाम में दाई नासिका से श्वास लेना है और बाई नासिका से श्वास होता है। इस तरह आप अपनी कैपेसिटी से 2 से 3, 3 से 4 राउंड कर सकते हैं। पेल्विक एरिया को स्वस्थ रखने के लिए हम यहाँ कुछ आसन बताने जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहला हम लेयर में पीठ के बल लेटकर दोनों घुटनों को मोड़कर हाथों को जमीन पर दबाते हुए कमर को धीरे धीरे ऊपर उठाते हैं। इस आसन की फाइनल स्थिति में पेल्विक एरिया मजबूत होता है और मांसपेशियां मजबूत होती है। मलासन में उकड़ू बैठकर दोनों पैरों पर बैठकर हाथों की नमस्कार मुद्रा बनाते हैं। इस आसन के फाइनल पोजीशन में आने से हमारे पाइल्स, फिशर, इन बीमारियों को मजबूत बनाता है। इसमें हम कुछ आसन और जोड़ सकते हैं, जैसे कि नौकासन है। नौकासन मतलब शरीर की स्थिति नाव के समान होती है, पूरा वजन बटक पर आता है, दोनों हाथ दोनों पैर ऊपर की ओर होते हैं। यह आसन भी आपके पेल्विक एरिया को मजबूत

0: बधाई हो, आपकी बीवी प्रेग्नेंट है।
1: सच?
0: हाँ हाँ सच, लेकिन इस खुशखबरी के साथ एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। आप होने वाले बच्चे दोनों की सेहत का ख्याल रखना होगा और जल्दी से जल्दी HIV की जांच भी करवाना, क्योंकि HIV का संक्रमण गर्भ के दौरान माँ से बच्चे को भी हो सकता है।
1: अगर HIV पॉजिटिव आए तो?
0: तो बिना कोई देरी किए ART केंद्र से ART ट्रीटमेंट लो, ताकि समय पर माँ और बच्चे दोनों को सही केयर दी जा सके।
1: डॉक्टर, हम आज ही जाकर HIV की जांच कराते हैं।
0: और इस बारे में अगर कोई भी जानकारी लेनी हो तो मुझे या फिर 1097 पर कॉल कर लेना।
2: मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
3: कम ब्याज पे लोन चाहिए, वो भी ऐप से? वाह!
4: अनजान ऐप से बचें।
5: RBI कहता है,
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: आइए श्रोताओं, अब सुनते हैं नदिया के पार, इस फिल्म का गीत जसपाल की आवाज में। संगीतकार हैं रविंद्र जैन।

श्रोताओं, आकाशवाणी इंदौर से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुनहरे पल। आइए आप सुनते हैं धरती फिल्म का गीत मोहम्मद रफी की आवाज में। राजेंद्र कृष्ण के बोल हैं, शंकर जयकिशन का संगीत।

आइए श्रोताओं, अब कार्यक्रम के मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में सजन दहलवी के बोल हैं श्याम जी घनश्याम जी का संगीत।

0: इसी गीत के साथ अब आज का सुनहरे पल कार्यक्रम यही संपन्न होता है। नमस्कार।
1: सुनहरे
0: आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुनहरे पल, ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। थोड़ी देर में समाचार हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूसरी और तीसरी श्रेणी के शहरों में हवाई यात्रा को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्रीय हवाई संपर्क योजना विकसित उड़ान का अगला चरण शुरू किया। सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने और कीमतों पर

0: नागर विमानन ढांचे और क्षेत्रीय संपर्क को बढ़ावा मिला है।
1: उड़ान योजना के नए चरण की भी शुरुआत हुई है। इसके तहत छोटे छोटे शहरों और दूर दराज के क्षेत्रों को एयर कनेक्टिविटी से

0: महल्स को सेमी कंडक्टर हब बनाएंगे। हम डिजाइन इन इंडिया, मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे, और आज देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट में भी चिप पैकेजिंग का कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हो रहा
1: यही है और इसका उपयोग एक सदी से अधिक समय से हो रहा है। राजस्थान में कल श्री पुरी ने कहा कि सरकार अपने जैव ईंधन मिश्रण कार्यक्रम की रचनात्मक आलोचना का स्वागत करती है। उन्होंने कहा कि सरकार सुझावों के अनुसार आवश्यक सुधार।
2: एथेनॉल का काम ना हमने इन्वेंट किया, 100 साल से इस पे काम हो रहा है। भारत में अगर आ जाए तो इस पे

महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात में वर्तमान स्टॉक पर्याप्त है और फिलहाल प्याज के भंडार में कोई कमी नहीं है। अखिल भारतीय औसत खुदरा मूल्य 31 रुपए प्रति किलोग्राम है। प्याज का निर्यात भी सामान्य है। इस वर्ष जून में लगभग 1,50,000 मीट्रिक टन प्याज का निर्यात हुआ है। दीपेंद्र कुमार के साथ सकलैन।

गया है। छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, कर्नाटक, तेलंगाना और विदर्भ में भी मूसलाधार तटीय जिलों में मूसलाधार वर्षा जारी है। लगातार बारिश के साथ साथ ज्वार भाटी की स्थिति के कारण मुंबई और ठाणे क्षेत्र में अधिकारियों को हाई अलर्ट पर रखे गए हैं। वेनेजुएला की नेशनल असेंबली के अध्यक्ष जॉर्ज रोड्रिक्स ने कहा है कि लगातार दो भूकंप से

हवाई संपर्क योजना का अगला चरण विकसित शुरू किया। सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने और कीमतों पर नियंत्रण के लिए प्याज का खरीद मूल्य 13% बढ़ाकर 2000। प्रधानमंत्री मोदी की ऑस्ट्रेलिया यात्रा से पहले ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने प्रमुख आर्थिक साझेदार के रूप में भारत की सराहना की। देश के विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। कल के सितारे बच्चे हमारे।
1: कल के सितारे बच्चे हमारे।
2: स्वागत है आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों का आपके अपने मनपसंद कार्यक्रम कल के सितारे बच्चे हमारे ये कार्यक्रम लेकर हाजिर हूँ मैं आपकी दीदी दीपलक्ष्मी। जय हिंद
3: जय हिंद।
2: बच्चों क्या मैं आपसे पूछ सकती हूँ यहाँ कितने बच्चों को बारिश पसंद है? वाह लगता है सारे ही बच्चों को बारिश बहुत पसंद है। अब जरा आंखें एक पल के लिए बंद करो और सोचो काले काले बादल छा गए हैं ठंडी ठंडी हवा आपके चेहरे को छू रही है मिट्टी की भीनी भीनी खुशबू चारों ओर फैल रही है बारिश की पहली बूंद धरती पर गिरती है क्या नजारा होता है। बच्चों आपने इस बारिश का आनंद लिया कि नहीं? बारिश केवल पानी की बूंदे नहीं लाती बल्कि अपने साथ लाती है खुशियां उमंग हरियाली और नई उम्मीदें। बारिश और बच्चों का रिश्ता कहते हैं कि हर मौसम की अपनी एक पहचान होती है। सर्दियों की पहचान गर्म धूप गर्मियों की पहचान आम और छुट्टियां और बारिश की पहचान होती है बच्चों की खिलखिलाहट। जैसे ही पहली बारिश होती है बच्चे घर की खिड़कियों से बाहर झांकने लगते हैं कोई कागज की नाव बनाता है कोई रंग बिरंगी छतरी लेकर निकलो में फीक कर खुशी से झूम उठता है।

0: बारिश को लेकर हमारे बच्चे कितना उत्साहित है, चलिए जानते हैं उन्हीं से।
1: त्रिवन, मेरा नाम है ईरा तिलवनकर। तो आज मैं सुनाने वाली हूँ एक पोयम जिसका नाम है बारिश आई। बारिश आई, बारिश आई, संग में ठंडी हवा भी लाई। टप टप बूंदे गिरती जाए, पेड़ पौधे सब मुस्कुराए। रंग बिरंगी छतरी लाए, पानी में छप छप करते जाए। इंद्रधनुष जब नभ में आए, मन खुश होकर गीत फिर से आना। खुशी होकर तुम संदेशा लाना। थैंक यू।

हेलो दोस्तों, मेरा नाम लोई, मैं कक्षा 2 में पढ़ती हूँ। आज मैं आपको सुनाने वाली हूँ एक बारिश की कहानी। बरसा पानी, देखो आ गई वर्षा रानी, काले काले बादल गरजे, छम झमा झम झम कर बरसे, छम छम बिजली चमक रही है, चारों ओर हरियाली है, छम छम बूंदे बरस रही है, घंघोर घटा मतवाली है, भर गए सारे ताल तलैया, मेढक गीत सुनाते हैं, सौंधी मिट्टी महक रही है, पेड़ खड़े मुस्काते हैं, मैं भी आओ तुम भी आओ, बारिश में सब खूब नहाओ, मिलकर पानी में तैराओ। अब मैं आपको एक दूसरी कविता सुनाने वाली हूँ जिसका शीर्षक है घर। पापा क्यों अच्छा लारा प्यारा घर, घूम धाम ले खेल खाल ले, नहीं भूलता लेकिन घर, नहीं आपको लगता पा है माँ की गोदी जैसा घर, प्यारी प्यारी ममता वाला सुंदर।

0: अब प्रियांशी हमें क्या सुनाने जा रही है?
1: मैं कक्षा 2 में पढ़ती हूँ। बारिश और दो भाई। एक गांव में भाई रहते थे। बड़ा भाई हमेशा उल्टा सोचता था और छोटा भाई हमेशा अच्छा सोचता। पर बोला, हे भगवान, तूने हमारी सारी फसलें खराब कर दी। और जबकि छोटा भाई बाहर खड़े होकर मुस्कुरा रहा, भैया निराश क्यों हो रहे हो, यह तो प्रकृति का नियम है। भारी बारिश से हमारे तालाब और कुएं भर जाते हैं। अब हमें पानी की कोई टेंशन नहीं है। मिलती है बारिश दोनों भाई के लिए एक जैसी थी। लेकिन बड़े भाई ने नुकसान देखा और छोटे भाई ने उसमें फायदा देखा। जीवन में आने वाली हर मुसीबत कोई ना कोई छुपा हुआ अवसर होता है। धन्यवाद।
2: मेरा नाम योशिता खुराना है। सब लोग मुझे प्यार से सी और मैं 9 साल की हूँ। आज मैं आपको एक कविता सुनाने वाली हूँ। मेरी कविता बारिश के ऊपर है। बारिश का मौसम था, दिन बड़ा ही आसम था। भुट्टा खाने का मन था, छाता घर पे भूल गया। जोरदार फिर बारिश हुई, भीग के मुझको सर्दी लगी। हो लुआ

0: अच्छा कनिष्का, प्रियांशी और सिया, अब मैं आप लोगों से कुछ सवाल करूंगी और आप सबको देने हो। बारिश में हम क्या पहनते हैं?
1: रेनकोट।

0: यदि बारिश ना हो तो किसान की मेहनत अधूरी रह जाएगी, पीने के पानी की कमी हो जाएगी और प्रकृति का संतुलन बिगड़ जाएगा। इसलिए हर बारिश की बूंद हमारे लिए अनमोल है। बारिश का आनंद लेना बहुत अच्छी बात है, लेकिन समझदारी भी उतनी ही जरूरी है। बच्चों याद रखिए कि गंदे पानी में नहीं खेलेंगे, बारिश में भीगने के बाद सूखे कपड़े पहनेंगे, साफ और पौष्टिक भोजन ही करेंगे, बाहर का नहीं खाएंगे, बिजली चमकने पर खुले मैदान में नहीं रहेंगे और पानी की बर्बादी बिल्कुल नहीं करेंगे। बच्चों सच्ची खुशी वही है जो सुरक्षा के साथ हो। आओ बच्चों हम सब मिलकर आनंद भी लेंगे, पानी की हर बूंद का सम्मान भी करेंगे, प्रकृति की रक्षा भी करेंगे और अपने देश को हरा भरा बनाएंगे। तुमको यहीं पर विराम देती हूँ। कल के सितारे बच्चे हमारे कार्यक्रम का संयोजन था डॉक्टर प्रीति छड़ीदार का। और बच्चों अब दे अनुमति, जय हिंद।
1: कल के सितारे बच्चे हमारे।

मीडियम वेव 448 किलो हर्ट्स पर ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। आइए श्रोताओं, लोक संगीत आते हैं भैरव सिंह चौहान और साथियों के गाए मालवी लोकगीत। कार्यक्रम की शुरुआत हम कर रहे हैं इस वंदना के साथ।

0: सुन रहे थे वीरू सिंह चौहान और साथियों के गाए मालवी लोकगीत। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है।
1: ये पे लोन चाहिए वो भी ऐप से, वाह।
2: अनजान ऐप से बचें।
3: RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। सुगम संगीत में श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं वैशाली बकोरे के गाए भजन। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं मीराबाई द्वारा रचित इस पद के साथ, स्वर वैशाली बकोरे।

सुगम संगीत में श्रोताओं भी आप सुन रहे थे वैशाली बकोरे का मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज़ पर। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है।

मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज़ पर और केंद्र है। आइए श्रोताओं, शास्त्रीय संगीत में अब आपको सुनवाते हैं शशिकांत मनोहर तांबे का ख्याल गायन। राग है बागीश्री।

शास्त्रीय संगीत में श्रोताओं अभी आप सुन रहे थे शशिकांत मनोहर तांबे का ख्याल गायन, राग था बागीश्री। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है।

0: यह आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। थोड़ी देर में जिले की चिट्ठी का प्रसारण हम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से करेंगे। कृपया प्रसारण की प्रतीक्षा करें।
1: सुन रहे थे

बुरहानपुर में ताप्ती नदी ने रौद्र रूप धारण कर लिया है। लगातार मूसलाधार बारिश से नदी उफान पर है और राजघाट के 3 शिव मंदिर पूरी तरह जलमग्न हो गए हैं। बढ़ते जलस्तर ने प्रशासन की चिंताएं बढ़ा दी हैं। एसडीआरएफ की टीमें घाटों पर तैनात हैं, जबकि नदी किनारे रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी गई है। ताप्ती के तेज बहाव को देखते हुए बुरहानपुर में साइबर ठगों की चाल नाकाम करने के लिए पुलिस का सेफ क्लिक 2.0 अभियान तेज हो गया है। बीते दिनों शाही जामा मस्जिद परिसर में मुस्लिम समाज के बीच पुलिस ने डिजिटल अरेस्ट, फर्जी कॉल, ओटीपी, यूपीआई और केवाईसी फ्रॉड के नए हथकंडों के प्रति सावधान किया। पैम्फलेट बांटे लिंक पर एक क्लिक से बैंक खाता खाली हो सकता है। किसी भी साइबर ठगी की स्थिति में तुरंत 1930 पर शिकायत करने की अपील की गई। बुरहानपुर रेलवे स्टेशन शुक्रवार को पूरी तरह से भक्तिमय रंग में रंगा दिखाई दिया, जब 191 वरिष्ठ श्रद्धालुओं का जत्था जय माता दी के गगनभेदी जयघोष के बीच वैष्णो देवी धाम के लिए रवाना हुआ। विधायक अर्चना चिटनिस और महापौर माधुरी पटेल ने श्रद्धालुओं को पुष्पमाला पहनाकर ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत 3 से 8 जुलाई तक चलने वाली इस यात्रा में भोजन, आवास, चिकित्सा और सुरक्षा की सभी व्यवस्था समीक्षा बैठक में लंबित मामलों, महिला अपराध, साइबर फ्रॉड, संपत्ति अपराध और कानून व्यवस्था पर सख्त निर्देश दिए। त्योहारों के दौरान बेहतर पुलिसिंग पर बुरहानपुर पुलिस की सराहना की। बेचना के लिए टैबलेट वितरित किए गए, जिससे जांच प्रक्रिया पूरी तरह से डिजिटल होगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना के तहत बुरहानपुर 163 हितग्राही परिवारों को बड़ी राहत प्रदान की। सिंगल क्लिक के जरिए बीते दिनों 3,46,00,000 रुपए की अनुग्रह सहायता राशि सीधे डीबीटी से बैंक खातों में भेजी गई, जिसमें मृत्यु के 153 और दुर्घटना मृत्यु के 10 प्रकरण शामिल हैं। जिला मुख्यालय के एनआईसी कक्ष में कार्यक्रम का सीधा प्रसारण देखा गया, जहां जनप्रतिनिधि, अधिकारी और हितग्राही मौजूद रहे। बुरहानपुर के ग्रामीण इलाकों में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण जरूरतमंद परिवारों को सपनों के पंख दे रही है। पात्र हितग्राहियों को 1.20 लाख रुपए की सहायता और मनरेगा के तहत 90 दिन की मजदूरी मिल रही है, जिससे पक्के मकानों का निर्माण तेजी से हो रहा है। जिले की समीक्षा बैठक में बीते दिनों स्वास्थ्य सेवाओं की हकीकत पर अधिकारियों से डीएम किसान सम्मान निधि, EKYC, आधार अपडेट और फार्मर रजिस्ट्री की धीमी प्रगति पर नाराजगी

0: बताते हुए काम में तेजी लाने के निर्देश दिए गए। वहीं पीडब्ल्यूडी के सड़क निर्माण कार्य सीमा में सभी निर्माण कार्य हर हाल में पूरे किए जाएं। बुरहानपुर जिले में वट सावित्री पूर्णिमा के अवसर पर बीते दिनों सुहागिन महिलाओं ने पूरी श्रद्धा भक्ति और उत्साह के साथ व्रत रखकर बरगद के पेड़ के नीचे पहुंची और हम लगाकर अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद दिया। इस दौरान भक्ति परंपरा और सुहाग का अनुपम संगम देखने को मिला। बुरहानपुर में भाजपा के संस्थापक डॉक्टर श्यामा परमानंद गोविंद जी वाला ऑडिटोरियम में कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन बीते दिनों किया गया, जिसमें प्रदेश उपाध्यक्ष सुरेंद्र शर्मा ने डॉक्टर मुखर्जी के राष्ट्रवादी विचारों, शिक्षा, योगदान और राष्ट्रहित में उनके संघर्ष पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम में सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल, विधायक अर्चना चिटनिस, विधायक मंजू दादू, जिलाध्यक्ष डॉक्टर मनोज माने सहित जनप्रतिनिधि, पदाधिकारी और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। बीते दिनों कृषि विभाग की समीक्षा बैठक में विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की गई। इस मौके पर सांसद श्री ज्ञानेश्वर पाटिल ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि अधिक से अधिक किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए जागरूक किया जाए। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए जिले में कृषि चौपालों का आयोजन कर खेती की आधुनिक व प्राकृतिक तकनीकों की जानकारी दी जाएगी। इसके साथ ही उन्नत बीजों की और व्यापक प्रचार प्रसार पर जोर दिया गया। बैठक में डीएपी, बीज, उर्वरक उपलब्धता और कृषि विभाग की विभिन्न योजनाओं की समीक्षा भी की गई। बुरहानपुर
1: अभी आप सुन रहे थे बुरहानपुर जिले की चिट्ठी। ये आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण है।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी।
3: मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। प्रस्तुत है सजीव फोन इन कार्यक्रम एमएच हॉटलाइन।
4: हेलो एमएच हॉटलाइन।
3: एमएच हॉटलाइन सुनने वाले सभी श्रोताओं को राहुल तिवारी का प्यार भरा नमस्कार।

0: हेलो,
1: नमस्कार श्रोताओं, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम MH हॉटलाइन में और मैं हूं आपके साथ राहुल तिवारी। श्रोताओं, जैसा कि आप सभी जानते हैं, सजीव फोन इन कार्यक्रम है जिसमें आप हमें फोन करते हैं और हम आपकी फरमाइश के गीत आप तक पहुंचाते हैं। आज चूंकि कार्यक्रम बहुत थोड़े समय के लिए है तो हम कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा फरमाइश इस कार्यक्रम में हम आपकी शामिल करें। फोन करने के लिए नंबर एक बार बता देते हैं, 2710223 और 2710224 ये हमारे फोन नंबर हैं जिन पर आप हमें फोन कर सकते हैं और अपनी फरमाइश के जो गीत हैं वो सुन सकते हैं। तो आइए बिना देर किए सबसे पहले सुनते हैं हमारे पहले श्रोता जो हैं, किनका कॉल हम तक आया है, बातचीत। हेलो, MH हॉटलाइन।
2: हेलो, नमस्ते।
1: जी नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
2: अगर से
1: जी बहुत बहुत स्वागत है नंदिनी जी, तो यह बड़ी खुशी की बात है। कैसे हैं सब लोग और क्या करते हैं आप वहां पर?
2: जी ठीक है हम लोग। और हम
1: अच्छा, आप स्टूडेंट हैं मतलब?
2: जी
1: जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो नंदिनी जी चलिए,
2: और आप कैसे हैं?
1: हम सब लोग बढ़िया हैं, आप सभी श्रोताओं से हमारी बातचीत होती रहती है और इसके साथ साथ आपकी फरमाइशें आप तक पहुंचाते हैं, बड़ा अच्छा लगता है हम सबको भी।
2: जी हाँ, अच्छा लगता है, मुझे भी लाइक प्रोग्राम।
1: जी। तो कौन सा गीत सुनवाएं आज आपको नंदिनी जी?
2: मूवी का नाम है अनजाने और सॉन्ग है काले काले बादल जब भी छाएंगे।
1: जी बिल्कुल, राजेश रोशन का संग।
2: बारिश का मौसम आ गया है ना, तो अच्छा लगते हैं।
1: हाँ, और बारिश में तो गीत सुनने का एक आनंद अलग ही रहता है।
2: जी, और अगर मेरी रानी दीदी सुन रही है उनके लिए डेडिकेट, और आपके लिए भी डेडिकेट।
1: जो आपके परिवार के लोग हैं, आपके मित्र हैं, उन सभी को आपकी तरफ से हम सुनवा रहे हैं ये गीत। सुरेश वाडकर और साधना सरगम की आवाज है, फिल्म का नाम है अनजाने। जी धन्यवाद।

0: हेलो एमएच हॉटलाइन, नमस्कार
1: जी। नमस्कार राहुल मुराद जी।
0: जी बहुत से बात हो रही है हमारी
1: जी। मैं अरविंद अग्रवाल, गंगा जिला महोबा।
0: बहुत बहुत स्वागत।

0: थे अग्रवाल साहब, और कैसा माहौल है महोबा में? मानसून का क्या हालात है वहाँ?
1: बादल हैं, बरस नहीं रहे उम्र से ज्यादा।
0: क्या बात है, क्या बात है।
1: जी
0: तो आप भी इंतजार में हैं कि बारिश हो और
1: जी, कुछ गर्मी से राहत
0: निजात
1: मिले।
0: मिले। बिल्कुल बिल्कुल। और वाकई वहाँ आपका फेवरेट जो है बारिश के मौसम में किया जाने वाला काम कहें, या यूं कहें कि बारिश को आप किस तरह से एंजॉय करते हैं?
1: तरह तरह के पकवान बनते हैं हमारे इसमें, तो मन चलता है, कहीं निकल नहीं पा रहा है, फ्री है तो चीला बन जाए, पकौड़ा बन जाए, कुछ भी।
0: अलग है बारिश के मौसम में खान पान के जो शौकीन लोग हैं उनके लिए एक तरह से ये कहें कि वो एक तरह का पुरुषोत्तम मास है जिनको खाने।
1: जी
0: चलिए, तो आज कौन सा गीत सुनवाएं आपको अग्रवाल साहब?
1: जी दीवाना फिल्म का।
0: दीवाना फिल्म का कौन सा गीत सुनना चाहेंगे? चलिए, तो चूंकि आज कार्यक्रम में हम आपसे जुड़ भी गए हैं, बात भी हो गई है, अब आपकी पसंद का गीत आपको सुनवाते हैं। कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज़ है और ये खिदमत है आपके लिए।

0: मिठाई तो हमारे जमाने में होती थी।
1: हाँ तो जाइए ना अपने जमाने में।
2: रोमांस तो हमारे जमाने में होता था,
1: पेमेंट भी उसी जमाने का है।
3: भैया डिजिटल
1: इजी सेफ एंड फास्ट है, हमने तो इनको डिजिटल पेमेंट करना सिखा दिया। आपने ये सेल्फी लेते हैं, ये हमारे जमाने में कहता है
4: डिजिटल पेमेंट अपनाओ
5: औरों को भी सिखाओ।
6: फिर कार्यक्रम एमएच हॉटलाइन में और आइए जुड़ते हैं हमारे अगले श्रोता से। नमस्कार।
7: हेलो गुड मॉर्निंग।
6: जी गुड मॉर्निंग। में कौन सा गीत सुनवाएं कार्यक्रम में आपको?
7: मूवी का नाम है फरेब और गाने के बोले बरस जाए बादल बरस, ये हालांकि बट मुझे फिर भी आज यही सॉन्ग।
6: जी जी जी बिल्कुल बिल्कुल। और देवास, हालांकि वो तो इंदौर से बहुत नजदीक है, लेकिन वहां पर मानसून का कैसा असर है? वहां बारिश वगैरह हो रही है इन दिनों?
7: क्यों नहीं रहेगी, बिल्कुल मानसून बिल्कुल आ चुका है, यहाँ तो आ चुका है।
6: जी जी जी जी। तो वहाँ तो चूंकि आसपास पहाड़ भी हैं छोटे छोटे से, और वो एक अलग मतलब जगह है देवास, तो बड़ा हरियाली से भरा हुआ और वैसा माहौल रहता होगा वहाँ पर।
7: जी जी, वैसे देखा जाए तो हरियाली आज कम
6: कम होती जा रही है। बिल्कुल सही बात है। जी जी।
7: और बस कुछ नहीं, और आज मेरी बहन का कॉल लगा था और फर्स्ट कॉल था उसका, मैंने उसको बोला था कॉल कर ले क्योंकि मैं तो आज थोड़ा बिजी थी।
6: जी जी जी।
7: तो मैंने सोचा नहीं लगाती हूँ, फिर उसने ही आया फोन।
6: चलिए बढ़िया, अच्छी बात है, आपकी बहन का भी कॉल लगा, आपका भी लगा, बड़ी खुशी की बात है। तो अब आपकी पसंद पर हम आप तक पहुंचा रहे हैं सीधा ये गीत फरेब फिल्म से, सईद कादरी का लिखा हुआ, अनु मलिक का संगीत, सुनिधि चौहान की आवाज़। बहुत बहुत धन्यवाद।

0: देखते हैं कि हमारे अंतिम श्रोता के रूप में कौन हमसे जुड़ रहे हैं। नमस्कार, एमएच हॉटलाइन।
1: हेलो
0: जी, नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
1: सर जी, मैं हिंदुस्तानी कलाकार ग्राम कल्पा जिला सतना से चांद मोहम्मद खान प्लस मजनू दीवाना अशोक वाटिका से बोल रहा हूँ सर जी।
0: बहुत बहुत स्वागत है मजनू। बड़ा अच्छा, बड़ा ही इंटरेस्टिंग और यूं कहें कि बड़ा लंबा परिचय है आपका।
1: 100 सेंटीमीटर का है सर जी। सितारे फना नहीं होते, घाटा में छुप के कभी सितारे फना नहीं होते, और आप जैसे दोस्त मिल जाए तो कभी खपा नहीं होते और नहीं जुदा नहीं होते।
0: धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत। चलिए, तो आप कार्यक्रम का अंतिम गीत है और आप हमारे अंतिम श्रोता हैं आज के, और समय चूंकि आगे बढ़ रहा है बहुत तेज गति से, बातें तो हमें भी बहुत सारी करनी थी, बट हम चाहेंगे कि गीत की तरफ हम आगे रुख करें। कौन सा गीत सुनवाएं आपको आज?
1: सर जी, तो फिर क्योंकि मैं भी 150 किलोमीटर की रफ्तार में ही भाग रहा था कि आप निकल ना पाए, चलो गाना सुनने जल्दीबाजी क्योंकि
0: जी बिल्कुल,
1: का नाम है कामचोर और किशोर लता जी की आवाज में हुए गीत के बोल है, तुझे संग प्रीति लगा।
0: जी मजनू जी, तो आइए बिना देर किए आपकी पसंद का ही गीत आपको हम सुनवाते हैं।
1: जी जी
0: जी,

0: और इसी गीत के साथ अब आज का MH हॉटलाइन कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: हेलो MH हॉटलाइन।
0: अभी आप सुन रहे थे सजीव फोन इन कार्यक्रम MH हॉटलाइन, ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र। थोड़ी देर में अगला प्रसारण करेंगे, कृपया प्रसारण की प्रतीक्षा करें।

0: ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम प्रकृति की बात। आकाशवाणी बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण कर पर्यावरण के लिए विशेष योगदान देने वाले देवेंद्र सूरा के साथ खास बातचीत। इस संवाद का संचालन,
1: नमस्कार, मैं हूँ नीति शुक्ला और प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ में मैं आज ऐसी शख्सियत से आपको मिलवाने वाली हूँ जो इस दिशा में काम कर रहे हैं। वैसे तो हरियाणा पुलिस में कांस्टेबल है, लेकिन जो बात इन्हें खास बनाती है वो है इनका काम। ये जाने जाते हैं ट्री मैन ऑफ हरियाणा के नाम से। आइए, क्या है इनकी जर्नी और क्या है काम, जानते हैं खुद इन्हीं से। स्वागत करते हैं देवेंद्र सूरा जी का, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
2: नमस्ते बहन जी, बड़ा धन्यवाद करता हूँ मैं आकाशवाणी का, जिस तरह आकाशवाणी ने पर्यावरण के विषय को उठाया है और जन जन तक ये बात जाए और समाज में बड़ा परिवर्तन आए।
1: तो देवेंद्र जी, आप बने ट्री मैन ऑफ हरियाणा, लेकिन इसके पीछे एक लंबा सफर रहा होगा। हम उस सफर की शुरुआत की बात करेंगे कि क्या थी वो पहली घटना जिससे आपको अंदर तक झकझोरा और आपने सोचा कि इस दिशा में काम करना चाहिए और पेड़ लगाने चाहिए।
2: वैसे तो मैं अपनी मातृभूमि से, अपने देश से बड़ा लगाव है और उसके लिए समर्पित भाव से मेरे मन में यही था, मैं अपने देश के प्रति ऐसा क्या कार्य करूं जिससे मेरे देश को भी लाभ मिले। शुरू में इस तरह हमारा जो बचपन था वो गांव में या खेतों में ही बीता है। हम प्रकृति से जुड़े हुए थे, लेकिन जब हमने धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते हम चंडीगढ़ अंदर है तो पेड़ पौधों की वजह से है, क्योंकि वहाँ बहुत ऐसे ज्यादा ऑक्सीजन

0: देने वाले पेड़ या औषधीय पेड़ बड़ी संख्या में लगे हैं और वहाँ से मेरा मन भी प्रभावित हुआ। पेड़ पौधों की वजह से, पलान की वजह से एक शहर को हरा भरा बनाया जा सकता है और जिसका पूरे देश में नाम है। तो मेरे मन में आया क्यों ना इस प्लान से हम भारत के हर गांव को हरा भरा बनाएं।
1: तो ये कब शुरुआत की आपने?
0: ये 2011 में मैं चंडीगढ़ में गया और वहाँ से बड़ा प्रभावित हुआ और उसके बाद धीरे धीरे विचार बनता गया राष्ट्र के लिए ऐसा क्या कार्य करूं जिससे मेरे मन को ऊर्जा मिले। और 2012 में तो इस तरह कार्य शुरू किया और 2014 में तो बिल्कुल ने मन में धारण कर लिया प्रतिदिन पर्यावरण के अनुकूल जीवन जीना, पर्यावरण के लिए ही कार्य।
1: तो अब तक कितने पेड़ लगा चुके हैं?
0: अब तक 2.5 लाख के लगभग हमने पेड़ ऐसे लगाए हैं जो उग चुके हैं।
1: अच्छा।
0: जैसे हम परिवार में एक बच्चे का पालन पोषण करते हैं
1: जी,
0: एक छोटे बच्चे की सुरक्षा करते हैं, उसकी देखभाल करते हैं, उसके खाने का ध्यान रखते हैं, ऐसे ही सुरक्षा, उसके पानी की व्यवस्था, उसको परिवार का एक हिस्सा मानकर उसको इस दृष्टि से गांव-गांव विचार भी बढ़ा और पेड़ भी बढ़े।
1: मेरा अगला सवाल, सैपलिंग लगाना या बीज लगाना तो बड़ा आसान होता है लेकिन उसकी देखभाल करना बड़ा मुश्किल है और आप हर जगह तो नहीं जा सकते हैं, तो ये कैसे मैनेज
0: करें? मैं जब समाज में गए तो इतना इकट्ठा किया तो पर्यावरण के प्रति या पेड़ पौधे प्रति बहुत कम विचार, लेकिन जब धीरे धीरे गए उनको इनके महत्व को समझाया तो हमने कहा देखो हमारी मुहिम चलती है बीजारोपण से वृक्षारोपण। अगर जो बच्चा अगर छोटा है बीज से जुड़ जाता है, उसको पता लग गया आम की उठली से पौधा कैसे बनता है, जामुन की उठली से पौधा कैसे बनता है, जब वो उसको बीज से अंकुरित पौधा उगाते हुए खुशी होगी निश्चित तौर पर उस पौधे से जुड़ेगा और पूरा जीवन उसकी देखभाल करेगा, उसको परिवार का हिस्सा मानेगा और गांव सभी को इकट्ठा करके एक मूवमेंट जन आंदोलन के रूप में कार्य।
1: किस एज ग्रुप का सबसे ज्यादा आपको सहयोग मिला या उत्साह से लगे? वृद्ध लोग थे।
0: वैसे तो पूरे समाज का, जनमानस का सहयोग मिला लेकिन मैं कहूँ तो सबसे ज्यादा सहयोग युवाओं का मिला।
1: अच्छा।
0: और युवा साथी भी थे और हमारी स्कूल की बेटियां भी, कॉलेज की बेटियां भी थी, जिन्होंने जब हम गांव-गांव गए, गांव में वृक्षारोपण अभियान चलाए तो एक पेड़ लगा रहे थे तो हमारे मन में आया क्यों ना इस बार हम पेड़ बेटियों के नाम पे लगाएंगे।
1: अच्छा।
0: और हमने 100 पीपल के पेड़ 100 बेटियों के नाम पे लगाए और उनकी सुरक्षा हमने उस पे लोहे का ट्री गार्ड लगाया।
1: अच्छा।
0: और उस पे हमने जैसे अक्सर समाज में होता है अगर बेटी के अगर कहते हैं भाई उसके ऊपर स्नोप लिखा जाता है तो उसमें पिता का नाम ज्यादा आता है हर जगह, लेकिन हमने एक मुहिम चलाई, युवा साथियों से चर्चा की, अब भाई बेटी के नाम के आगे ऊपर लिखना है उसकी माँ का नाम। और उसमें मातृशक्ति ने, वहाँ के जो भी सम्मानित या जितनी प्रिंसिपल सभी ने भागीदारी दिखाई, एक बड़ा विश्वास बना समाज में और वो आज पूरी सड़क है जो बेटियों ने वृक्षारोपण किया था, आज पूरे बड़े वृक्ष है, ठंडी सड़क है, पीपल वृक्ष है, बेटी रोड है, ऐसे कहते हैं।
1: कहाँ पर है बेटी रोड? कहाँ पर है?
0: सोनीपत में है।
1: सोनीपत में। ये जो आपने सहयोग की बात की, आई एम श्योर कि बहुत सारे चैलेंजेस भी आए होंगे इसमें, तो किस तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ा?
0: समाज में अगर हम काम करते हैं, लिए लाखों व्यक्तियों ने काम किया और उसमें जब भी हम कोई इस तरह का समाज के लिए, देश के लिए कार्य करते हैं उसमें निश्चित तौर पर हमें संघर्ष, एक लक्ष्य स्पष्ट हो, एक नीति स्पष्ट हो, इस मातृभूमि के लिए, देश के लिए कार्य करना है। तो जब शुरू में हम समाज में वृक्षारोपण अभियान चलाए, अब भाई ये काम आपका नहीं है, और कार्य करो, आप इस तरफ कहाँ बढ़ते जा रहे हो, लेकिन धीरे धीरे जब हम उस गाँव में पेड़ लगाए और उस गाँव में अच्छा वातावरण बना और गाँव में फल लगे, किसी गाँव में फूल लगे, तितलियों की संख्या बढ़ी, मधुमक्खियों की संख्या बढ़ी, तो धीरे धीरे समाज में एक विचार मजबूत होता चला गया, एक जन आंदोलन का रूप लेता चला गया, गांव-गांव इस तरह के अभियान चले और तो सैकड़ों गांव इसमें जुड़े।
1: अब ये तो बात हुई लोगों के सहयोग की, लेकिन अब सवाल उठता है वर्क लाइफ बैलेंस का, क्योंकि आप एक सरकारी नौकरी चंडीगढ़ पुलिस में थे तो कैसे
0: करते हुए देखे, इतने बड़े अनुशासन की सर्विस है और इतने बड़े बड़े अधिकारी हैं, IPS हैं, जो बड़े अच्छे अधिकारी हैं जिनसे हमें प्रेरणा करने, और ऐसे ही हमारे चंडीगढ़ पुलिस में हमारे DGP हैं, IG हैं, SSP हैं और उनका पूरा सहयोग बना रहता हमारे ऊपर भी छुट्टी या जब भी जिस तरह के मैं ड्यूटी का हम अपेक्षा करते हैं, अगर ड्यूटी के साथ साथ समाज का, इस पर्यावरण का काम कर सके। और निश्चित तौर पे मैं कह पुलिस की जॉब में तो बड़ा आनंद रहा, बड़ा अनुभव रहा, क्योंकि पुलिस की जॉब में

0: एक अनुशासन था और पुलिस के अधिकारियों का फुल सपोर्ट मिला। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के माध्यम से पूरे देश में एक पुलिस की छवि बेहतर हुई। जिस तरह से समाज में पौधारोपण का कार्य किया, लोगों में विश्वास बढ़ा, तो इसी तरह लोगों में समाज में भी विश्वास बढ़ा। अब पुलिस वाला व्यक्ति भी इस तरह समाज में पर्यावरण के लिए, इस धरती माँ के लिए कार्य कर सकता है।
1: आपने नाम भी रोशन किया क्योंकि आपका नाम अब जीके के सवाल में भी पूछा जाता है कि ट्री मैन ऑफ हरियाणा कौन है, और जवाब में आपका नाम आता है, तो आपके डिपार्टमेंट का रिएक्शन कैसा होता है?
0: मैं कहता हूँ प्रत्येक व्यक्ति के लिए, जीव जंतु के लिए इस पूरे पर्यावरण का विषय है, और ऐसा विषय अगर पूरे समाज में, पूरे देश में अगर चंडीगढ़ पुलिस का नाम होता है तो पूरा गर्व महसूस होता है सीनियर अधिकारियों को, और पूरा हौसला बढ़ता
1: है। अनुभव रहता है घर में कभी विरोध नहीं हुआ?
0: जब हमें पूरी पूरी सैलरी पे लगा देते हैं, और कई बार ऐसा होता है ज्यादा वृक्षारोपण के लिए तो उसमें लोन लेना पड़ता है, क्योंकि लोन से एकदम तुरंत पैसा मिल जाता है। तो शुरू में घर में, परिवार में तो विरोध हुआ, क्योंकि परिवार में अक्सर क्या होता है, ज्यादातर समाज यही अपेक्षा करता परिवार वाले कि हमारी बड़ी गाड़ी हो, एक बंगला हो, और भी सुविधाएं बढ़े, और भी संपत्ति बढ़े। लेकिन मेरा विचार ये था कि हमारा पर्यावरण बढ़े। जब हवा ही सांस लेने योग्य नहीं रहेगी, तो मैं मानता हूँ जो ये भौतिक चीजें जो हम बढ़ाते जा रहे हैं, ये कहीं ना कहीं बहुत छोटी है। हमारे परिवार में भी, रिश्तेदारी में भी, समाज में भी ऐसा बहुत शुरुआत में विरोध हुआ कि ये इतना आप इस तरफ बढ़ते जा रहे हो, और समाज जो है एक दिशा जो समाज में साधन वो बढ़ाएं, समाज में बड़ी दिक्कत आई, परिवार में बड़ी दिक्कत आई। लेकिन धीरे धीरे जब विचार मजबूत हुआ, उन्होंने पता चला जिस तरह से प्रक्रम पर्यावरण के अनुकूल हम नहीं रहेंगे, अपनी जीवन शैली नहीं रखेंगे, पेड़ नहीं लगाएंगे, जितना व्यक्ति का इस धरती पे महत्व है उतना ही एक का, उतना ही मोर का, मैं ये कहता हूँ हर जीव जंतु का उतना महत्व है। तो धीरे धीरे विचार बना और पूरा परिवार आज इस अभियान में बड़ा सहयोग करता है।
1: जब आपने ये शुरू किया था अभियान, तो कभी लगा था कि ये इतना बड़ा अभियान बन जाएगा?
0: नहीं, मैं जब गांव से 1995 में आया, और गांव में ज्यादा खेतों में जाते थे दादाजी के, और स्कूल में कम रुचि थी, लेकिन गांव से निकल के आए और शहर में पढ़े, मैं कहता हूँ स्कूल की पढ़ाई के साथ साथ हम बहुत से समाज में जो हमारे सीनियर होते हैं या जागरूक लोग होते हैं, उनसे मिले और उनसे सीखने को मिला, और धीरे धीरे मैं ये मानता हूँ कि शुरुआत में ऐसा कभी सोचा ही नहीं था। गांव जैसे आज कई हजार युवा साथी जुड़े हैं, प्रत्येक गांव में ऐसा मतलब ऐसा नहीं था, लेकिन नेक नीति जब व्यक्ति की स्पष्ट होती है उसमें कोई भी दिक्कत नहीं आती। आज महसूस होता है प्रत्येक गांव अपना परिवार की तरह है, और पूरे अपना एक परिवार की तरह है, और आज बड़ा गर्व महसूस होता है क्योंकि आज एक विचार है, प्रत्येक गांव से युवा जुड़े हैं, मातृ शक्ति जुड़ी है। और मैं बात जब मैं गांव में जाता हूँ, क्योंकि लोग इकट्ठा होते हैं और वो सोचते हैं, गांव पर व्यक्तियों का नहीं होता, गांव समस्त जीव जंतुओं का, एक अच्छे तालाब का, सभी से मिलकर गांव बनते हैं।
1: अब जंतु की बात की तो आजकल हमने ये भी नोटिस किया कि बहुत सारी प्रजातियां विलुप्त हो रही हैं, इसी के चलते कि उनके पास प्रॉपर रहने की जगह नहीं है, खाने पीने की नहीं है, तो उनके लिए किस तरह के पेड़ आप लगा रहे हैं कि उन्हें भी प्रॉपर हैबिटेट मिले और खाना मिले?
0: बहुत सी प्रजातियां आज विलुप्त हो रही है, और मैं मानता हूँ इसके ऊपर बड़ा गहरा हमने काम किया है। जैसे आपने देखा होगा विश्व में कोरोना जैसी महामारी आई, और पूरे संसार को, जिसने प्रत्येक मनुष्य की मन को, विचार को हिला दिया। समाज में जैसे लंबे समय से वृक्षारोपण अभियान चला रहे, लेकिन हम ये मानते जब लोगों का कोरोना काल में प्रकृति के प्रति बड़ा झुकाव था, और हमने देखा कि हर गांव में पहले वन क्षेत्र होते थे, बनी होती थी, और आपने कहा विलुप्त होती प्रजातियां, तो उन बनियों में वे ऐसे आश्रय थे जहाँ तीतर है, गिलहरी है, मोर। हर गांव में ऑक्सीजन बाग लगाना है, आपने आम के बाग सुने, आपने बेर के बाग सुने, लेकिन जब ऑक्सीजन शब्द का प्रयोग आया गाँव वासियों का, हजारों की संख्या में गाँव वासी, माताएं, बहने, युवा साथी एक बढ़ चढ़ कर भाग लिया, और गांव इस तरह से 10 एकड़ में, 20 एकड़ में वृक्षारोपण अभियान चले, और हरियाणा के 27 गांव में इस तरह के अभियान चले, और एक जन आंदोलन का रूप लिया। गांव ऐसा प्रयास है हर गांव में इस तरह के ऑक्सीजन बाग लगाए जाए।
1: तो अब तक कितने गांव में आप लगा चुके हैं ऑक्सीजन बाग?
0: अब तक 27 गांव में ऑक्सीजन बाग

0: आए हैं और उसके अतिरिक्त जैसे बहुत से गांव में जैसे शमशान भूमि है या किसी तालाब के पास है या स्कूल के पास है मतलब या स्टेडियम है, मतलब ऐसे पेड़ लगाए जाते हैं ऑक्सीजन बाग में जो ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन दे जा रहा है। लेकिन उससे पहले हमारे पत्तों की पतल प्रयोग होती थी, उसके लिए ढाक के पेड़ का प्रयोग होता था। हम ढाक के पेड़ को बढ़ा रहे हैं, ऐसे पेड़ को बढ़ा रहे हैं जिससे या तो जीव जंतुओं को आश्रय मिलता है या ज्यादा ऑक्सीजन मिलती है, मतलब धीरे धीरे उन औषधीय वनस्पतियों को भी बढ़ाया जा रहा है।
1: तो आपका फेवरेट पेड़ कौन सा बन गया है, क्योंकि ना करनी पड़ी हो बस लगा दिया और वो अपने आप फल जाता हो?
0: वैसे तो सभी वनस्पतियों का इस धरती पे महत्व है, लेकिन मेरा झुकाव पेड़ है और एक ही पेड़ मैं कहता हूँ इसमें
1: हमें करे। सबसे पहले
0: अगर आम इंसान भी आकाशवाणी की बात को सुन के और जन जन का विचार बने हमारे को भी पेड़ लगाना है, तो सबसे बड़ी बात है उसका विचार बन गया पेड़ लगाना, ये बहुत बड़ी बात है। और उसको सबसे पहले अपने ऐसी आदत डाले जैसे घरों में छोटी छोटी नर्सरियां बनाए, जैसे अभी हम आम खाते हैं, आम की गुठली से अपने गमलों में पौधा तैयार करे या जामुन की गुठली से पौधा तैयार करे, नीम से पौधा, जो भी घरों में फल प्रयोग करते हैं उससे पौधे तैयार करे और एक छोटी ही घर में ही नर्सरी बनाए। जब उसके पौधे 2-3 फीट के हो जाए तो कहीं भी नजदीक कोई पार्क है या कहीं उसके खेत में है, जहाँ भी संभव हो उन पेड़ों को लगाए और परिवार का हिस्सा माने और हो सके तो अपने जो भी घर में सदस्य है उनके जन्मदिन पर ऐसा प्रयास करे तो समाज में एक बड़ा परिवर्तन आएगा।
1: अच्छा।
0: पार्कों में वृक्षारोपण और नहीं तो ज्यादा नहीं तो मैं कहूंगा ऑक्सीजन देने वाले इंडोर प्लांट लगा सकते हैं जन्मदिन पर, जैसे एरिका पाम है, स्नेक प्लांट है, पीस लिलोवीरा है, तुलसी है, अशोकगंधा है, ऐसे पौधे हम घरों में जन्मदिन पर भूमि होती है उसमें खुले तौर पर बड़ी बड़ी भूमियां होती हैं और खासकर NCR के आसपास में बात करूं तो बहुत ज्यादा संख्या में हर गांव में भूमि है और पंचायती या गोचरण भूमि में बड़े स्तर पर पौधारोपण किया जा सकता है।
1: अवेयरनेस का कितना महत्व है इसमें और सोशल मीडिया के जरिए इसे किस तरह से बढ़ावा दे सकते हैं?
0: अवेयरनेस का अपना अनुभव साझा करता हूं आपके साथ, क्योंकि 10-12 साल पहले जब हम वृक्षारोपण करते थे तो उस समय इतनी जागरूकता नहीं थी। हम गांव-गांव जाते थे, लोगों को इकट्ठा करते थे, अगर 10 लोगों को इकट्ठा करना था उसके लिए भी कई बार प्रयास करने पड़ते थे। लेकिन मैं कहता हूँ सबसे बड़ी अवेयरनेस धीरे धीरे लोगों का विचार बढ़ा, तो पेड़ लगाना बड़ा अच्छा कार्य है। और आज जब भी ऑक्सीजन बाग लगाया जाता है किसी गांव में तो वहाँ पर उस गांव के हजारों व्यक्ति, आज जब भी ऑक्सीजन बाग लगाया जाता है किसी गांव में तो वहाँ पर उस गांव के हजारों व्यक्ति

0: चल सके, उसके जलवायु के अनुकूल उनका पालन पोषण कम करना पड़े और विशाल रूप ले सके, वो भी खुश रहे और ऑक्सीजन भी खुश होके देश के।
1: पॉलिथिन से किस तरह का नुकसान हो रहा है हमारे पर्यावरण को?
0: आज से अगर हम 30 साल पहले की बात करते हैं, किसी गांव में जाते हैं, गांव में कोई भी पॉलिथिन नहीं थी। अक्सर गर्व महसूस करता हूं, साथ में रखो थैला, क्यों करे हम राष्ट्र को मेला।
1: क्या बात है।
0: तो देखो ये पर्सनैलिटी के ऊपर है, व्यक्ति दो तरह की पर्सनैलिटी।

0: जोर दूंगा कम से कम पॉलीथिन का प्रयोग करें, तो धीरे धीरे जब पॉलीथिन जैसे गंदे हैं और कहीं ना कहीं हम जो ये प्रदूषण के गुलामी महसूस करते हैं, तो मेरा सबसे बड़ा निवेदन है पॉलीथिन को जितना कम से कम प्रयोग हो, अपना जीवन में पॉलीथिन का कम प्रयोग करें, दोबारा से कपड़े के थैलों का प्रयोग करें, जूट के थैलों का प्रयोग करें और कहीं ना कहीं
1: जो करने वाली चीजें वो कम इस्तेमाल करें तो काफी बदलाव आ सकता है।
0: सबसे बड़ा मैं परिवर्तन मानता हूँ व्यक्ति अपनी जीवन शैली में परिवर्तन।

0: कम से कम कपड़ों का प्रयोग करें, साधारण जीवन शैली अपनाए,
1: मतलब तो कैसा बदलाव आ सकता है।
0: पूरे विश्व में बात करें तो ऐसे देश भी है जिसमें 8-9 हजार प्रति व्यक्ति पेड़ है, लेकिन अगर भारत की बात करें तो 28 पेड़ प्रति व्यक्ति है। लेकिन समाज की बात करें, लोगों में बहुत कम जागरूकता है और पेड़ लगाना चाहिए। मैं कहता हूँ पेड़ से जुड़ गया, उसने उस पेड़ को अपने परिवार का हिस्सा मान लिया, तो निश्चित तौर पर हर साल वो किसी न किसी उत्सव पर, जन्मदिन पर पेड़ लगाएगा। और सरकार

0: पर्यावरण की समस्या, पेड़ों की समस्या है, उसका हल एक जन्मदिन पर पौधारोपण से ही पूरे देश में एक जन आंदोलन का रूप बन सकता है।
1: आपने कोई नर्सरी की भी शुरुआत की है क्या, जहां से आप बीज या आते हैं?
0: हाँ, ऐसा एक जनता नर्सरी बनाई है, उसका नाम भी इसलिए रखा जनता नर्सरी क्योंकि जनता ही नर्सरी है। उसमें फ्री में पेड़ दिए जाते हैं और उसमें ऐसे पेड़ ज्यादा दिए जाते हैं जैसे बरगद, पीपल, नीम या फलदार जामुन, समाज में जागरूकता भी बढ़े और पर्यावरण के लिए भी अच्छे रहे।
1: इतने सालों में कभी आपको ये नहीं हुआ कि भाई बस बहुत हो गया, मैंने बहुत पेड़ लगा लिए, बाकी लोग भी कुछ करें, ऐसा विचार कभी आया मन में?
0: विचार ऐसा आता है कि परमात्मा मेरे को और ज्यादा पहले से ही जागरूक करता, मैं जो ये पाता भी मन कहता है ये कार्य तो अभी शुरू हुआ है और अंतिम सांस तक इस अभियान को मतलब एक बड़ी खुशी से और समर्पित

0: बात करूं पूरे विश्व में 1730 में माँ अमृता देवी ने पेड़ों के लिए बलिदान दिया, उनकी प्रेरणा से उनकी तीनों बेटियों ने बलिदान दिया और उनके बलिदान से उस आसपास के गांव के 363 व्यक्तियों ने पेड़ों को बचाने के लिए राजस्थान में बलिदान दिया। मुझे याद आती है माता जो अभी उनका दाह संस्कार हुआ 114 साल की हुई थी, मैं गया था वहां उनसे मिलने के लिए और उनके कोई संतान नहीं थी लेकिन उन्होंने भगत के पेड़ों को अपना संतान के रूप में माना और कोयले की खान में वो काम करती थी, उनका एक झोपड़ी में रहती थी। मैं देखा उनका जो इस प्रकृति के माँ के लिए पेड़ों को बच्चों के रूप में मान के कार्य किया, मतलब ऐसे लोगों से मेरे को बड़े प्रेरणा मिलती है।
1: हमें आपसे ये बातचीत करके बहुत अच्छा लगा और अगर हमारी ये बातचीत सुन के किसी को भी ये लगा हो कि उनको भी अपने जीवन में पेड़ लगाने चाहिए तो मुझे लगता है कि ये जो हमारी बातचीत है बहुत सार्थक है।
0: जो आकाशवाणी के माध्यम से ये विचार आकाश में गूंजेगा और जनमानस में इसका विस्तार होगा तो जनमानस में जब कोई विचार बढ़ता तो समाज में पूरे देश में एक बड़ा परिवर्तन आता है। तो मैं तो आकाशवाणी का बड़ा धन्यवाद करता हूँ, इस विषय को उठाया है जो सबसे जरूरी विषय है, मनुष्य ही नहीं प्रत्येक जीव जंतु के लिए जरूरी है, तो मैं आकाशवाणी का बड़ा धन्यवाद करता हूँ।
1: और भारत के नागरिकों को क्या संदेश देना चाहेंगे?
0: भारत के नागरिकों यही संदेश देना चाहूंगा, अगर वो अपने आप को भारत का नागरिक मानते ही है तो सबसे बड़ा है कि वो अपने जीवन को पर्यावरण के अनुकूल जिए, कम से कम ज्यादा नहीं तो साल में एक ध्यान चलाएं, अपने परिवार को जोड़ें और पेड़ों को भी अपने परिवार का हिस्सा माने।
1: तो आपने इतनी अच्छी बातचीत की भाई, मुझे तो बहुत ऐसा लग रहा लगाना चाहिए और मुझे लग रहा है हमारी बातचीत सुन करके लोगों को भी लगेगा, अगर ये कुछ लोगों के मन में भी ये बात आ गई ना तो हमारी आज की ये बातचीत बहुत सार्थक रहेगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतनी अच्छी बातें करने के लिए, थैंक यू सो मच।
2: धन्यवाद बहन जी।
1: तो आज के लिए बस इतना ही और मुझे लगता है कि अब आप भी एक पेड़ तो जीवन में जरूर लगाएंगे। फिलहाल के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए नीति शुक्ला को, नमस्कार।
3: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण पर्यावरण के लिए विशेष योगदान देने वाले देवेंद्र सूरा के साथ खास बातचीत। इस संवाद का संचालन कर रही थी नीति शुक्ला। इस कार्यक्रम को आप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं pata@gmail.com।
4: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।
5: मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है।

0: यह आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। थोड़ी देर में अगला प्रसारण आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से किया जाएगा। कृपया प्रसारण की प्रतीक्षा करें।
1: ये प्रस्तुत है फोन इन कार्यक्रम, फोन करें, गीत सुने।
2: दिल से निकली है जो बात वो गानों में आती है, और जब जुड़ते हैं आप और हम तो महफिल खुद ब खुद बन जाती है। श्रोताओं नमस्कार, इस सुरीले सफर की हम सफर हूँ मैं आकांक्षा आपके साथ। स्वागत है आप सभी का अपने मनपसंद कार्यक्रम फोन करें गीत सुने में। श्रोताओं संगीत वो जादुई डोर है जो सीधे दिल को छूती है। कभी कोई धुन हमारे चेहरे पर मुस्कान ले आती है, तो कभी कोई पुराना नगमा पुरानी यादों के गलियारों में ले जाता है। लेकिन ये सफर तब तक अधूरा है जब तक इसमें आपकी पसंद और आपकी आवाज शामिल न। सुर हमारे, आवाज आपकी और बातें दिल की। जी हाँ, तो फोन है 2660902 और भोपाल का एसटीडी कोड है 0755। तो अपने कॉल्स का सिलसिला शुरू कीजिए, हम हैं आपके साथ आपसे बात करने के लिए। आइए मिलते हैं हमारे पहले श्रोता से। हेलो
3: जी, दीदी नमस्कार।
2: नमस्ते, कार्यक्रम फोन करें गीत सुने में आपका स्वागत है। हमारी बात किन से हो रही है?
3: सेवड़ा जिला दतिया मध्य प्रदेश से लोकेंद्र गुर्जर से।
2: लोकेंद्र जी कैसे हैं आप?
3: जी दीदी बढ़िया है।
2: मौसम कैसा है वहाँ?
3: मौसम दीदी कल बारिश हुई थी सुबह के टाइम
2: जी,
3: और अभी उमस थी तो बारिश से जो कि उमस थी तो गर्मियों से राहत मिली है, और थोड़ी बारिश हुई थी, बादल बारिश हो सकती है, माने ज्यादा उमस भी है, तो बस हम तो यही आशा करेंगे मैम के पानी बरस जाए। खेती बाड़ी का एक कार्यक्रम है वो चालू है
2: जी, बहुत जरूरी है खेती के लिए, हम सभी के लिए पानी का होना। आपका दिन कैसा चल रहा है अभी?
3: बिल्कुल बढ़िया चल रहा है दीदी, अपन कृषक हूँ तो खेती बाड़ी से जुड़ा हूँ, तो खेती बाड़ी का काम चल रहा है, धान की खेती की तैयारी चल रही है दीदी, और बस धान लगने वाली है दीदी, 8-10 दिन बाद धान लगेगी।
2: आज कौन सा गीत सुनना चाहते हैं आप?
3: आज दीदी फिल्म का नाम है सिंदूर, उसका एक गीत है नाम सारे भूल जाने लगे वक्त बे वक्त तुम याद।
2: इस गीत से जुड़ी कोई याद है, कोई बात है?
3: नहीं दीदी, क्या है दीदी 19 के जो

0: गीत है
1: जी,
0: मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, जैसे शब्बीर खान के गीत बहुत अच्छे लगते हैं।
1: बहुत आपकी पसंद बहुत अच्छी है। वैसे ये गीत मोहम्मद अजीज और लता मंगेशकर जी ने गाया है, लीजिए सुनिए तो अपनी पसंद का ये गीत। नमस्ते,
0: धन्यवाद।

0: नमस्कार, कार्यक्रम फोन करें गीत सुने में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कौन जो
1: मेरा नाम है पूरन वर्मा और मैं आपसे बात कर रहा हूँ राजस्थान गांव का नाम अंतवल बुगला।
0: पूरन जी,
1: बस मैडम बढ़िया है, यहाँ मौसम बादल छा रहे और रात को बारिश हुई थी मैडम थोड़ी बहुत, खेतों में वो बिजाई चालू हो गई है।
0: क्या करते हैं आप?
1: जी मैडम कल खेतों में भी बिजाई हो गई, खेतों में बुआया खेतों में वो करा दिया, खेतों में नाच पड़ गया मैडम बाजरा।
0: अच्छा, अन्नदाता हैं आप हमारे। अपना
1: जी
0: ध्यान
1: मैडम
0: रखिएगा, फसलों का ध्यान रखिएगा। और आज बताइए आप क्या सुनना चाहते हैं?
1: फिल्म का नाम है घरवाली और बारवाली और उसमें एक गाना गाने के बोले तारा रा रा रा रा ऐसा कुछ गाना है।
0: तो लीजिए सुनिए अपनी पसंद का ये गीत।

0: संगीत से जुड़े आपके मनपसंद फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुने में आपका बहुत बहुत स्वागत है। किन से हमारी बात हो रही है?
1: बात कर रही हूँ काव्या।
0: काव्या कहाँ से बोल रही हैं आप?
1: मैं सतना जिले से बात कर रही
0: हूँ। सतना से। काव्या क्या करती हैं आप?
1: मैं स्टडी करती हूँ।
0: आवाज लग रही है आपकी कि आप स्टूडेंट हैं। क्या पढ़ती हैं, कौन सी क्लास में पढ़ती हैं या कॉलेज में पढ़ती हैं?
1: मेरा इस साल 12th है।
0: अरे बोर्ड एग्जाम जी, तो कैसी तैयारी चल रही है?
1: बस मैंने आज फर्स्ट बारी कॉल किया है।
0: कॉल किया है, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका कॉल भी लग गया तो आपको तो खुशी बहुत हो रही होगी। मैं आकांक्षा बोल रही हूँ। आज क्या सुनना चाहती हैं आप?
1: मूवी का नाम है गब्बर इज बैक।
0: गब्बर इज बैक जी, इस फिल्म का कौन सा गीत आप सुनना?
1: नहीं, मेरी कहानी बारिशों का पानी।
0: तो बारिश के मौसम के लिए ये गीत सुनना चाहती हैं या इस गीत से जुड़ी कोई आपकी याद है?
1: बरसात का मौसम आ गया इसलिए।
0: ये गीत आपको पसंद है? ठीक है। काव्या जी, किस सब्जेक्ट से आप 12th कर रही हैं? क्या लिया है आपने?
1: मैं बायो।
0: बायोलॉजी, साइंस लिया है आपने। डॉक्टर बनेंगी?
1: जी
0: ठीक है, तो आपके आगे भविष्य के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अच्छे से मेहनत कीजिएगा और आपकी मेहनत ज़रूर रंग लाएगी, ये हमारा विश्वास है।
1: थैंक यू मैम।
0: आपने फ़ोन किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लीजिए सुनिए अपनी पसंद का ये गीत।

0: नमस्कार, फोन करें गीत सुने कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
1: नमस्कार मैडम।
0: नमस्ते, कौन बोल रहा है, अपना परिचय दीजिए।
1: ओम प्रकाश प्रजापत बोल रहा हूँ मैडम।
0: ओम प्रकाश प्रजापति जी, कहाँ से बात हो रही है आपसे हमारी?
1: जिला खरगोन, तहसील भगवानपुरा, ग्राम पंचायत दुलकोट से बात कर रहा हूँ।
0: खरगोन मध्य प्रदेश।
1: जी मैडम।
0: जी कैसे हैं आप?
1: बड़े बारिश हो रही है, आज रात भर भी हो गई है और अभी भी बारिश चल रही है हमारे यहाँ पे।
0: बारिश का आनंद ले रहे हैं?
1: जी मैडम, घर पे ही।
0: अच्छा, आज क्या करेंगे आप?
1: गाना सुना दिए जी, ब्लैकमेल फिल्म का, पल पल दिल के पास।
0: ठीक है, लीजिए तो अपनी पसंद पर सुनिए फिल्म ब्लैकमेल का ये गीत। नमस्ते।

0: आपसे बात तो कर लें हम?
1: हाँ बात कर लो आप।
0: जी, कैसे हैं आप?
1: हाँ जी मैडम,
0: अच्छे हैं। कैसा समय बीत रहा है?
1: मौसम ठंडा है पर गर्मी जाना है।
0: अच्छा, क्या करते हैं आप?
1: मैं घर पे पान की खेती करता हूँ। गांव में रहता संदलपुर गांव, आखिरी पास गांव मैडम, पान की खेती करता हूँ। देसी पान होता हमारे गांव में। जी,
0: तो पान के शौकीन लोगों को, लोगों तक अच्छे अच्छे पान भिजवाते हैं आप?
1: हाँ खिला दे पान उनको।
0: हाँ जी। अच्छा, आज पसंद बताएं अपनी क्या सुन।

0: रहे हैं आप?
1: अरे वो तो बूंदाबांदी होती है, कभी अच्छी हवा चलने लगती है, बादल गरजता है, बिजली चमकती है।
0: जी, ऐसे में
1: अब सुनवाना आप बेताब फिल्म का बादल क्यों गरजता है।
0: मौसम से रिलेटेड गाना ही आज आप सुनना चाहते हैं।
1: जी
0: तो लीजिए, सुनिए अपनी पसंद का फिल्म बेताब का ये गीत।
1: जी
0: नमस्ते।

0: नमस्ते, कार्यक्रम फोन करें गीत सुने में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फोन के उस पार कौन है, हमारी किन से बात हो रही है, अपने बारे में बताइए।
1: हेलो, गुड मॉर्निंग मैम।
0: गुड मॉर्निंग,
1: मैं रानू गुप्ता बात कर रही हूँ देवास से।
0: रानू गुप्ता जी, आप नियमित श्रोता हैं हमारी, कैसी हैं
1: और
0: आप?
1: कैसे हैं आप?
0: हम ठीक हैं, आप कैसी हैं?
1: हम भी अच्छे हैं, और आपसे बात हो रही है तो और ज्यादा अच्छे, क्योंकि आप ना हमारी पसंदीदा अनाउंसर में से एक है।
0: ओह, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे यहाँ सभी अनाउंसर्स आपकी पसंदीदा हैं, ये और बहुत अच्छी बात होती है। रानू जी, मौसम कैसा है वहाँ देवास
1: मौसम
0: में?
1: आज सुबह से यहाँ बारिश हो रही है।
0: अच्छा, तो बारिश के इस मौसम में कुछ खास कर रही हैं आप?
1: कुछ खास तो बस शाम को एक शादी में जाना है इंदौर, तो
0: जी,
1: बस उसी की तैयारियों में लगी हुई हूँ।
0: शाम की शादी की तैयारी अभी सवेरे से?
1: आज मतलब जो मेरी भांजी है उनकी शादी तो हो चुकी है, बट रिसेप्शन है तो जाना है शाम को, बस उसी में लगी हुई हूँ।
0: ठीक है, आज कौन सा गीत सुनना चाहती हैं बताइए।
1: मूवी का नाम है खट्टा मीठा, और गाने के बोले आइला रे आइला, क्योंकि ये जून का महीना मुझे बड़ा खूबसूरत लगता है। मतलब
0: हाँ, मौसम तो बहुत अच्छा है। ये गीत आपको क्यों पसंद है रानू जी?
1: थोड़ा डांस करने का मन कर रहा।
0: आहा, शाम को है, भांजी का डांस का मन कर रहा है आपका, हमें तो
1: जी
0: यही
1: थैंक
0: लग रहा है। ठीक है
1: यू मैम।
0: रानू गुप्ता जी, आपने हमें फोन किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।

0: हेलो,
1: हेलो नमस्कार।
0: नमस्ते।
1: मैं तहसील चंदवा मध्य प्रदेश से देवीदास वाली बोल रहा हूँ। फोन करेगी सुने?
0: कैसे हैं आप?
1: हाँ वो मैडम जी, और यहाँ बहुत बारिश, मस्त बारिश हुई है, बढ़िया
0: जी
1: खतरनाक।
0: खतरनाक।
1: हाँ बहुत मजा आ गया।
0: चलिए ऐसे ही आनंद आप लीजिए इस मौसम का। आज कौन सा गीत सुनना चाहते हैं आप?
1: चलो सजना जहाँ तक घटा चले। हाँ
0: जी ये गीत है मेरे हमदम मेरे दोस्त फिल्म का।
1: मैडम जी बड़ो, मेरे हमदम मेरे दोस्त।
0: जी बिल्कुल, ये गीत आप तक पहुंच रहा है बस कुछ ही देर में। नमस्ते श्रोताओं, वक्त का पहिया चलता रहता है और खूबसूरत लम्हे यादों में बदलते रहते हैं। बातें तो दिल की खत्म नहीं हुई, पर घड़ी की सुइयां इशारा कर रही हैं कि अब हम वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का। आज का ये सुरीला सफर और आपकी प्यारी प्यारी बातें और लाजवाब गानों की फरमाइश, आज का दिन आप सबने बेहद खास बना दिया है। ऐसे ही बने रहिए आकाशवाणी मध्य प्रदेश के साथ।

0: अभी आप सुन रहे थे फोन इन कार्यक्रम फोन करें, गीत सुने, प्रस्तुति थी आकांक्षा की, ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए अब सुनिए इस घंटे की खास।
1: मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अब से कुछ देर बाद शिवपुरी में अडानी समूह द्वारा स्थापित किए जा रहे लगभग 2,500 करोड़ रुपए की लागत के रक्षा संयंत्र का शिलान्यास करेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव और केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य 211 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन भी करेंगे। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने कहा है कि मंत्रालय ने मादक पदार्थों की मांग में कमी लाने के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना शुरू की है। छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध पंडवानी गायिका और पद्म विभूषण से सम्मानित तीजन बाई का आज सुबह रायपुर के एम्स में निधन हो गया। वे लंबे समय से बीमार थीं और रायपुर के एम्स में उनका इलाज चल रहा था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीजन बाई के निधन पर दुख व्यक्त किया है। सरकार ने मूल्यों में स्थिरता के लिए प्याज की खरीद मूल्य में 13% की वृद्धि की है। प्याज की कीमत अब 1,875 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़कर 2,125 रुपये प्रति क्विंटल हो गई है। उपभोक्ता मंत्रालय ने कहा है कि संशोधित खरीद मूल्य से प्याज उत्पादक किसानों को बेहतर। निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार आज ओंकारेश्वर और महेश्वर के धार्मिक और ऐतिहासिक स्थलों के दौरे पर हैं और

प्रदेश में सेफ क्लिक 2.0 साइबर जागरूक जीआरपी भोपाल द्वारा कल 5 किलोमीटर साइबर जागरूकता मैराथन का आयोजन कर नागरिकों को साइबर अपराधों से बचाव के संबंध में व्यापक रूप से जागरूक किया गया। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। दोपहर के 12 बजे हैं। लीजिए अब सुनिए आपकी फरमाइश। आपकी फरमाइश सुनने वाले सभी श्रोताओं को छाया पाठक का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, सबसे पहले आपको सुनवाते हैं इन श्रोताओं के पसंद का फिल्मी नगमा, जिसे हमने लिया आपकी कसम फिल्म से। आवाजें किशोर कुमार और लता मंगेशकर की हैं। आनंद बख्शी के बोलों को संगीतबद्ध किया राहुल देवबर्मन ने। सुना चाहा है छत्तीसगढ़ भाटापारा दतरेंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक वर्मा, झाविंद्र कुमार वर्मा। बेमेतरा से ये पत्र आया सुरेश सारथी, पूर्णिमा सारथी। मैंक रेडियो श्रोता संघ नवागढ़ कटई से नारायण प्रसाद वर्मा, चंद्रकांत वर्मा, सीमा शारदा दामिनी वर्मा का। तो आइए सुनते हैं ये गीत।

कार्यक्रम का अगला गीत सुना चाहा है वड़खेड़ा कटनी से संतोष सिंह ठाकुर, रामाधार दुबे, सुमेर पटेल, सुदामा सेन, बारेलाल बढ़े, फेरन यादव, शेख मुनीर मंसूरी और ग्राम त्राया राम कुमार लोधी और संजय पुरी का। इन श्रोताओं ने सुना चाहा है मनहर का गाया, निदा फाजली का लिखा, उषा खन्ना का संगीतबद्ध किया ये गाना, जिसे हमने लिया आप तो ऐसे ना थे फिल्म से।

आकाशवाणी मध्य प्रदेश से आप सुन रहे हैं आपकी फरमाइश कार्यक्रम का अगला गीत सुना चाहा है घंटाघर चौक खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन संप्रीत, हेमेंद्र और सन्मति पंचोलिया ने।

सुना चाहा है घंटाघर चौक खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन, संप्रीत, हेमेंद्र और सन्मति पंचोलिया ने। आवाज़ें दी किशोर कुमार और लता मंगेशकर ने।

लता मंगेशकर के आवाज़ में गाए मजरू सुल्तानपुरी के इस फिल्म थी अभिनेत्री। इस गीत के साथ ही कार्यक्रम आपकी फरमाइश यहीं समाप्त करने की छाया पाठक को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।

0: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी।
1: सूचना हो, समाचार हो या हो सुरताल, सबकी पहली पसंद आकाशवाणी हो।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: दिल दे दिया है जान तुम्हें देंगे,
2: नहीं वफादारी। आजकल कौन सोचता है ये सब, जीने के हैं चार दिन तो जियो जी भर के।
3: तुम्हें पता नहीं है शायद, संक्रमित व्यक्ति के साथ असुरक्षित यौन संबंधों से HIV एड्स और यौन संक्रमण का खतरा सबसे अधिक होता है, इसीलिए वफादारी बहुत जरूरी
4: और अनचाहे गर्व से भी सुरक्षा मिलती है, समझे?
2: हाँ भाई समझा।
3: तो संयम, वफादारी और कॉन्डोम अपनाओ, सुरक्षित यौन व्यवहार बनाए, और हाँ अधिक जानकारी के लिए अपने मोबाइल से 1097 डायल करें।
5: मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित।
6: कभी रुलाकर कभी कहानी बनकर तो कभी कविता बनकर, कभी कोई तराना तो कभी हमारी जिंदगी में रंग भरे। मन की बात, जन जन की बात,

0: रेनी सीजन को हम जरूर एंजॉय करें
1: गर्मा गर्म।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का बदली स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
4: बरसात के सुहाने मौसम में जगह जगह गड्ढों में भरने लगता है गंदा पानी, कीचड़ गंदगी का फैल जाता है साम्राज्य, भिन भिन आती है मक्खियाँ, पनपने लगते हैं मच्छर, मौसमी बीमारियाँ देने लगती हैं दस्तक।
5: दिल करे हावी ये बताए क्या होगा।
6: हमें कुछ नहीं होगा अगर हम सभी अपने घर और आसपास सफाई रखें, गड्ढों में पानी न जमा होने दें, मच्छरदानी का प्रयोग करें, पानी की शुद्धता का ध्यान रखें, ताज़ा हल्का भोजन करें, खुले में रखें कटे फल और इस मौसम का।

0: सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग सोमवार से शुक्रवार क्षमणि भोपाल पर।
1: नमस्कार, मैं राजीव वर्मा स्वच्छता ही सेवा अभियान से जुड़ा हुआ हूँ और आप सभी से गुजारिश करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि आप भी इससे जुड़ें और अपने कार्यालय, घर, कॉलोनी, मोहल्लों को स्वच्छ रखें। धन्यवाद। जय हिंद।
2: पानी की हर बूंद है अनमोल,
3: बहने ना दें इसे बेमोल।
2: आओ मिलकर सच कर दें हम धरती माँ का सपना,
3: बूंद बूंद जल संरक्षण कर पहना दें हरियाली का गहना।
4: मीडियम वेव 188.32 मीटर्स पर यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है कार्यक्रम संग्रहालय से, जिसमें आज आप सुनेंगे धारावाहिक हंसना मना है, इसका भाग 4।

कीजिए दोस्तों, एक बार फिर इस नई कड़ी के साथ हाजिर है आपका अपना दोस्त रजनीकांत त्रिवेदी। एक ट्रेन की कहानी है जिस वो किस स्पीड में चल रही है इसका अंदाज आपको आगे हो जाएगा। वो 20 की स्पीड में थी कि 15 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड में थी। देखिए चली जा रही है ट्रेन, गर्मी का मौसम है, पसीना पसीना हो रहे हम। जो पंखे लगे थे वो सिर्फ दिखने भर के थे, वो चल नहीं रहा था, एक दो जरूर चल रहे थे। चली जा रही थी ट्रेन, अचानक वो ट्रेन रुक गई, थोड़ा सा जंगली एरिया आया। जब वो ट्रेन रुक गई तो मैंने पूछा कि यार अचानक क्या हो गया, जब तक कोई स्टेशन आया। तो एक दो लोगों ने कहा, नहीं नहीं नहीं साहब, स्टेशन नहीं आया है, क्या हुआ है, एक भैंस वो इंजन के आगे आगे आ गई है। तो हमने कहा वो भैंस कट गई है क्या? कह नहीं साहब, कट नहीं गई है, वो खड़ी हो गई है। तो फिर क्या किया जाए? वो कह साहब रेलवे के जो गार्ड हैं और

दूसरे कर्मचारी हैं वो जा देंगे, फिर अपनी ट्रेन चलेगी। हमने कहा बहुत बढ़िया। दो चार मिनट ट्रेन रुकी रही, फिर गाड़ी चालू हो गई, चलती रही ट्रेन। अचानक फिर ट्रेन रुक गई। मैंने कहा भैया अब क्या हुआ, कोई स्टेशन आया क्या? तो लोगों ने कहा नहीं। तो हमने फिर ट्रेन क्यों रुक गई? तो एक सज्जन बोलते हैं कि ले वो वाली भैंस जो पीछे आ गई थी ना, वही वाली फिर से आगे आ गई है। अब साहब हुआ क्या, हम लोग तो चले जा रहे थे, साम दाम दंड भेद, भाई सफर तो तय करना ही करना था, बहुत लंबा सफर, गर्मी बहुत हो रही थी। अचानक वो ट्रेन एक स्टेशन पे रुक गई। हमने कहा चलो स्टेशन तो आया है, चाय वाय लेने लगा मैं, तो अचानक क्या देखता हूँ कि एक लड़का पंखे बेच रहा था, हाथ वाले पंखे जो हाथ से चलते हैं, वो वाले पंखे लेके आवाज लगा रहा था।

ला पंखा। तो मैंने कहा भाई गर्मी तो मेरे को घंटे 4 घंटे का सफर है, पंखा ले लिया जाए। मैंने पंखे वाले को बुलाया, हमने भाई पंखे कितने कितने के, एक है 4 आने का, दो का। भाई एक काम कर, 2-4 घंटे के लिए कौन पैसे ज्यादा खर्च करे, तू एक काम कर 4 आने वाला दे दे। तो उसने मुझे 4 आने वाला पंखा दे दिया। हम भाई की ट्रेन जब चलने को थी, बस उसके 2 मिनट पहले ही मैंने वो पंखा लिया और उसको हिलाने लगा। मैं हिलाता हूं तो क्या देखता हूं, उसके अंदर जितने भी मटेरियल लगा था पंखे का पूरा जमीन में आ गया। हमने कहा अरे यार ये क्या हुआ, 25 पैसे खर्च किए और इसमें तो हवा ही नहीं निकल रही, भी टूट गया। मैंने फौरन पंखे वाले को बुलाया, हमने पंखे वाले इधर आना भाई, इधर आइए, ये क्या दिया आपने, ये कैसा पंखा दिया आपने, जैसे इसको हिलाया है तो ये तो टूट गया। तो पंखे वाला बोलता है आपने कितने वाला पंखा लिया था। मैंने कहा भाई 4 आने वाला पंखा लिया था। आपने गलती की साहब, ये जो 4 आने वाला पंखा और 8 आने वाला पंखा है इसमें जरा सा फर्क है। ये जो 8 आने वाला पंखा मैं देता हूं ना, वो उसको ऐसे हाथ में पकड़ना पड़ता है और हाथ को ऐसे हिलाना पड़ता है तो हवा लगती है ना। हमने कहा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा और ये 4 आने वाले की क्या खासियत है। इसकी खासियत ये है साहब, इसको हाथ में ऐसा पकड़ना पड़ता है और अपना सिर को हिलाना पड़ता है बड़ी जोर जोर से। हमने ट्रेन आगे सफर का अलग आनंद आ रहा था। अचानक जहां मैं बैठा था उसके ऊपर की तरफ एक दो लोग बैठे हुए थे, कुछ इस तरफ बैठे थे कुछ उस तरफ बैठे थे। एक नौजवान साथी से कुछ पूछते हैं, वो बुजुर्ग ने नौजवान से पूछा क्यों भाई कहाँ जा रहे हो, तो लड़का बोलता है उधर जा रहा हूं। कहले अच्छा अच्छा जबलपुर तो भाई मैं भी जा रहा हूँ। कहले अच्छा बाबू जी जबलपुर तो हम भी जा रहे हैं। कहले वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है भाई जबलपुर में। कहले जबलपुर में मैं तो वहाँ मतलब जो बड़ा फुहारा है, कमानिया गेट है, बड़ा फुहारा है, व्यापारी क्षेत्र है, बड़े अच्छे अच्छे लोग रहते हैं वहाँ पर, वहाँ रहता हूँ। तो बुजुर्ग नौजवान से बोलते कहले बहुत खूब बात है भाई, वाह वाह वहाँ तो हम भी रहते हैं। तो लड़का बोलता अच्छा बाबू जी कितनी अच्छी बात है, आप वहाँ पे कहाँ रहते हैं साहब। कहले वहाँ एक कृष्ण भगवान का मंदिर है उसके पास में रहता हूँ। तो लड़का बोलता कहले क्या बात है बाबू जी वहाँ तो हम भी रहते हैं, अच्छा कृष्ण भगवान के मंदिर के पास। बुजुर्ग बोलते हैं बहुत खूब बात है, वहां आप कहाँ रहते हैं। कि साहब कृष्ण भगवान के मंदिर के बिल्कुल बाजू से जो गली जाती है ना, जहाँ वकील साहब रहते हैं और एक कपड़े वाले भैया रहते हैं, एक किराने वाले भैया रहते हैं। हमने हाँ हाँ हाँ हाँ मैं वहीं रहता हूँ। फौरन बुजुर्ग बोलते कहले कितनी अच्छी बात है बेटा, देखो है जहाँ तुम रहते वहाँ हम रहते, जिस शहर में तुम रहते उसी शहर में हम रहते। तो बुजुर्ग ने बोला बेटा एक बात और बताओ, तुम्हारे मकान का नंबर क्या है। तो लड़का बोलता हमारे मकान का नंबर तो 115 है। तो वाह क्या बढ़िया बात है बेटा, कहले मेरे मकान का भी नंबर 115 है। मेरा हो गया दिमाग खराब। हमने नौजवान एक ही शहर में रहते हैं, एक ही महल्ले में रहते हैं, पूरा एरिया एक ही गली मकान, वो नंबर वही सब कुछ वही, लेकिन ये नहीं कि ये कौन है और वो कौन है। मैंने अचानक सवाल किया किससे, बुजुर्ग से। हमने क्यों बुजुर्गवार आप एक बात बताइए, आप दोनों एक ही शहर में रहते हैं, एक ही इलाके में रहते हैं, एक ही गली में रहते हैं, अरे एक ये तो छोड़िए आप एक ही मकान में रहते हैं और उसके बाद आप लोग आपस में पहचानते नहीं कि ये कौन है वो कौन है। तो बुजुर्ग कुछ बोले, वो लड़का ऊपर से कूदा मेरे सामने

0: मुझसे बोलता है आप चुप रहिए। हम लोग बाप बेटे हैं, हम लोग बोर हो रहे थे इसलिए मनोरंजन कर रहे हैं। और अब एक और हंसोड़, विनय जैन। जब देखो तब दांत निपोरी इनकी आदत है, फिकर नहीं का है या ना आए। देखिए तो क्या कहते हैं ये।
1: हंसी की एक फुलझड़ी प्रस्तुत कर रहा हूँ कि साहब, कॉलेज की एक लड़की अपने प्रिंसिपल से बोली,
2: सर।
1: क्या बात है?
2: सर, कॉलेज के सभी लड़के मेरे को ना बुआजी कह के चिढ़ाते हैं, अच्छा नहीं लगता सर।
1: रुक जाओ बेटा, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। रमेश आप खड़े हो जाइए, आप इनको बुआजी बोलते हैं?
3: नो सर, मैं इनको बुआजी नहीं बोलता।
1: बैठ जाइए। सुरेश आप खड़े हो जाइए, आप जरूर इनको बुआजी बोलते होंगे। भले माफा भगवान की कसम खा के कह रहा है, हम तो बोल ही नहीं सकते। भले भैया भगवान ने तुम्हारा मुंह दिया है, कैसे नहीं बोल सकते। भले माँ साहब ऐसे नहीं बोल सकते, काहे कि सारा कॉलेज तो हमें फूफा जी कहता है। एक ऐसे साहब जिन्हें बोलने में बहुत परेशानी महसूस हुआ करती थी, बहुत सारी बातें अटक अटक कर बोला करते थे। तो जैसे ही साहब प्लेटफॉर्म पर खड़े हुए अखबार पढ़ रहे थे और एक सज्जन अपना बहुत सारा सामान लेके प्लेटफॉर्म के सामने वाले साहब अटक अटक के बोला करते हैं, बड़ा हाथ में सामान वगैरह लिए हुए थे, एक हाथ में छाता था, एक हॉलडाल कंधे में था, एक संदूक दूसरा अपोजिशन वजन से बिल्कुल डाउन हुई जा रही थी। जैसे ही प्लेटफॉर्म में एंट्री हुए, उनने आना देखा, ताओ अटक के बोलने वाले साहब के पास पहुँच के फौरन सवाल किया,
4: भोपाल जाने वाली राजकोट एक्सप्रेस कहाँ है, जल्दी बता दो, बहुत बजन है भाई।
1: तो अटके लाल साहब, जिनका पूरा नाम अटक लाल झपट सिंह था, उन्होंने फौरन जवाब दिया,
4: किसी और से पूछा होता तो बता दिया होता, अब तक भोपाल जाने वाली राजकोट एक्सप्रेस वो जा रही।
1: साहब भी बड़े गुस्से में आ गए, अटकलाल झपट सिंह जी, और बस स्टैंड पहुंच गए। बोले साहब मैं बस से जाऊंगा। सारे लोग बस स्टैंड पहुंच गए। बस जैसे ही चली, सौभाग्य कहिए या दुर्भाग्य, सज्जन बस में और चढ़े और वो भी बोलने में अटकते थे, और बैठे कहाँ वो अटकने वाले सज्जन के बाजू ही में। जैसे ही बस चली, जो नए सज्जन थे उन्होंने पुराने,
5: क्यों भाई साहब आपका नाम क्या है? नाम है सीता, और तुम्हारा नाम क्या है?
3: मेरा नाम भी घसीटा है, मगर उतना नहीं जितना घसीटा।
1: अपनी श्रीमती जी को लेकर साड़ी की दुकान में पहुंचे, काउंटर मैन से जाके क्या बोलते हैं?
5: तो भाई साहब साड़ी है?
1: तो काउंटर मैन जवाब देता है, हाँ भाई साहब साड़ी है, मगर इतनी लंबी नहीं है। अपने चाचा जी की किताबों की दुकान में पहुंचते हैं, किताबों की दुकान चाचा जी की बुक्स एंड स्टेशनर्स के नाम से एक जी की ऐसी दुकान में जाते हैं। तो चाचा जी से पहुंचते ही से चाचा जी भोजन करने के लिए जाने वाले रहते हैं, तो फौरन वो अपने भतीजे को बुला गए, हमारी दुकान में बैठो और हम खाना खाने जा रहे हैं, और भतीजे को बिठा देते हैं। तो साहब जैसे ही चाचा जी ने उनसे बोला
4: कि देखो तुम अटक बेटा, तुम यहीं दुकान में बैठो और मैं खाना खा के आता हूँ, समझे, और ध्यान रखना ग्राहकी का जरा।
1: ठीक है चाचा जी, आप बिल्कुल चिंता मत करो। जैसे ही चाचा जी गए, फौरन एक ग्राहक आया और इनसे पूछा, भैया वो संस्कृत की कुंजी देना। साहब ने फौरन कुंजी निकाल के सामने काउंटर पर रख दी। कितने की?
4: 7 रुपए।
1: क्या भाई साहब आप मजाक कर रहे हैं, इतनी बड़ी दुकान चलाते हैं, अभी थोड़ी देर पहले हमारा छोटा भाई 7 रुपए

0: डब्बा में लेके गया है 2 घंटे का, बिल्कुल गलत है ये तो।
1: तुम चुप रहो, वो लड़का 75 पैसे बोलने के।
0: एक साहब बहुत ज्यादा गप हाँकने के शौकीन थे, शिकार कही अपने किसी जमाने की बात लेकर बैठ गए, 4 लोगों के बीच में अपना शिकार का वाकया सुनाने लगे।
2: बोले साहब, हुआ यूं कि मैं गया और मैंने देखा कि एक शेर चला जा रहा है। अब मुझे आया गुस्सा, तो मैंने निकाली अपनी बंदूक। जैसे निकाली बंदूक तो शेर ने बंदूक देखी तो एक छलांग लगाई, और शेर ने जैसी छलांग लगाई तो मैं घबरा गया, और जैसे मैं घबराया तो शेर ने मेरे को दिया पटक।
0: बोले फिर तो अचानक किसी ने उनको बताया, बोले साहब आपका टेलीफोन आया, कोई आपको फोन पे याद कर रहा है। तो भाई साहब यहाँ गप सुनाते सुनाते वहाँ टेलीफोन पे किसी के साथ बात करने चले गए, आधा पौन घंटा कोई से टेलीफोन पे बात करते रहे। मैंने बोला हाँ साहब, फिर आगे क्या हुआ? तो साहब तो वैसे ही गप्पी भूल चुके थे कि क्या सुना रहे थे। बोले साहब वो आप शेर का वाक्य सुना रहे थे कि गुस्से। बोले हाँ, हमने गए और बहुत देर बगीचे में बैठे रहे, फिर एक साथ फिल्म देखी और नाश्ता वगैरह किया, वापस आके सो गए।
3: भाई वाह, लतीफे सुनाने में मकरंद बड़नेरकर का जवाब नहीं, यकीन नहीं आता ना, तो चले सुने इनको।
4: एक ट्रैफिक हवलदार सड़क पर खड़े अचानक उन्होंने एक साइकिल वाले को आते हुए देखा और डंडा फटकारते हुए बोले, अरे रुक रुक, बिना हेडलाइट और बिना घंटे की साइकिल चलाता है। साइकिल वाला बोला, हवलदार जी हट जाइए, इसमें ब्रेक भी नहीं है। एक क्लास के दौरान मास्टर जी पढ़ा रहे थे कि पढ़ाते पढ़ाते उनका ध्यान अचानक एक छात्र पर गया। सभी छात्र तो उनकी बात बड़े ध्यान से सुन रहे थे, लेकिन उस छात्र का ध्यान किसी और जगह लगा हुआ था। उस छात्र का नाम गया प्रसाद था, और छात्र जो था वो कमरे के एक कोने में बिल में एक चूहे को अंदर और बाहर आते हुए जाते हुए देख रहा था। बार बार चूहा अंदर आ रहा था, बाहर जा रहा था, और छात्र का ध्यान बिल्कुल उसी चूहे की ओर था। मास्टर जी परेशान हो गए, क्या बात है, कहीं और ध्यान दे रहे? मास्टर जी ने लगभग चीखते हुए कहा। लड़के ने कहा, नहीं मास्टर जी, अभी पूंछ बाकी है।
3: ध्यान रहे, आप सुनम जिसका नाम है हंसना मना है।
5: बात एक सुनने वालों से बस इतनी कहना है, हंसना मना है, हंसना मना है।
3: जन्मदिन आपने बहुत मनाए होंगे, खूब मनाए होंगे, बड़े प्यार मनाए होंगे, मगर हमारे दोस्त गोपाल तिवारी शामिल हुए एक खास जन्मदिन पर, सुनिए।
6: घटना गांव की है, और गांव की इसलिए क्योंकि भारत गांव का देश है, गांव में बसता है, और ये पटेल साहब हैं, सरपंच बन गए, पटेल इनकी उपाधि है। उन्होंने अपने बच्चे का जन्मदिन कैसे मनाया वो एक घटना मैं आपको सुना रहा हूं। के पटेल साहब ने पटेलन से पूछा,
7: अरे काय पटेलन?
6: हाँ बोलो।
7: वो अपने गुड्डा को जन्मदिन कब है?
8: गुड्डा को जन्मदिन समझ लो आप, बड़ी जीजी को लड़का छठ में भाव, और जी छोटी को भाव 13वीं के बाद चौथ को, और जी समझ लो पंचमी को है, तो जो समझ लो कि हर छठ।
7: अरे तुम यार हर छठ तीजा ना बताओ, तुम मतलब डेट बताओ ना।
8: हाँ समझ लो, हम तुम्हारा बोला हुआ रहो, जब होते से नौकरी करवा दई, ओके बाद पानी का बरसो रहो खूब कड़क के बिजली, फिर ओरा गिरे थे होते। अरे तुम यार खगलो नहीं यार, तो मतलब बताओगे।
7: डायरी देखो।
8: अच्छा एक मिनट, देख रहे ला कर
7: डायरी। डायरी वायरी उन्होंने देखी, और डायरी देख के बाद उन्होंने बताया कि ये कब हुआ।
8: तीज के दूज की बात 22 तारीख को भाव, और आज है समझ लो 20 तारीख, कल छोड़ पा रहा हूँ जन्मदिन।
7: हाँ तो कहने लगे ठीक है, अब वो पहले जैसा जन्मदिन नहीं हो।
8: कैसा मतलब पहले जैसा नहीं होगा?
7: अरे पहले अपन वो चौक और वो सब नहीं कर लेते थे, मतलब बुला के आरती पूजा टीके चंदन, वो मतलब नहीं होगा।
8: काय अब काय ना हुआ भाई, गुड्डा को 3rd जन्मदिन वो काय ना हुआ?
7: तो बोले अरे नहीं समझो तुम, अब हम बन गए सरपंच।
8: हाँ बात वो तो बन गए, खूब वोट मिले।
7: अब जी जो है गुड्डा जो है, इसका जन्मदिन अपन शहर की स्टाइल में मनाएंगे, लोगों को लगे तो कि नहीं मतलब अपन सरपंच बन गए ना, मतलब थोड़ा कादर खड़ी हो जाए जरा, समझा करो बात को।
8: अब साहब ये हुआ कि उसने कहा कि करना कुछ नहीं है, अब जैसा आप बोले वैसा करेंगे।
7: एक काम करेंगे, हम शहर से वो कैंडल वेंडल और केक वेक वो सब पूरा ले आएंगे, और तुम पूरे गाँव में चर्चा

0: बिल्कुल भिजवा देना, समझ गया ना,
1: सेलिब्रेट करेंगे।
0: बात डिसाइड हो गई, कंप्लीट हो गई कि ऐसा मनाना है। पटेल साहब शहर चले और उन्होंने दरवाजा खटखटाया। जिस दिन गुड्डा का बर्थडे है उस दिन दरवाजा उन्होंने खटखटाया। पटेलन पटेलन
2: एक मिनट आ रहा है।
0: अरे क्या कर रहे, जल्दी खोलो यार दरवाजा।
2: एक मिनट आ रही है, खेल रहे तुम, मतलब ऐसी जल्दी मचा।
0: अरे जल्दी खोलो, क्या कर रहे तुम अंदर।
2: अरे भाई मतलब अब रार की दाल चढ़ी है, उधर खिचड़ी चढ़ी, एक तरफ भी माता रानी की रानी भी बना रहे, अब एक आदमी के तो काम करे, मतलब आ तुम खाली यहाँ चले आए।
0: अरे हाँ यार, वो कब हो के मतलब गाड़ी जो है हमारी खराब हो गई, तो ओके मतलब पीछे इंजन में काम निकल आओ, अब इंजन बनवाओ दो चका पंचर, चका बनवाओ दो फिर पीछे चका पंचर, जे माने पूरी नपोर चौदस में मतलब पूरी दिक्कत हो गई, और धर माने लाओ करो सामान जो है तो छूट गो।
2: हाँ मैं मान लिया, मैं तुम्हारे भरोसे कच्चू नहीं हो सके।
0: अरे नहीं मतलब ऐसी बात नहीं, हम कोशिश हमने पूरी की थी, सब सामान ले लिया था, वो वहीं वो गैरेज में छूट गया।
2: तुम्हारे भरोसे रहते जी,
0: जाओ तुम तो अंदर, अब हमने सब व्यवस्था कर ली है। अब साहब ये अंदर आए और उन्होंने कहा अब कैसे मतलब करेंगे, अब फिर चौक बधाव वाला होगा।
2: नहीं ऐसा नहीं कहा, आप हमें कहें से समझ रहे भाई, जब आप सरपंच तो हम भी तो कछु भाई हैं।
0: अच्छे कहाँ पढ़ गई।
2: नहीं भी प्रौढ़ शिक्षक चल रहे हो आजकल, रेडियो में बता रहे पढ़े पढ़ाए जीवन बनाए, और एक नहीं एक दूनी दो चौके पांच छक्कू बढ़िया पढ़े हमने, कोचिंग क्लास पढ़ी हमने।
0: कौन से पढ़ लाई।
2: पंडित जी की ललकच पढ़ी, पंडित जी की बहुत बढ़िया पढ़ा, तुमने पढ़ा दो हमें।
0: अच्छा ठीक है, तुमने व्यवस्था क्या करी जो दिखाओ हमें।
2: केक बना लो।
0: केक बना लो, केक कहाँ से बना लो तुमने।
2: नहीं टीवी पे हमने बाकी रैप शीट देखी थी।
0: क्या देखी रही। अरे रैप शीट नहीं यार, वो तो तेल होता रैप शीट, रेसिपी रेसिपी बोलते हैं। दो क्लास और पढ़ लेती बाबू की यहाँ, फालतू बात ना कर तुम बाबू की यहाँ, इतो दही दो सब अंदर कर लो बाबू को। ठीक है भाई ठीक है, गुस्सा नहीं हो तुम, मतलब जो बताओ कहाँ केक कहाँ।
2: जी जी धरो, आ देखो टीवी में धरो टीवी।
0: अरे बहुत गजब, बहुत बढ़िया यार। एक बार
2: पूछो
0: जी, इतना बढ़िया केक तुमने बनाया कैसे, इतना बड़ा इतना सुंदर मतलब बनाया है, ऐसा लग रहा कम से कम 10 किलो से कम का नहीं होगा ये केक, कितना बढ़िया बनाया, कैसे बनाया गया।
2: हमने रेप शीट देखी, हमने दिमाग लगाओ कि अब जो केक तो हमें बनाने न वो बन है ना कच्छू, कैसे बनाए, तो हमने जुगाड़ करो भी जो दुकान है ना किराना की, वो कहाँ गए हम कहीं। फिर हमने उसे कही, हमने भैया 6-8 ठंगियां फैमिली ब्रेड दे दो।
0: कौन सी
2: फैमिली ब्रेड बोलते यार बड़ी वाली को। हाँ फिर तो बोले, फिर हम ब्रेड लाए और लाके ब्रेडों की किनार हमने काट के माहे करी।
0: अच्छा मतलब फेंक दी।
2: फिर हमने ऐसी 4-6 ठंगियां ब्रेड धारी और गुड़ की बनाई चाशनी, तो गुड़ की चाशनी फिर ब्रेड फिर चाशनी फिर ब्रेड फिर चाशनी।
0: बहुत बढ़िया, फिर क्या करो।
2: फिर कछु नहीं, गुड़ की चाशनी माहौ डार के अपनो हरी रंग होली को बचो तो बोरंग 2-4 प्रकार के कलर और टेसू को रंग बना लो अच्छी रंग रोगन कर दो झगा झग के। फिर और क्या करो, नहीं दूध की मलाई बची तो आइसिंग कर दाई होगी बन गए धरो का। और सुनो ऐसी पन्नी की पंगड़िया बनाई हमने, और पंगड़िया बना के उसके अंदर भरी चाशनी में अपन थोड़ी सी मलाई मिला के और रंग मिला के अच्छे भरो, और को नाम लिख दो हैप्पी बर्थडे टू यू गड्डा, और 3 नग दो 30 रुपए जरा दे 3 लिख दो, और अपने सिग्नेचर मार दे बढ़िया केतैया। अच्छा एक बात बताओ पटेल।
0: हाँ पूछो।
2: अपने से मतलब कोई को जन्मदिन हो, शादी ब्याह हो, चाहे कोई आदमी दुनिया में नहीं रहे।
0: हाँ तो तुम कहोगे
2: मैं वैसे नहीं पूछ रहा, दो आदमी को अपन जरूर बुला।
0: कौन।
2: एक तो वे पंडित जी।
0: हाँ तो वो तो ठीक है,
2: और दूसरा कौन। खवाजा।
0: तुमको पता नहीं कब अकल आएगी।
2: क्यों कहोगे अकल आए।
0: भाई देखो ऐसा है कि ये जो कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं ये विदेश का है, वहां कहां पंडित जी और वहां कहां मतलब खवाजन।

अपने आपसे क्षमा चाहेंगे, आप आए बड़ा अच्छा हुआ। आप एक काम करिए, नाश्ता करिए और ये छोटी सी दक्षिणा है आप रखिए और क्षमा करेंगे आप। अरे नहीं नहीं वो तो कोई बात नहीं, हम तो आपके घर के आदमी हैं, मतलब जब भी आप याद करें। प्रैक्टिकल दिमाग रखती है और उसका

0: कैमरा वैमरा।
1: अरे तुम अरे यार फुआ को बुलाया गया भाई, केक रखा गया। हाँ चलो जल्दी से। अच्छा ये काम तो करो, करवा क्या होगा तो मैं तो कान में बताऊं ना। अरे पटेल साहब भूल गया सामान, हमने जुगाड़ करके केक बनाओ और तुम अब मतलब कैंडल फैंडल के बीच कछु नहीं, जहाँ हम हैं तो गम नहीं। अब भाई हम व्यवस्था करवाए थे तुम्हें का, जब तुमने जुगाड़ से केक बना हम कछु नहीं कर सके तुम आ जाने, तुमने तो कर। अब भाई
2: तुम एक काम करो, 3 ठेंगे भपका ले आओ। अब साहब 3 भपके मंगवाए गए, वो मट्टी के तेल के होते हैं, ले सोन है लेस दो। अच्छा लड़का बच्चा जितने सब पीछे आ जाए। हाँ और अब ये तो बताओ कि जैसे ही सब जन केक कटे और सबको चिल्लाने हैप्पी बर्थडे टू यू गुड। अरे एक काम तो हम रह गई, पहले जैसे ही समझ लो कि हम काम एक काम करके काम बढ़ा जा रहे हैं, जल्दी कर गए तुम बिल्कुल है, नहीं तो 1.5 घंटा हो गया भाई। पहले फुआ ऐसे आ तुम ऐसे बाजू में खड़े हो जा, पहले केक की निछावर ऐसी गजा बता रहे केक की निछावर आ तक देखो जो गांव काम है केक की निछावर करो, दो न दो में काम न चल है 10 को निकाल लूट है केक की निछावर है ऐसे कम ना ले हम वहाँ केक की निछावर करो। केक की निछावर साफ हो गई और केक की निछावर के बाद 10 रुपये ने हाँ एक माहौर कटोरी ला, माहौर राहौर लगाया गुड्डा को बाकायदा माहौर टिपकी की लगाई और उसके बाद में केक का कटने का आइटम शुरू हो रहा है। उसके पहले उनने कहा अब का है गो एक बात और एक बात और देखो ये मैं नेंग के तुमने 10 रुपये निछावर के दे निशानी भी तो दो। काहे की निशानी भाई देखो। कहने लगे फिर का चलो दे दे और 5 कुरे गेहूं दे हमने 5 कुरे गेहूं दे और बोलो। अब गुड्डा तुम एक काम करो पहले जे भपकन को फूको, तो गुड्डा ने जैसी भपकों को फूका लाए खवासन ने और भपका बुझाए अलग करे देखो बज गए। अब गुड्डा एक काम करो चक्कू से चक्कू तो लाओ। ए बेटा ऐसे हाँ तुम्हारा नाम
3: लपका।
2: अरे लपका तो लपक के जरा चक्कू ले आओ।
3: बाबू नहीं मिलो।
2: अरे तुम नहीं उन कहाँ भी नहीं मिलो। एक काम करो तुम तो हंसिया ले आओ। गांव का परिवेश और हंसिया से केक कट रहा है एक नई बात है। और जैसे ही केक कटे तो उन्होंने कह दिया खवासा ने कि सबको चिल्लाने हैप्पी बर्थडे टू यू गुड्डा और न चिल्ला समझ लो हाँ टाफियां बांटे बिना मिल है। तो साहब जैसे ही केक के लिए उसने गड्डा ने हसिया उठाया और बुआ ने पकड़ा साथ में उनके मम्मी पापा पटेल साहब पटेलन पकड़े हैं और
4: हैप्पी बर्थडे टू यू गुड्डा हैप्पी बर्थडे टू यू
2: गचर पचर गचर पचर पूरा केक को कीमा बना डा उनने। तुम चटनी निकाल डालो अलग करो बात हसिया तुम अलग करो नहीं गुड़ तो दे गुड़ की हसिया बात अलग है जो केक को हसिया है गरे फंस गया है। खैर साहब अब वो हंसी अलग किया गया। अच्छा एक काम करो केक डिस्ट्रीब्यूट करो। क्या करो डिस्ट्रीब्यूट। अरे यार डिस्ट्रीब्यूट अंग्रेजी हाथ में केक धर के सबको बांटा जा रहा है और छिवला के पत्ता में धर धर के दिया जा रहा है।
5: संग्रहालय से इस कार्यक्रम में मध्य प्रदेश है, लीजिए अब सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
6: मुख्यमंत्री डॉक्टर

0: मोदी के आत्मनिर्भर भारत मिशन को भी बल मिलेगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस साल अल्प वर्षा की आशंका को देखते हुए प्रदेश के किसानों से कृषि कार्यों की वैज्ञानिक एवं व्यवहारिक योजना बनाने देने की अपील की है। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होगा और 13 अगस्त तक चलेगा। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि सत्र में राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर सार्थक बहस, चर्चा और निर्णय लेने पर ध्यान दिया जाएगा। से कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच रवाना हुआ। यात्रा के पहले दो दिनों में 32,313 श्रद्धालुओं ने पवित्र गुफा मंदिर में दर्शन किए। प्याज की खरीदी में 13% की वृद्धि की है। प्याज का खरीद मूल्य अब 1,875 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़कर 2,125 रुपये प्रति क्विंटल हो गया है। भोपाल के भारत भवन में गायन पर्व का आयोजन किया जा रहा है। इस पर्व में आज शाम 7 बजे से मंजरी अस्नारे घंटों के दौरान प्रदेश के कई जिलों में भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: निशुपुरी की प्रस्तुति है।

बहनों को आपकी कार्यक्रम सखी वंदना अग्रवाल का प्यार भरा नमस्कार। सखियों, आज कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर, सुनेंगे गीत संगीत और खाना खजाना में बनते हैं उनकी, जो हमारी धरती को हरा भरा बनाते हैं, वो हैं हमारे वृक्ष। पेड़ है तो जीवन है, पेड़ है तो भविष्य है। यह केवल एक नारा नहीं बल्कि आज की सबसे बड़ी और घटते हरित क्षेत्र ने पूरी दुनिया को पर्यावरण संकट के सामने खड़ा कर दिया है। ऐसे समय में 1 से 7 जुलाई तक मनाया जाने वाला वन महोत्सव हमें प्रकृति से जुड़ने और वृक्षारोपण का, क्यों वन महोत्सव की शुरुआत वर्ष 1950 में हुई थी। इसका उद्देश्य

हैं, वे हमें अवशोषित कर वायु को स्वच्छ बनाते हैं और पृथ्वी के तापमान को संतुलित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पेड़ वर्षा चक्र को बनाए रखने सहायक होते हैं। सखियों, आज शहरों के विस्तार, औद्योगिकरण

आने वाली पीढ़ियों को इसका गंभीर परिणाम भुगतना पड़ेगा। वन महोत्सव हमें केवल पौधे सुरक्षा और पर्याप्त देखभाल मिले, इसलिए पौधा लगाने के निवास के खाली स्थान पर पौधे लगाएं। स्थानीय लिए सबसे उपयुक्त समय माना जाता है। वर्ष कम से कम एक पेड़ हम अवश्य लगाएंगे और उसे बड़ा होने तक उसकी

में इसकी सुंदरता और बढ़ जाती है। बिट्रिश का जाना जाता है। यह घने जंगलों के बीच स्थित है। यहाँ से आसपास के जंगलों का मनोरम दृश्य दिखाई देता है। सखियों, यहाँ पर तात्याटोप पे स्मारक है। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के महान सेनानी तात्याटोपे की स्मृति में और इतिहास का महत्वपूर्ण प्रतीक है। धार्मिक महत्व रखने वाला एक स्थान बाणगंगा भी यहाँ है। यह स्थान स्थानीय लोगों और श्रद्धालुओं के बीच विशेष आस्था का केंद्र है। बहनों, शिवपुरी प्राकृतिक, ऐतिहासिक और धार्मिक पर्यटन कम है। यहाँ आने वाला प्रत्येक पर्यटक हरियाली, झीलों, ऐतिहासिक स्मारकों और वन्य जीवों की सुंदर दुनिया का अनुभव करता है। यदि पर्यटन के साथ प्रकृति का पर्यटन स्थलों में से एक है, आइए शिवपुरी के इस अमूल्य धरोहर को देखें, समझें और इसके संरक्षण में अपना योगदान दें।

सखियों अपनी चर्चा में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारी छोटी सी बगिया की। बहनों, बारिश की पहली फुहार के साथ ही चारों ओर हरियाली छा जाती है। पेड़ पौधे जैसे नई ऊर्जा से भर उठते हैं और प्रकृति का हर रंग पहले से अधिक निखर जाता है। मानसून का मौसम केवल मौसम का बदलाव नहीं बल्कि प्रकृति से अपनी बगिया को नया जीवन देने का सबसे उपयुक्त समय है। यदि आपके घर में छोटा सा आंगन, छत, बालकनी या कुछ गमले ही क्यों ना हो, आप एक सुंदर और हरी भरी बगिया तैयार कर सकती हैं। इसलिए पौधों की जड़ें जल्दी विकसित होती हैं और उनकी बढ़वार भी अच्छी होती है। यही कारण है कि अधिकांश पौधे मानसून में आसानी से लग जाते हैं। इस मौसम में आप गुलाब, गुड़हल, मोगरा, सदाबहार, कनेर जैसे फूलों के पौधे लगा सकते हैं। इनकी सुगंध और रंग आपकी बगिया को महका देंगे। यदि आप औषधीय पौधों के शौकीन हैं, तो तुलसी, एलोवेरा, लेमन ग्रास लगा सकते हैं। सखियों, इस समय किचन गार्डन शुरू करने का भी सुनहरा अवसर है। टमाटर, मिर्च, लौकी, मेथी और धनिया जैसी सब आसानी से उगाई जा सकती हैं। घर में लगाई हुई ताजी सब्जियां न केवल स्वादिष्ट होती हैं, बल्कि स्वास्थ्य के लिए भी अत्यंत लाभकारी होती हैं। हालांकि इस मौसम पौधों की देखभाल भी उतनी ही आवश्यक है। गमलों में पानी जमा न होने दें, क्योंकि अधिक पानी से जड़ें गल सकती हैं। समय समय पर खरपतवार हटाएं, सूखी पत्तियां निकालें और जैविक खाद का उपयोग करें। यदि पौधों में कीट दिखाव करें, इससे पौधे स्वस्थ और सुरक्षित रहेंगे। बहनों, बागवानी केवल एक शौक नहीं बल्कि तनाव दूर करने का एक प्रभावी माध्यम है। पौधों के बीच बिताया गया समय मन को शांति देता है, सकारात्मक सोच विकसित करता है और परिवार के सदस्यों को प्रकृति के करीब लाता है। तो इस मार्ग व्यक्त करें, अपने घर के किसी छोटे से कोने को हरियाली से सजाएं, पौधे लगाएं, उनकी देखभाल करें और अपनी फूलों की खुशबू से महकाएं। सखियों, जैसे ही आसमान में काले बादल छाते हैं, ठंडी हवाएं चलती हैं और रिमझिम बारिश शुरू होती है, वैसे ही गर्मा गर्म पकौड़ों की याद हर किसी के मन में ताजा हो जाती है।

इस याद को बनाए रखने के लिए आज हम खाना खजाना में लाए हैं मिक्स वेज पकौड़े की रेसिपी। तो नोट कीजिए सामग्री, हमें चाहिए 2 कप बेसन, 1 प्याज पतले स्लाइस में कटा हुआ, 1 आलू मिर्च बारीक कटी हुई, 2 बड़ी चम्मच हरा धनिया बारीक कटा हुआ, 1 छोटा चम्मच अजवाइन, 1/2 छोटा चम्मच हल्दी, 1/2 छोटा चम्मच गरम मसाला, स्वादानुसार नमक और साथ ही चाहिए तलने के लिए तेल। मिक्स वेज पकौड़े बनाने के लिए एक बड़े बर्तन में बेसन लें, उसमें हल्दी, लाल मिर्च, गरम मसाला, अजवाइन और नमक डालकर मिला लें। अब इसमें कटा हुआ प्याज, आलू, हरी मिर्च और हरा धनिया डाल दें। थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए गाढ़ा घोल तैयार कर लें। अब कढ़ाई में तेल गरम करें। अच्छी तरह गरम होने पर मिश्रण को हाथ या चम्मच की सहायता से छोटे छोटे भागों में तेल में डालें। मध्यम आंच पर पकौड़ों को सुनहरा और कुरकुरा होने तक तलें। अतिरिक्त तेल निकालने के लिए पकौड़ों को टिश्यू पेपर पर रखें। गर्मा गर्म पकौड़ों को हरी धनिया पुदीने की चटनी के साथ परोसें। साथ में अदरक इलायची वाली गर्म चाय हो तो बरसात का आनंद दोगुना हो जाता है। अधिक कुरकुरा बनाने के लिए बेसन में आप 1-2 बड़े चम्मच चावल का आटा मिला सकती हैं। और इसी विधि से हम पालक, गोभी, बैंगन, हरी मिर्च के पकौड़े भी बना सकते हैं। तो इस बारिश के मौसम में आप यह पकौड़े बनाएं, खुद खाएं और सबको खिलाएं और वर्षा ऋतु का आनंद उठाएं। अब अपनी कार्यक्रम सखी वंदना को दे अनुमति। नमस्कार।

प्रदेश है। लीजिए अब सुनिए लोक संगीत। आज का कार्यक्रम आकाशवाणी शिवपुरी की प्रस्तुति है। पहले सुनते हैं रजनी अर्जरिया का गाया ये लोकगीत।

0: अशोक कसेरा की गई इस गज़ल के साथ ही सुगम संगीत अब यहीं समाप्त होता है। आप सुन रहे थे आकाशवाणी शिवपुरी की प्रस्तुति प्रदेश है, वक्त है छोटे से अंतराल का।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी।

कार्यक्रम का पहला गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार का गाया हुआ, जिसे लिखा आनंद बख्शी ने, धुन तैयार की आर डी बर्मन ने और फिल्म का नाम है अजनबी।

आनंद बख्शी का लिखा, एसटी बर्मन का संगीतबद्ध किया, लता मंगेशकर का गाया, ये फिल्म का गीत था चुपके चुपके फिल्म से। इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत अब यहीं समाप्त होता है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी, दोपहर के 2:10 होने को हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं नवनीत चौबे। केंद्रीय संचार एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरात्री डॉक्टर मोहन यादव आज शिवपुरी में अदानी समूह के लगभग 2500 करोड़ रुपए की लागत वाले अत्याधुनिक डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का योजना औद्योगिक विकास के विजन को नई गति प्रदान करेगी। परियोजना के माध्यम से क्षेत्र के छोटे एवं मध्यम उद्योगों को रक्षा उत्पादन की सप्लाई चेन से
1: डिफेंस रक्षा क्षेत्र का संयंत्र प्रोपेलेंट गैस और अनेक उपकरणों का 3000 करोड़ का भूमि पूजन के इतिहास रचा जा रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की डिफेंस कॉरिडोर के साथ शिवपुरी को जोड़ा जा रहा है। इस रक्षा के संयंत्र से हमारे वीर जवानों को नई टेक्नोलॉजी के अस्त्र शस्त्र भी मिलेंगे।
0: अब से कुछ देर में शिवपुरी के स्थानीय पोलो ग्राउंड में आयोजित शिलान्यास कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जिले के 211 करोड़ से अधिक के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कल से शुरू होने वाली इंडोनेशिया यात्रा दोनों देशों के बीच मौजूदा संबंधों को मजबूती प्रदान करेगी और सहयोग के नए क्षेत्रों के द्वार खोलेगी। आज जकार्ता में आकाशवाणी को दिए एक साक्षात्कार में इंडोनेशिया में भारतीय राजदूत संदीप चक्रवर्ती ने कहा कि 6 से 8 जुलाई तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया यात्रा के दौरान भारत और इंडोनेशिया के बीच सहयोग के कई नए क्षेत्र खुलेंगे और इन दोनों देशों के बीच संबंधों में मजबूती और आर्थिक जुड़ाव में वृद्धि। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आभार व्यक्त किया कि विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका जुलाई से सफलतापूर्वक लागू हो गया है। मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस मिशन के अंतर्गत राज्यों के लिए 25,000 करोड़ रुपए की सहायता कहा कि इस अधिनियम के तहत अगले 5 सालों में 2,86,000 पंचायतों में 7.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश किया जाएगा।
2: मनरेगा को पूरे देश लागू करने में 3 साल लगे थे, लेकिन मुझे आप सब पर गर्व है। 1 साल 2 साल नहीं, पहले दिन ही विकसित भारत जी राम जी योजना पूरे देश में लागू हो गई। 100 दिन नहीं, अब 125 दिन रोजगार, 5 साल में 7.5 लाख करोड़ से ज्यादा की राशि 2,86,000 पंचायतों में ठीक से लग गई तो गांव संपूर्ण विकसित हो जाएंगे, समृद्ध और विकसित गांव का निर्माण हो जाएगा।
0: सरकार ने तरल प्राकृतिक गैस एलएनजी की आपूर्ति से आपातकालीन पाबंदियां हटा ली है। यह निर्णय पश्चिम एशिया संघर्ष में युद्ध विराम के बाद होर्मुज जलडमरू मध्य से प्राकृतिक लिया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा कि प्राकृतिक गैस आपूर्ति नियमन आदेश 2026 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सुप्रसिद्ध पंडवानी गायिका तीजनबाई के निधन पर दुख व्यक्त किया। सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि तीजनबाई ने महाभारत की कहानियों को अपनी सशक्त आवाज, रोबदार व्यक्तित्व तथा अद्भुत शैली की प्रस्तुति के साथ मंच पर जीवंत बनाया।

की समृद्ध पंडवानी परंपरा को भारत तथा विदेश में प्रतिष्ठा दिलाई। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अपने शानदार प्रदर्शनों के जरिए तीजनबाई ने छत्तीसगढ़ की लोक कला शैली के लिए वैश्विक पहचान अर्जित की। प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भी उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की। अब बात मौसम की। प्रदेश में मॉनसून पूरी तरह सक्रिय हो गया है। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के कई हिस्सों में भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। भोपाल, इंदौर, उज्जैन और नर्मदापुरम संभाग में वर्षा का सबसे अधिक असर रहने का अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार 9 जिलों में अति भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं उज्जैन, इंदौर सहित 20 जिलों में पन्ना टाइगर रिजर्व में बाघिन P652 ने 2 नन्हे शावकों को जन्म दिया है। दोनों नवजात शावकों की उम्र लगभग 10 दिन के आसपास। अगला बुलेटिन सुनिए शाम 7:10 पर। नमस्कार।

0: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। अब दोपहर समाचार सुनेंगे दिल्ली से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। होर्मुज जल डमरू मध्य से तरल प्राकृतिक गैस की आपूर्ति फिर शुरू होने के बाद सरकार ने एलएनजी पर लगी आपातकालीन पाबंदियां हटाई। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन राज्यों को 25,000 करोड़ रुपए की सहायता जारी की। केंद्र सरकार ने मेटा को इस विज्ञापन हटाने का आदेश देते हुए 7 दिन के भीतर जवाब मांगा। छत्तीसगढ़ की सुप्रसिद्ध पंडवानी गायिका तीजन बाई का राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने शोक व्यक्त किया। गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और ओडिशा में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में आज शाम इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला। और अब समाचार विस्तार से। सरकार ने तरल प्राकृतिक गैस एलएनजी की आपूर्ति से आपातकालीन पाबंदियां हटा ली हैं। ये निर्णय पश्चिम एशिया संघर्ष में युद्ध विराम के बाद होर्मुज जल डमरू मध्य से प्राकृतिक गैस की आपूर्ति फिर शुरू होने के बाद किया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा है पूर्ति नियमन आदेश 2026 में संशोधन किया गया है।
2: इस संशोधन के अंतर्गत उन विशेष आपातकालीन अंतर्गत सरकार को देश में उत्पादित प्राकृतिक गैस और आयातित एलएनजी के आवंटन में प्राथमिकता देने की अनुमति थी। होर्मुज जलडमरू मध्य से बाद इस साल मार्च में आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत ये आपातकालीन आदेश जारी किया गया था। इस बीच मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर उन खबरों को भ्रामक और गलत बताया है जिनमें ये दावा किया गया है कि भूटान ने भारत से E20 पेट्रोल आयात करने का प्रस्ताव ठुकरा दिया है। मंत्रालय ने कहा कि भूटान को E20 पेट्रोल निर्यात करने का कोई प्रस्ताव नहीं दिया गया है। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
1: केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 1 जुलाई से विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण जी रामजी अधिनियम 2025 सफलतापूर्वक लागू होने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। श्री सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस मिशन के अंतर्गत राज्यों के लिए 25,000 राशि जारी की। श्री चौहान ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण विकास मंत्रियों के साथ वीबीजी रामजी योजना भी की। उन्होंने कहा कि आज जारी की गई पहली किस्त का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि राज्यों के पास पर्याप्त धनराशि हो 15 दिनों के भीतर किया जा सके। उन्होंने कहा कि मनरेगा को लागू होने में 3 साल से ज्यादा का समय लगा था जबकि विकसित भारत जीरा पूरे देश में सिर्फ 1 दिन में लागू कर दिया गया।
3: मनरेगा को पूरे देश में लागू करने में 3 साल लगे थे लेकिन मुझे आप सब पर गर्व है।

0: एक साल दो साल नहीं, पहले दिन ही विकसित भारत जी राम जी योजना एक साथ पूरे देश में लागू हो गई। 100 दिन नहीं, अब 125 दिन रोजगार, 5 साल में 7.5 लाख करोड़ से ज्यादा की राशि 2,86,000 पंचायतों में ठीक से लग गई, तो गांव संपूर्ण विकसित हो जाएंगे, समृद्ध और विकसित गांव का निर्माण हो जाएगा।
1: श्री चौहान ने कहा कि वीबी जी राम जी योजना के तहत मजदूर औसतन लगभग 10% की वृद्धि की गई है। असम के गुवाहाटी में कल से 2 दिवसीय ब्रिक्स मादक पदार्थ रोकों की बैठक शुरू होगी। गृह मंत्रालय ने कहा कि इस बैठक में ब्रिक्स के सदस्य देशों के मादक पदार्थ रोधी एजेंसियों के प्रमुख करेंगे। इससे मादक पदार्थ नियंत्रण एजेंसियों के समूहों में संस्थागत निरंतरता को सशक्त बनाने और गहन परिभावा देने में मदद मिलेगी। भारत की अध्यक्षता में कल से केरलम के कोच्चि में 2 दिवसीय ब्रिक्स महिला कार्य समूह की बैठक शुरू होगी। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने बताया कि ब्रिक्स देशों के अधिकारी महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास के क्षेत्रों सहित अन्य क्षेत्रों में महिला सशक्तिकरण

0: विदेश मंत्रालय के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने कहा है कि प्रधानमंत्री के इंडोनेशिया दौरे में कूटनीतिक बैठकों के सत्र के संरक्षण पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा।
1: प्रधानमंत्री का मुख्य कार्यक्रम जकार्ता में योग्यकार्ता का भी दौरा करेंगे, जहां वे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल प्रम्बानंद मंदिर परिसर जाएंगे। भारत और इंडोनेशिया इस ऐतिहासिक मंदिर परिसर के संरक्षण और संवर्धन के लिए मिलकर काम करने की योजना बना रहे हैं।
0: आकाशवाणी से विशेष बातचीत में इंडोनेशिया में भारतीय राजदूत संदीप चक्रवर्ती ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी की इंडोनेशिया यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच संबंधों में मजबूती और आर्थिक जुड़ाव में वृद्धि स्पष्ट रूप से दिखाई देगी।
2: The significance is immense.
1: भारत और इंडोनेशिया का संबंध दो प्राचीन सभ्यताओं की मजबूत साझेदारी का प्रतीक है। दोनों देशों के रिश्ते सदियों पुराने हैं, लगातार मजबूत हो रहे हैं। मेरा मानना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया यात्रा से दोनों देशों के बीच सहयोग के द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होंगे, साथ ही व्यापार, निवेश और आर्थिक साझेदारी को भी नई गति मिलेगी।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऑस्ट्रेलिया यात्रा से पहले प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने भारत को एक महत्वपूर्ण आर बताया है। श्री अल्बनीज ने कहा कि हमारे संबंध व्यापक रणनीतिक साझेदारी पर आधारित हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने सोशल मीडिया साइट इंस्टाग्राम पर शुल्क वाले विज्ञापनों में बाल यौन शोषण और दुर्व्यवहार सामग्री के प्रसार को लेकर मेटा को कड़ी चेतावनी जारी की है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार सरकार ने इंस्टाग्राम को ऐसी विषय वस्तु को बढ़ावा देने और इसकी पहुंच को सुगम बनाने वाले सभी विज्ञापनों और सामग्री को दिया है। एक रिपोर्ट।
3: इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने मेटा से 7 दिनों के भीतर विस्तृत स्पष्टीकरण मांगा है कि क्या प्लेटफॉर्म ने भारत की मध्यस्थ सुरक्षा दिशा निर्देशों का अनुपालन किया है। भारत में डिजिटल कानूनों के अंतर्गत अश्लील सामग्री का वितरण एक अपराध है। इससे पहले मंत्रालय ने उन रिपोर्टों का संज्ञान लिया था जिनमें कहा गया था कि इंस्टाग्राम पर कुछ आपत्तिजनक सामग्री प्रदर्शित की जा रही है जो बाल यौन शोषण को बढ़ावा देती है और अधिकारियों को मेटा से जवाब मांगने के निर्देश जारी किए थे। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह कल से जिनेवा में एआई गवर्नेंस पर संयुक्त राष्ट्र के वैश्विक संवाद में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। 2 दिवसीय वैश्विक एआई संवाद में एआई पर स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक पैनल की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी जो एआई की क्षमताओं, उभरते अवसरों और जोखिमों का पहला स्वतंत्र वैज्ञानिक मूल्यांकन प्रदान करती है। भारत स्विट्जरलैंड के जिनेवा में उपभोक्ता संरक्षण कानून और नीति पर अंतर सरकारी विशेषज्ञ समूह के 9वें सत्र की अध्यक्षता करेगा और विकास संगठन द्वारा 6 से 8 जुलाई तक आयोजित किया जा रहा है। छत्रिका और पद्म विभूषण से सम्मानित तीजन बाई का निधन हो गया है। वे लंबे समय से बीमार थीं। रायपुर के एम्स में उनका इलाज चल रहा था। आज सुबह लगभग 3:15 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली। डॉक्टर तीजन बाई का अंतिम संस्कार आज शाम उनके पैतृक गांव दुर्ग जिले के गनियारी में राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा।
4: दिले दिले वो मारे ढाला पे है जैसे पानी में घुड़ा ढेला।
5: तीजन बाई का जन्म 24 अप्रैल 1956 को छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के गनियारी गांव में एक साधारण परिवार में हुआ था। बचपन से ही उन्हें महाभारत की कथाएं सुनने और गाने का शौक था। सामाजिक विरोध और आर्थिक कठिनाइयों के बावजूद उन्होंने छोड़ा। तीजन बाई ने अपनी सशक्त आवाज, प्रभावशाली अभिनय और अनोखी

0: प्रस्तुति शैली नहीं बल्कि विदेशों तक नई पहचान दिलाई। महाभारत की कथाओं को मंच पर जीवंत करने की उनकी कला ने उन्हें भारतीय प्रतिष्ठित कलाकारों में शामिल किया।
1: दोनों जने मिलकर सुनो कि मैं कुरुक्षेत्र मैदान में मैं भूल के शस्त्र नहीं चलाऊं।
2: अच्छा, जे जान पड़े तो मोला छोड़ दे भैया, सेना ले ले चला। सावन में
0: विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर।
3: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुप्रसिद्ध पंडवानी गायिका तीजन बाई के निधन पर दुख व्यक्त किया है। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रामेन डेका और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने डॉ तीजन बाई के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIR कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। और अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच कल बातचीत हुई। रूस के राष्ट्रपति के सहयोगी यूरी उशाकोव ने क्रेमलिन में बताया कि अमरीका के स्वतंत्रता दिवस की 250वीं वर्षगांठ पर बधाई दी। बातचीत के दौरान राष्ट्रपति पुतिन ने श्री ट्रंप को यूक्रेन युद्ध की स्थिति के बारे में जानकारी दी। अमरीका ने कल राष्ट्रव्यापी समारोह के साथ अपनी स्वाधीनता की 250वीं वर्षगांठ मनाई। मौसम संबंधी बाधा के बाद वाशिंगटन में आयोजित मुख्य कार्यक्रम नेशनल मॉल में शुरू हुआ। राष्ट्रपति ट्रंप के इतिहास में इस वर्षगांठ को एक ऐतिहासिक क्षण बताया। मौसम विभाग ने आज गुजरात, कच्छ, कोंकण, मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
4: मौसम विभाग ने अगले चार दिनों में दरी अरब सागर, गुजरात, हरियाणा और पंजाब के बाकी हिस्सों और राजस्थान के कुछ और इलाकों में आगे बढ़ने की संभावना व्यक्त की है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक और उत्तराखंड में तेज से बहुत तेज वर्षा का अनुमान जताया है। विभाग ने कहा है कि अगले दो तीन दिनों में दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब और चंडीगढ़ में छिटपुट बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने आज हिमाचल प्रदेश, झारखंड, केरलम, माहे, मराठवाड़ा, देश के उत्तर पूर्वी हिस्सों, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक और तेलंगाना में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। मौसम विभाग ने दिल्ली में आज बादल छाए रहने और मध्यम वर्षा का अनुमान जताया है। नितिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
3: महाराष्ट्र में तेज बारिश के कारण कई जगहों पर जल भराव हो गया है। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में आज शाम लॉर्ड्स में इंग्लैंड का मुकाबला होगा ऑस्ट्रेलिया से। दोनों टीमें अपराजित रहते हुए सेमीफाइनल में वेस्टइंडीज को हराया और इंग्लैंड ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर फाइनल में प्रवेश किया। जी सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। होर्मुज जलडमरू मध्य से तरल प्राकृतिक गैस की आपूर्ति फिर शुरू होने के बाद आपातकालीन पाबंदियां हटाई। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत, रोजगार और आजत राज्यों को 25,000 करोड़ रुपए की सहायता जारी की। केंद्र सरकार ने मेटा को इंस्टाग्राम से बच्चों के शोषण से जुड़े विज्ञापन हटाने का आदेश देते हुए 7 दिन के भीतर जवाब मांगा। छत्तीसगढ़ की सुप्रसिद्ध पंडवानी गायिका तीजन बाई का निधन। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने शोक व्यक्त किया। और आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में आज शाम इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का होगा मुकाबला। और इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। बच्चों का कार्यक्रम बाल सभा आज का कार्यक्रम आकाशवाणी भोपाल की प्रस्तुति है।

0: बाल साथियों जय हिंद।
1: जय हिंद।
0: अपने सभी बाल मित्रों का उनके अपने कार्यक्रम बाल सभा में स्वागत है। और मित्रों, आज मैं हूँ आपके साथ आपकी अर्चना दीदी। बाल साथियों, जब आप सुबह उठते हैं तो क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि आपको सबसे पहले क्या क्या दिखाई देता है? सुबह की ठंडी हवा, पेड़ों पर चहचहाते पक्षी, रंग बिरंगे फूल, हरियाली से ढकी हुई हमारी धरती, बादलों से घिरा आसमान और रिमझिम बरसती बारिश, कितना सुंदर लगता है ना ये सब। लेकिन आपने कभी सोचा है कि हमारी धरती इतनी सुंदर क्यों है? इसका एक बहुत बड़ा कारण है साथियों, पेड़ और वन। पेड़ फूल देते हैं, गर्मी से बचाते हैं और धरती को हरा भरा बनाए रखते हैं। कई पक्षियों और जानवरों का घर भी यही वन होता है। पेड़ पौधे हमारे सच्चे मित्र हैं। वे बिना कुछ मांगे हमें बहुत कुछ देते हैं। और शायद इसी बात को याद दिलाने जुलाई से 7 जुलाई तक वन महोत्सव सप्ताह मनाया जाता है। वन महोत्सव का मतलब केवल पौधे लगाना ही नहीं है, बल्कि पेड़ों से डरना, प्रकृति से प्रेम करना और ये संकल्प लेना भी है कि हम अपने आसपास की हरियाली को बचाएंगे। तो बाल मित्रों, इस वन महोत्सव सप्ताह में हम सब भी एक छोटा सा संकल्प लें, एक पौधा लगाएंगे, उसकी देखभाल करेंगे और अपनी धरती को और भी हरा भरा बनाएंगे।
2: दीदी, अगर हम पौधे रोपते हैं तो हमारी प्रकृति कितनी अद्भुत लगेगी। मैं वाणी एक ऐसी ही कविता सुनाना चाहती हूँ। कितनी मनमोहक है ये प्रकृति, कितनी प्यारी है हमारी संस्कृति। ये हंसते खिलखिलाते सुंदर फूल लाते हैं, हर चेहरे पर बड़ी मुस्कान है। ये नीला आसमान, ये दूध सा सफेद चांद और टिमटिमाते तारे करते हैं रोशन इस अनुपम जग को। ये सारे ये गुनगुनतलियां खुशियों से भर देते हैं सबका चंचल मन। पेड़ों को मत काटो और रखो हरा भरा हर वन। पेड़ों से मिलती है शुद्ध मानव की स्वस्थ आयु। बरखा रुकने पर आया सतरंगी इंद्रधनुष कर देता है हर कोमल दिल को खुश। यह बहती कलकल कर ये मधुर गीत सुनाती। ये सब है ईश्वर की प्रिय अद्भुत और कीमती देन, जिससे करना है हमें सदा अटूट प्रेम।
0: तेजस्वी भी अपने मित्रों को कुछ सुनाना चाह रही है।
3: दीदी, मैं भी अपने मित्रों को एक कविता सुनाना चाहती हूँ। हमें काटो नहीं, हमें मिटाओ नहीं, हम तो दोस्त है तुम्हारे, दोस्त कभी जो भूलेगा नहीं। शुद्ध ऑक्सीजन देगा, शीतल छाया में सुखी नींद लाएगा। हमें काटो नहीं, हमें मिटाओ नहीं, आज को सवारो कल मजबूत रहेगा। दिन के उजाले पर हमें देखो, रात के शीतल छाया पर हमें महसूस करो, हमें दोस्त मानो। हम दोस्त है तुम्हारे, हमें काटो नहीं, हमें मिटाओ नहीं।
4: दीदी, मैं संजना, मैं अपने मित्रों को एक कविता सुनाना चाहती हूँ। नवयुग का होगा निर्माण, बनी रहे भारत की शान। वृक्ष हमारे कितने प्यारे, कितने सुंदर, कितने प्यारे। समृद्धि की यज्ञ का होगा निर्माण, बनी रहे भारत की शान। कौन कहाँ है किसे खबर है, अंधकार से सबको डर है। प्रदूषण से मुक्त रहे सब, पर्यावरण से युक्त रहे हो यही हमारा, सदा रहे सब इसका ध्यान। नवयुग का होगा निर्माण, बनी रहे भारत की शान। जब हम विद्यालय में पढ़ते हैं, संग साथी रहते अपना सफल बनाते, पर वृक्ष लगाना भूल क्यों जाते। आओ मिलकर वृक्ष लगाएं, हरित क्रांति को खुशियां पाएं। नवयुग का होगा निर्माण, बनी रहे।
0: आपने बहुत अच्छी अच्छी कविताएं सुनाई हैं और साथियों, गीत संगीत सुनने में भी आपको मजा आता है ना?
1: हाँ दीदी।
0: चलिए तो साथ मिलकर सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

0: बाल मित्रों, आजकल बरसात का सुहाना मौसम है, बारिश की और गर्मा गर्म पकौड़े सबको अच्छे लगते हैं ना।
1: हाँ दीदी।
0: लेकिन इसी मौसम में कुछ बीमारियां भी तेजी से फैल

0: मिलती हैं, बुखार, वायरल फीवर, पेट की गड़बड़ी, डेंगू और मलेरिया। साथियों, यदि इस मौसम में हम थोड़ी सावधानी रहें तो हम बीमार होने से बच सकते हैं। बाल मित्रों, बारिश में भीगने के बाद तुरंत सूखे कपड़े पहनें। हमें उबला हुआ या फिल्टर किया हुआ पानी ही आप पिएं। बाहर का कटा या खुला हुआ भोजन खाने से बचें। खाने से पहले अपने हाथ उनसे अवश्य धोएं। घर और घर के आसपास पानी बिल्कुल भी जमा ना होने दें, क्योंकि मित्रों इसमें मच्छर पनपते हैं और डेंगू मलेरिया जैसी बीमारी का कारण बनते हैं फिर वो। साथियों, पर्याप्त नींद लें, हरी सब्जी, फल और पौष्टिक भोजन खाएं, और यदि आपको उल्टी, बुखार, खांसी जैसे कुछ लगता है तो तुरंत अपने मम्मी पापा को बताएं और डॉक्टर से परामर्श लें। बाल मित्रों, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन निवास करता है, इसीलिए जितना आवश्यक पढ़ाई करना और खेलना है उतना ही जरूरी है अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना। और अब हमारा कौन सा मित्र हमें क्या सुनाने वाला है?
1: दीदी, मेरा नाम मानसी है। बरसात का सुहाना मौसम है, इसीलिए मैं अपने मित्रों को ऐसी ही कविता सुनाना चाहती हूँ। बादल छाए, इंद्रधनुष वर्षा संग लाए, गूंज रही कोयल की वाणी, कह रही धरती बरसो अब पानी, तुम्हें देखकर खिल उठी कलियां, चहकने मस्त मयूरों ने पंख फैलाए, देखो आए बादल छाए, झरने झरझर नदियां कलकल, सबके मन को हर ले पल पल, इंद्रधनुष ने में दिखे जीवन के लक्षण, कब से इस वर्षा को तरसे, अब तो ये घने बादल बरसे, प्रकृति का ये रूप सुहाना, सबके मन बादल छाए।
2: मेरा नाम कांजी है और मैं अपने मित्र को एक कविता सुनाने जा रही हूँ। सुबह सुबह जब आंखें खुली, रिमझिम रिमझिम थी बरसात, उठकर बाहर जब देखा मैंने, दिखी मुझे हरी गीली घास, माँ ने जब आवाज लगाई तो मैं थोड़ा सा अलसाई, ठंडी हवा से मैं थराई, काश आज हो जाती छुट्टी तो घर में हो जाती मस्ती।
3: दीदी, मेरा नाम शुभांगी है और मैं अपने मित्रों को कुछ बातें बताना चाहती हूँ। जब हम अपने पर्यावरण को साफ रखने की बात करते हैं तो अक्सर सोचते हैं कि हमारे अकेले कुछ करने से क्या होगा, पर हम ये भूल जाते हैं कि हमारा एक छोटा ला सकता है। अगर हम प्लास्टिक बैग्स की जगह पेपर बैग्स इस्तेमाल करेंगे तब भी कई सारे पेड़ काटने पड़ेंगे, इसलिए हमें क्लोथ बैग, जितनी बार फ्रिज का दरवाजा खोलते हैं फ्रिज की 30% तक कोल्ड एयर बाहर निकल जाती है और कमरे की वार्म एयर फ्रिज में चली जाती है, उससे वापस ठंडा होने में बिजली बर्बाद होती है। मित्रों, हमें अपने नोटबुक के दोनों तरफ लिखना चाहिए, प्रिंटर पेपर को भी दोनों तरफ इस्तेमाल करना चाहिए। मित्रों, हमें ब्रश करते समय या फिर साबुन से हाथ धोते समय पूरे वक्त नल खुला नहीं रखना चाहिए। इसी तरह हमें अपने पेरेंट्स को अपने कमरे और साथ ही पूरे घर में भी एनर्जी सेविंग लाइट बल्ब्स लगाने को कहें, साथ ही जब जरूरत ना हो तो उन्हें ऑफ रखना चाहिए। इससे आपके घर का लाइट का बिल भी कम आएगा। टोस्टर, टीवी जैसे उपकरणों को जब यूज नहीं कर रहे हो तब उन्हें अनप्लग कर देना चाहिए।
0: नन्हे साथ और गीत सुन लिया जाए?
4: हाँ दीदी।
0: तो चलिए साथ मिलकर सुनते हैं प्यारा सा गीत।

0: नन्हे साथियों, कहानियाँ सुनना तो आप सभी को पसंद आता है ना?
1: हाँ दीदी।
0: चलिए तो मैं आप सभी को एक कहानी सुनाती हूँ। एक बार एक जंगल में एक यात्री जा रहा था। रास्ते में उसे एक सोने का सिक्का मिला। वो सोचने लगा कि ये सिक्का मेरा तो है नहीं, अब मैं इसे लूँ या ना लूँ, पता नहीं किसका ये सिक्का गिर गया होगा, ना तो मैं

सोचा क्यों ना इस सिक्के को साधु को दे दिया जाए। यात्री ने जब वो सिक्का साधु को दिया तो मित्रों पता है क्या हुआ? सोने के सिक्के को देखकर साधु ने आश्चर्य से कहा, भाई ये सिक्का हमारे जैसे साधुओं के लिए नहीं है, इसे तो तुम किसी गरीब को दे दो ताकि ये उसके किसी काम आ सके। साधु की ये बात मानकर यात्री आगे चला। उसने देखा कि किसी राजा की सेना चली जा रही है। इतनी बड़ी सेना को देखकर वो सोचने लगा कि जरूर कोई ना कोई बात है जो राजा अपनी सेना को, भाई ये राजा इतनी बड़ी सेना लेकर कहाँ जा रहा है? तब किसी ने कहा, ये एक बहुत बड़ा राजा है जो पड़ोसी देश पर आक्रमण करके उसे लूटने जा रहा है। सैनिक की ये बात सुनकर कुछ देर के लिए तो वो युवक सोच में पड़ गया। फिर वो जो युवक यानी कि यात्री था राजा के रथ के करीब पहुंचा और सोने का सिक्का उनकी ओर बढ़ाकर कहा, महाराज इस सिक्के को आप रख लीजिए। राजा को भी आश्चर्य हुआ, मैं इतना बड़ा राजा हूँ, मैं इतने लोगों को बहुत कुछ बांटता हूँ और ये मुझे सोने का सिक्का दे रहा है। तब राजा ने पूछा, ये सिक्का तुम मुझे क्यों दे रहे? एक साधु ने कहा था कि जो सबसे ज्यादा गरीब दिखे उसे ये सिक्का दे देना। तब राजा बोला गुस्से से, मैं राजा हूँ राजा, मैं तुम्हें गरीब लगता हूँ? तब वो यात्री

0: शिक्षा ली कि गरीबी या अमीरी पैसों से नहीं होती, अपनी सोच से होती है। हमें दूसरों के प्रति अच्छा सोचना चाहिए।
1: बिल्कुल सही कहा।
2: दीदी, मेरा नाम स्नेहल है। बरसात का मौसम है। मैं अपने मित्रों से बरसात से जुड़ी हुई कुछ पहेलियाँ बूझना चाहती हूँ।
1: तो साथियों, आप तैयार हैं पहेलियाँ बूझने के लिए?
3: हाँ दीदी।
2: सारी धरती हरी बना दे, कर दे पानी पानी, ऋतु कौन सी बादल संग में, बोलो ऋतु सुहानी, बताओ बताओ।
1: कौन बताएगा?
4: दीदी मैं बताऊँ? वर्षा ऋतु।
2: सही जवाब, कांची ने सही जवाब दिया। दीदी एक और पहेली। कीचड़ पानी में वह रहता, फुदक जमीन पर आता, टर टर बोले नाम बताओ, जंतु क्या कहलाता।
1: कौन बताएगा?
2: दीदी सही जवाब है,

0: दीदी, मैं अपने मित्रों से एक और पहेली पूछना चाहती हूँ। सबको जीवन देता जल, जल के दाता कौन? वृष्टि उनसे कहो धुआं से, गरजे रहे ना मौन।
1: कांची
2: दीदी, पानी।
0: अब दिया।

0: स्नान किया, फिर अचानक वेटर के पास गई और बोली, ककड़ी के दो टुकड़े रोज आंखों पर रखा करो और रात को पानी में मेथी भिगोकर सुबह छान कर पिया करो। वेटर ने हैरान होकर पूछा, मैडम आप ये सब मुझे क्यों बता रही है? लड़की, मुझसे किसी ने कहा था कि
1: बाल मित्रों,

शाम 5 का आज का कार्यक्रम आकाशवाणी शिवपुरी की प्रस्तुति रहेगा। फिल्म संगीत का आनंद आप उठा सकते हैं शाम 5:33 और शाम 6:00। 7:21 से 7:30 पर सुनिएगा लोक संगीत। T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 के अंतर्गत ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के मध्य लंदन में खेले जाने वाले महिला T20 क्रिकेट

नमस्कार। मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। इस समय शाम के 5 बजे हैं। अब हमारी सांध्यकालीन सभा आरंभ होती है। आइए सभा का आरंभ करते हैं युवा साथियों के मनपसंद कार्यक्रम युववाणी के साथ।

0: नमस्कार दोस्तों, मैं ईरा
1: और मैं अनुभूति। स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी में।
0: तो साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, आज दिन है रविवार का और रविवार का दिन होता है हमारे और आपके पसंदीदा प्रोग्राम युवा तरंग का। तो अनुभूति, आज भी हम हमारे श्रोताओं को हमारे युवा साथियों के बीच की गई बातचीत तो सुनवाएंगे ही, लेकिन उसके पहले हमारे श्रोताओं से आज के कार्यक्रम के प्रश्न पूछ लें।
1: बिल्कुल। तो साथियों, आज का पहला प्रश्न है, भारतीय सेना का आदर्श वाक्य क्या है, यानी कि भारतीय सेना का मोटो क्या है।
0: और साथियों, आज के कार्यक्रम का दूसरा प्रश्न है, भारतीय थल सेना के सर्वोच्च कमांडर यानी कि सुप्रीम कमांडर कौन होते हैं। तो दोनों ही प्रश्नों के उत्तर आप सभी को खोजने हैं और सही उत्तर मिलने पर हमें ईमेल के माध्यम से बताना है। कार्यक्रम के अंत में सही उत्तर हम आप सभी के साथ साझा करेंगे ही।

0: प्लेटफॉर्म नंबर 2 से चलने वाली सुपर फास्ट एक्सप्रेस के यात्रियों
1: को
2: दीप तुम्हें इसे मोबाइल चार्ज करना,
1: दिमाग चार्ज कर अपना।
3: ऐसे पब्लिक पोर्ट से फोन चार्ज किया तो पर्सनल डेटा होगा पब्लिक।
1: देखा
2: पापा, रुको मैं पे करता हूँ। नो सिग्नल।
3: अब क्या करोगे?
2: फ्री वाईफाई है ना?
1: बुद्धू सुधर जा।
3: पेमेंट्स के लिए नो ओपन वाईफाई।
2: यानी फ्रॉड को करो बाय बाय।
3: RBI कहता है
4: करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
5: तो साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, युवा तरंग कार्यक्रम में हम आप सभी के साथ साझा करते हैं हमारे युवा साथियों से की गई बातचीत, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या करियर ऑप्शन हमारे युवा साथी पसंद कर रहे हैं, और दोस्तों के बीच की कई सारी यादें, उनके बीच शेयर की गई कई सारी खास पल हम आप सभी के साथ शेयर करते हैं। और इसी से मुझे एक और बात याद आती है, अनुभूति, हमारे वो दोस्त जो शहर छोड़कर चले गए हैं किसी कारण से, कोई पढ़ाई के लिए, कोई अपनी जॉब के लिए, हम सभी को छोड़कर चले गए, किसी दूसरे शहर में चले गए हैं। और मुझे ऐसा लगता है ना अनुभूति, भले ही वो लोग हमारे साथ नहीं है, मतलब डिस्टेंस ज़रूर बढ़ गया है, लेकिन जो दोस्ती है ना वो मुझे लगता है कभी कम नहीं होती है। मतलब हम लोग फ़ोन कॉल्स के थ्रू और वीडियो कॉल्स के थ्रू इनसे कनेक्टेड रह सकते हैं, लेकिन हाँ ये बात ज़रूर है कि अगर वो हमारे बहुत ही क्लोज फ्रेंड है तो हमें ये बात थोड़ी सी खटक सकती है कि वो हमसे दूर जा रहे हैं, या अब हम लोग रोज़ जैसे मिलते थे, रोज़ घूमने फिरने जाया करते थे, अब वो दिन जो है वो हमें मतलब निश्चित तौर पर याद तो बहुत आने वाले हैं, है ना? तुम्हें क्या लगता है ऐसा, वो दोस्तों के बारे में जो किसी रीज़न की वजह से हमारे साथ नहीं है या शहर छोड़कर चले गए हैं?
6: ये तो तुमने दोस्ती का एक बहुत ही अलग पहलू बताया है इरा, कि अगर दोस्त आपके बाहर भी रहते हैं तो वो एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट या माइनस पॉइंट आप ज़िंदगी में रहता है, क्योंकि दोस्तों के साथ हम सब कुछ शेयर करते हैं, और अगर वो हमारे साथ नहीं रहते हैं या अगर किसी भी दिन हम उनसे नहीं मिले ना, तो ऐसा लगता है कि कुछ अधूरा सा है, कुछ इनकम्प्लीट सा है। तो निश्चित तौर पर ये जो ऐसी दोस्ती है जिसे हम लॉन्ग डिस्टेंस फ्रेंडशिप कहते हैं, वो काफ़ी मायने रखती है सभी के लिए, और ये बहुत ज़रूरी है कि वो लॉन्ग डिस्टेंस फ्रेंडशिप बनी रहे। भले ही आपके दोस्त, आपके यार आपसे कितने भी दूर हों, लेकिन जो आप दोनों के बीच का प्यार है, जो छोटी मोटी खट सी मजाकियाँ बातें हैं, वो सारी आप लोगों के बीच हमेशा रहनी चाहिए, यही हम उम्मीद करते हैं।
5: बिल्कुल। और अनुभूति, मुझे ऐसा लगता है ना कि ऐसी जो दोस्ती है, जो लॉन्ग डिस्टेंस फ्रेंडशिप तुमने कहा है, उसको ना वीडियो कॉल्स के थ्रू, और आजकल इतने सारे मीडियम्स हो गए ना, उसको हम वैसी की वैसी बरकरार रख सकते हैं। इनफैक्ट हम लोग साथ में ऑनलाइन गेम्स खेल सकते हैं, हमारे फ्रेंड्स से मिलने जा सकते हैं, इस बहाने हमारा भी नए शहर में जाना, घूमना फिरना हो जाएगा। तो मुझे तो यही लगता है कि हम हमारे श्रोताओं से आज सिर्फ यही रिक्वेस्ट करेंगे अनुभूति, कि उनके जो भी फ्रेंड्स हैं जो बाहर चले गए हैं या काम की वजह से, व्यस्तता की वजह से वो लोग उनसे बात नहीं कर पा रहे हैं, तो आज उन्हें ज़रूर एक कॉल लगाएं, वीडियो कॉल

नए शहर में जाना घूमना फिरना हो जाएगा। तो मुझे तो यही लगता है कि हम हमारे श्रोताओं से आज सिर्फ यही रिक्वेस्ट करेंगे अनुभूति, कि उनके जो भी फ्रेंड्स हैं जो बाहर चले गए हैं या काम की वजह से, व्यस्तता की वजह से वो लोग उनसे बात नहीं कर पा रहे हैं, तो आज उन्हें ज़रूर एक कॉल लगाएं, वीडियो कॉल करें।

0: तो आइए श्रोताओं, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं हमारे दूसरे युवा साथी से। और हमारे जो युवा साथी है वो मुझे बुक पढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और बहुत ही गहन विचारों में नजर आ रहे हैं। तो आइए उनसे बात करते हैं और आखिर उन्हीं की जुबानी जानते हैं कि आखिर वो किस बारे में सोच रहे हैं और वो किताब कौन सी पढ़ रहे हैं। हेलो, क्या नाम है आपका?
1: हेलो, मेरा नाम दुष्यंत सिंह भदौरिया है।
0: दुष्यंत, हमने देखा कि आप कुछ बुक पढ़ रहे थे और कोई गंभीर विचार भी कर रहे थे। आपके एक्सप्रेशन देख के हमें ऐसा नजर आ रहा है, ये किस बारे में है ये किताब और क्या सोच रहे हैं आप अभी फिलहाल?
1: ये किताब एक गुरु और शिष्य के बीच के कॉन्वर्सेशन के बारे में है। दिस बुक इज नोन एज ट्यूजडेज विद मौरी। सो ये किताब इस बारे में है कि एक शिष्य अपने गुरु को वापस बहुत समय बाद डिस्कवर करते हैं एक न्यूज चैनल के थ्रू, जहां उन्हें पता चलता है कि उनके गुरु की तबीयत बहुत खराब है और उन्हें वो हर ट्यूजडे विजिट करते हैं और उनसे लाइफ लेसन्स लेते हैं। जो लेसन्स उन्होंने अपने कॉलेज ईयर्स में कभी उनके साथ शेयर करे थे, उस सिंपैथी, उस इमोशन को वापस उनके साथ शेयर करते हैं। और ये बुक यही दर्शाती है कि उनके जो गुरु हैं उन्हें वो जीवन जीने की जो सीख दे रहे हैं वो बहुत ही सुंदर तरीके से इस बुक में दर्शाई गई है कि कैसे आपको जीवन जीना चाहिए। और एक बहुत ही अच्छी बात उस बुक में कही गई है कि जब आप डेथ को एक्सेप्ट कर लेते हैं, जब आप अच्छे से जीना सीख पाते हैं, जो ना कि सिर्फ पढ़ाई या करियर वाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, बट आप जिंदगी को कैसे जीते हैं और किस नजरिए से देखते हैं, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।
0: क्या बात है, बहुत ही सुंदर तरीके से आपने बुक को पूरा समराइज करा। और मुझे लगता है कि दुष्यंत, जैसा कि आप बता रहे हैं, बुक जिंदगी को जीने का जो तरीका है दूसरी चीजों से इम्पोर्टेंट होता है कि हम लोग चीजों को समझें कि चीजें कैसे काम करती हैं और लाइफ लेसन्स मोस्ट इम्पोर्टेंटली। अच्छा, इसके अलावा ये बताइए कि आप क्या करते हैं अभी हाल फिलहाल में, पढ़ाई कर रहे हैं आप?
1: जी, मैंने जस्ट लास्ट मंथ अपना ग्रेजुएशन खत्म किया है। आई हैव डन माय ग्रेजुएशन फ्रॉम NMIIMS इंदौर इन BCOM ऑनर्स। एंड अब मैं अपने करियर की शुरुआत होस्टिंग और एंकरिंग से करना चाह रहा हूँ, तो मैं उन्हीं फील्ड्स में आगे काम कर रहा हूँ और उन्हीं चीजों को सीख रहा हूँ।
0: अरे वाह, क्या बात है, होस्टिंग और एंकरिंग में आप अपना करियर बनाना चाहते हैं। अच्छा, ये बताइए कि आपको BCOM करते हुए कैसे रियलाइज हुआ कि मुझे इस फील्ड में अपना करियर बनाना है और उसके लिए कैसे आपने स्टार्ट करी अपनी ये वाली जर्नी?
1: मैं कहूंगा कि ये जर्नी BCOM से बहुत पहले स्टार्ट हुई थी, जब मैं मेरे स्कूल ईयर्स में था।

0: मैं मेरे स्कूल्स में भी कुछ लीडरशिप पोजीशंस पे था, जैसे हेड बॉय की जो पोजीशन होती है, और वहां से मैंने डिस्कवर किया कि मुझे पब्लिक स्पीकिंग बहुत पसंद है, मुझे लोगों के सामने खड़े होकर बात करना बहुत पसंद है, अपनी दिल की बातें उनके सामने रखना बहुत पसंद है। फिर जब मैं मेरे बीकॉम फर्स्ट ईयर में आया तो हमारी एक फैकल्टी थी आरिफा बंगलो वाला, और उनके एक सब्जेक्ट में मुझे पता चला कि हाँ, इस चीज़ को मैं एज अ करियर परस्यू कर सकता हूँ, और ये चीज़ ऐसी है कुछ जो मुझे हर दिन एक्साइट करती है उठ के काम करने के लिए। तो वहां से मैंने धीरे धीरे इस चीज़ पे काम करना चालू किया, कुछ कॉलेज इवेंट होस्ट किए, उसके बाद फिर मेरे ग्रेजुएशन खत्म करने के बाद मैं कुछ गवर्नमेंट इवेंट्स होस्ट करता हूँ, कुछ ऑफिशियल इवेंट्स होस्ट करता हूँ। हाल ही मैंने नागपुर में एक इवेंट होस्ट किया जहाँ पे चीफ गेस्ट नितिन गडकरी जी थे, तो उसके बाद ही मैं आगे और ऐसी अपॉर्चुनिटीज की तलाश में हूँ और ढूंढ रहा हूँ कुछ।
1: क्या बात है, वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट दुष्यंत, और आप इस फील्ड में आगे बढ़ते रहें और अच्छा करते रहें, हमारा ही नहीं इंदौर शहर का भी नाम आप रोशन करें। और जैसा कि आपने बताया कि आप कॉरपोरेट इवेंट और गवर्नमेंट इवेंट्स में ज़्यादा रुचि रखते हैं, और आपने हाल फिलहाल में कई सारे ऐसे इवेंट्स भी करे हैं, तो मैं ये जानना चाहूँगी कि आपने ये कब रियलाइज करा कि आपका जो जॉनर है वो गवर्नमेंट इवेंट्स, कॉरपोरेट इवेंट्स करना है, बजाय कि दूसरे जो इनफॉर्मल इवेंट होते हैं।
0: जब मैंने इस चीज़ की शुरुआत करी थी तो मुझे जो कॉरपोरेट इवेंट्स हैं वो काफ़ी बोरिंग टाइप के लगे, मैं झूठ नहीं कहूँगा आपसे, बट और जो शादी और पार्टी वाले इवेंट्स थे वो काफ़ी लुक्रेटिव थे, क्योंकि आपको बहुत फन दिखता है और आपको बहुत पता चलता है कि हाँ, आपको यहाँ जाके सिर्फ यू हैव टू बी योर सेल्फ। बट जब मैंने वो चीज़ें करी तो मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं, वॉट आई एम एक्चुअली इज आई एम मोर कम्फर्टेबल इन कॉर्पोरेट सेटिंग्स, क्योंकि मुझे वहाँ पता चला कि जो मेरे अंदर की सहजता और जो मेरी वास्तविकता है कि मैं हर समय उतना फनी नहीं हो सकता, या मैं हर समय चीज़ों को उतने लाइटली नहीं ले सकता जो एक पार्टी एंकर को या एक एमिक को करना चाहिए। और जबकि मुझे रियलाइज हुआ कि जो मेरे अंदर की सहजता है, जिस समझ से मैं चीज़ों को समझता हूँ और जिस तरीके से मैं आगे प्रेजेंट करता हूँ, वो बहुत ही बेहतर है ताकि उन्हें अगर मैं कॉर्पोरेट इवेंट्स या गवर्नमेंट इवेंट्स में प्रेजेंट करूँ। और दूसरा मेरा रुझान जो है वो नेटवर्किंग और थोड़ा पढ़ाई से रिलेटेड है, कि आप जब गवर्नमेंट इवेंट्स और कॉर्पोरेट इवेंट्स में जाते हैं तो आपको वहाँ सीखने बहुत मिलता है, क्योंकि आपकी उम्र से, आपके तजुर्बे से बहुत बड़े लोग वहाँ पे होते हैं, और वो आपको बहुत ऐसी चीज़ सिखा जाते हैं जो आपको लाइफ में कभी और सीखने ना मिले। तो मुझे ऐसा लगा कि अगर ऐसा कोई स्टेज मुझे मिले जहाँ पे मैं अपना टैलेंट तो प्रदर्शित कर ही पाऊँ पर कुछ ऐसा सीख पाऊँ जो मुझे जीवन भर काम आए।
1: क्या बात है दुष्यंत, आपने बहुत ही सही तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी जो फील्ड है उसके बारे में हमें बताया। और चलिए, हमने अब करियर की बातें तो बहुत सारी कर ली, अब इसके अलावा ये बताइए कि आप अपने फ्री टाइम में क्या करना पसंद करते हैं, आपकी हॉबीज क्या क्या है?
0: जैसी पहली हॉबी तो आपने मुझे करते हुए पाया, बुक रीड करना। दूसरा, मैं कुकिंग करना बहुत पसंद करता हूँ।
1: अरे वाह।
0: और जब मैं बुक रीड नहीं कर रहा होता, कुकिंग नहीं कर रहा होता, तो मैं अपने आपको फिजिकल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रखना पसंद करता हूँ। मैं एक नेशनल लेवल बॉक्सर भी रह चुका हूँ, और उसके अलावा स्विमिंग, साइकिलिंग का रुझान बहुत है मेरे जीवन में। इसके अलावा दोस्तों से मिलना, नए लोगों से मिलना मुझे बहुत पसंद है, और मैं ऑब्जर्व करना बहुत पसंद करता हूँ। सिर्फ शांत जगहों पर बैठ के लोगों को देखना, हर तरीके के लोगों को देखना, जो एक मध्यम वर्ग से लेके एक छोटे वर्ग से आते हैं, किसी बड़े वर्ग के इंसान को देखना, उनकी आदतों में क्या डिफरेंसेस होते हैं, उनका दुनिया को जो देखने का पर्सपेक्टिव है वो किस नजरिए से बदलता है, पैसे के दौर से अगर आप गुजर रहे हैं और उन दौरों से आप कैसे दुनिया को देख रहे हैं, इन सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करना, और कहीं ना कहीं अपने बोलने के रुझान में, बोलने के तरीके में उन सारी चीज़ों को शेयर करना मुझे बहुत पसंद है।
1: दुष्यंत, आपने बहुत ही अच्छी बात कही, ऑब्जर्वेशन, क्योंकि हम लोग जिस फील्ड में हैं, एंकरिंग की फील्ड ले ले, होस्टिंग की फील्ड ले ले, इसमें ऑब्जर्वेशन जो है मुझे लगता है बहुत ही इंपॉर्टेंट एक पहलू हो जाता है, क्योंकि जितना ज़्यादा हम ऑब्जर्व करेंगे उतना ज़्यादा हमारे पास कॉन्टेंट रहेगा बोलने के लिए, और हम हर किसी से उतना ज्यादा रिलेट कर पाएंगे अपनी बातों को। अच्छा दुष्यंत, ये बताइए, आप इंदौर के ही रहने वाले हैं?
0: जी, आई हैव बीन बोर्न एंड ब्रॉट अप इन इंदौर ओनली।
1: तो ये बताइए, आपको इंदौर के बारे में सबसे अच्छी बात क्या लगती
0: है? इंदौर के बारे में दो चीजें सबसे ज्यादा पसंद है, एक तो इंदौर का खाना, और दूसरी चीज जो मैंने इंदौरीज में नोटिस करी वो है कि हम रिश्ते बहुत जल्दी बना लेते हैं। अगर आपको रोड पे कोई इंसान चलता हुआ मिल जाए और अगर आपसे डायरेक्शन पूछे और उसके बाद आपसे वो दो बातें हंस के कर ले, तो आप थोड़े दिन बाद उसे अपने घर खाने पे बुला लेते हैं। तो मैंने ये देखा कि इंदौरियों में रिश्ता बनाना बहुत अच्छी चीज़ है, और अगर हमें कोई व्यक्ति बाहर का या बाहर के शहर का मिल रहा है तो हमें इंदौर उस तरीके से दिखाते हैं कि अपना घर दिखा रहे हो।
1: बिल्कुल, अपनत्व का भाव हम हर किसी को देते हैं, है ना? अच्छा दुष्यंत, ये बताइए कि बारिश का मौसम चल रहा है, और बारिश के मौसम में तो हम इंदौरी लोग बस थोड़ी सी बारिश होती है और कहीं घूमने निकल जाते हैं इंदौर के आसपास, तो आपका सबसे फेवरेट स्पॉट कौन सा है?
0: मैं कहूंगा कि इंदौर के आसपास के जितने भी ऐसे इलाके हैं, जैसे वाटरफॉल्स हो गई, जोगी भड़क, चिड़िया भड़क, या फिर जो हमारे यहाँ सबसे फेमस तो जामगेट का जो एरिया है, वहाँ पे हमें बहुत ही ज्यादा हरियाली देखने के लिए मिलती है, और उस हरियाली के साथ अगर आप वहीं धीमी आंच पे कंडों पे सिक्के भुट्टे आपको मिल जाएं और एक कप चाय हो जाए, तो फिर इंदौरियों को इससे ज्यादा और क्या चाहिए।
1: बिल्कुल, ये तो तुमने बिल्कुल सही कहा यार। अच्छा दुष्यंत, तुमने बताया कि तुम कॉर्पोरेट इवेंट्स तो कर ही रहे हो हाल फिलहाल में, इसके अलावा और क्या करते हो?
0: इसके अलावा मैं एक बहुत ही सुंदर संस्था के साथ जुड़ा हुआ हूँ जिसका नाम है रोटरी क्लब ऑफ इंदौर सिटी यंग लीडर्स। तो रोटरी क्लब ऑफ इंदौर सिटी यंग लीडर्स में हमारा मेन पर्पस होता है फेलोशिप थ्रू सर्विस। तो यहाँ पे हम इंदौर के सारे यंग माइंड्स को एक साथ जोड़ते हैं, एक प्लेटफॉर्म पे लाते हैं, और हम ये कोशिश करते हैं

0: कोई भी सामान ले, 2 मिनट उनसे बात करें, वृद्ध लोगों के साथ समय व्यतीत कर सकते हैं।
1: क्या बात, ये बात जो आपने कही कि हम इंडिविजुअल लेवल पे किस तरीके से हमारी साइड से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, ये बहुत ही अच्छी लगी। बहुत ही अच्छा लगा दुष्यंत आपसे बात करके, और बहुत कुछ जानने को मिला, बहुत कुछ सीखने को मिला हमें, और निश्चित तौर पर हमें सुनने वाले हमारे युवा साथियों को भी आपसे बहुत कुछ जानने को सीखने को मिला होगा। अब ये बताइए कि आज आकाशवाणी इंदौर की ओर से कौन सा गाना आप सुनना चाहेंगे?
0: तो जैसे कि आज मौसम बहुत ही शानदार हो रहा है और पानी आ रहा है, तो मुझे लगता है कि इस मौसम में कुछ भीगा हुआ सा गाना सुनना मुझे बहुत पसंद होगा। तो आरडी बर्मन और किशोर कुमार का एक बहुत ही प्रसिद्ध गाना है, मेरी भीगी भीगी सी, तो मैं गाना सुनना चाहूंगा।
1: बहुत ही सुंदर गीत और एकदम मौसम के अनुकूल आपने चुना है, तो आइए फिर सुनते हैं।

0: इरा आगे बढ़ते हैं और मुझे हमारे कुछ और साथी नजर आ रहे हैं, तो चलते हैं उनसे बात करते हैं। ये शायद गार्डन के पास खड़े हैं, चलते हैं, चलो बात करते हैं पहले, सबसे पहले तो।
1: बिल्कुल, हेलो, क्या नाम है आपके?
2: मेरा नाम साक्षी है।
3: मेरा नाम सेजल है।
4: मेरा नाम कौशिकी है।
5: मेरा नाम सेजल है।
1: तो ये बताइए, कैसे हैं आप लोग?
2: बहुत अच्छी।
1: अच्छा, ये बताइए आप लोग करते क्या है, पढ़ाई कर रहे हैं?
2: यस, अभी हम पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री कर रहे हैं IMS से, MBA इन फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन।
4: सेम
0: सेम। अच्छा, चारों दोस्त हैं आप लोग?
2: हाँ,
0: तो अभी कहाँ, अभी यहाँ पर क्या हो रहा था, मतलब कहाँ जा रहे थे, कहीं

0: जा रहे थे?
1: यस, सीजल का बर्थडे है तो हम वही सेलिब्रेट करने जा रहे थे।
0: अच्छा ऐसा, अरे वाह, हैप्पी बर्थडे टू यू सीजल।
2: थैंक यू।
0: अच्छा ये बताइए फिर पार्टी के लिए कहाँ जाना है हमें आज?
1: कोई कैसे टूर कर रहे हैं कि कहाँ जाना है, वी आर जस्ट वंडरिंग कि चलो कुछ अच्छी जगह मिल जाए, देन वी विल सी।
0: बिल्कुल, हमें भी बताइएगा, हम भी कुछ ना कुछ सरप्राइज तो होगा ही सही। अच्छा आप यहाँ रिवील नहीं करेंगे, ऐसा है क्या?
1: अभी क्या है, अभी हम 3-4 दिन पहले ही मिले हैं तो इसका पहला बर्थडे घर से बाहर ही यूपी से आई हुई है, तो इसीलिए जस्ट अभी हम एक दूसरे को जान रहे हैं, तो हमें पता चला आज इसका बर्थडे है तो हम सोचते हैं चलो कुछ स्पेशल करते हैं, साथ में चलते हैं।
0: बिल्कुल, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, बर्थडे तो स्पेशल मनाना ही चाहिए फ्रेंड्स का। अच्छा बर्थडे गर्ल सेजल, आप मुझे ये बताइए इंदौर आके कैसा लग रहा है?
2: बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ के एनवायरनमेंट भी वहाँ से काफी सही है।
0: बिल्कुल, और इंदौर के लोग कैसे लगे आपको?
2: इंदौर के लोग मुझे बहुत अच्छे लगे, मतलब बहुत फ्रेंडली है, इनके आवाज में सॉफ्टनेस है, जैसे ये लोग बात करते हैं मतलब बहुत सही बात करते हैं यहाँ पे।
0: ये बात तो है ही। अच्छा आप चारों इंदौर के बाहर से ही हैं यहाँ पर?
3: मैं यूपी गोरखपुर से हूँ और ये भी यूपी ललितपुर से है।
0: हाँ। अच्छा आप तीनों यूपी से ही है?
3: इंदौर से
1: है। हाँ मैं मध्य प्रदेश से ही हूँ और इंदौर में 3-4 साल से रह रही हूँ। ये
0: अच्छा ये बताइए कि आपकी हॉबीज क्या है, फ्री टाइम में क्या करना पसंद करते हैं आप?
3: तो आर्ट करना बहुत पसंद है, मतलब स्केचिंग, रैंडमली स्केचिंग या फिर पेंटिंग कैनवासेस पे, दैट्स ऑल। सिंगिंग भी कभी कभी हो जाता है।
1: मैं मूवीज, वेब सीरीज, तो मेरा टाइम उन्हीं में जाता है। सोशल मीडिया भी मैं कम यूज करती हूँ, बट मैं नेटफ्लिक्स ये सब बहुत देखती हूँ। हाँ काफी।
2: और मेरी हॉबीज गार्डनिंग है और मेरी हॉबीज एक और है, आर्ट्स एंड क्राफ्ट। एक्चुअली आई हैव प्लांटेड अप्रोक्सीमेटली 100s of plants टिल नाउ एंड दैट्स व्हाई इट्स माय हॉबी।
0: अरे वाह, ये बहुत अच्छी बात है कि आपकी बर्थडे पर आप इतनी अच्छी बात मुझे बता रही हैं। और आप बताइए आपकी हॉबीज क्या है?
4: मेरी सिंगिंग और डांसिंग है।
0: अच्छा तो आप लोगों ने आपकी हॉबीज तो बता दी, पर जैसे अभी आप लोग सोच रहे थे कि आप लोग डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि कहाँ जाना है, मतलब सेजल का बर्थडे मनाने, राइट?
1: एग्जैक्टली, ऐसे जो यहाँ न्यू कमर्स है उन्हें नई आइडिया रहता है, और मैं भी इस एरिया से बिलोंग नहीं करती हूँ, भवरकुआ एरिया से, मैं विजयनगर में रहती हूँ, सो मेरे लिए भी इतना ईजी नहीं है कि एक प्लेस फिगर आउट कर ले कि हाँ बेस्ट रहेगा जाना, तो वी आर जस्ट वंडरिंग कि कोई मिल जाता सजेस्ट कर देता कि हाँ भाई इधर चले जाओ तो।
0: अच्छा देखो हम सजेस्ट कर देते हैं। बिल्कुल इरा तुम सही कह रही हो। अच्छा बताओ तुम क्या सजेस्ट करोगी? नहीं वो मैं यहाँ पर नहीं बताऊंगी, अब बर्थडे गर्ल है कुछ तो सरप्राइज देना ही है, तो हम लोग वहाँ लोकेशन पे जाके पता करेंगे कि हम कहाँ जा रहे हैं आखिर। ये भी अच्छा आइडिया है भाई, क्यों?
1: ओके ओके श्योर, चले
0: बिल्कुल चलते। अच्छा हम चलते हैं, लेकिन उससे पहले आप ये बताइए आज आप आकाशवाणी इंदौर के माध्यम से कौन सा गीत सुनना चाहते हैं, और उसके साथ साथ हमें गीत भी सुनना चाहेंगे, क्योंकि आपने बताया कौशिकी, आपने बताया कि आप गाती भी हैं, तो भाई थोड़ा सा कुछ तो गुनगुनाइए, आज आपकी दोस्त का बर्थडे है उसी के लिए कुछ गुनगुना दीजिए। अच्छा तो कौशिकी और सेजल, अच्छा इस ग्रुप में दो सेजल हैं, श्रोताओं आप कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी।
2: एक बर्थडे गर्ल
0: सेजल है और एक सेजल है। तो सेजल और कौशिकी बर्थडे गर्ल वाली सेजल के लिए कुछ गाएंगे।
5: यादों के पुराने एल्बम में छुपा के रखे थे हमने वो दिन, गुल्लक की बड़ी चवन्नी से।

0: दोस्तों आगे बढ़ते हैं और चलते हैं हमारे अगले साथियों से बात करने। हेलो,
1: हाय।
2: हाय,
0: कैसे हैं आप लोग?
1: बहुत मस्त।
2: बढ़िया।
0: अच्छा, क्या नाम है आपका?
1: वीर वर्मा।
2: यश चौधरी।
3: अच्छा, तो वीर और यश, ये बताइए आप लोग किस चीज की पढ़ाई कर रहे हैं अभी?
1: डॉक्टर, MBBS,
2: IIT JEE।
3: तो एक बायोलॉजी स्टूडेंट है, एक मैथ स्टूडेंट है, तो ये दोनों की दोस्ती कैसे हुई है?
1: दोस्ती स्ट्रीम देख के थोड़ी होती है, वो तो वाइब्स मिलना चाहिए।
3: क्या बात है, तो आप लोग स्कूल फ्रेंड्स हैं? मतलब
1: नहीं, अभी हम मतलब एकेडमी में मिले।
2: एकेडमी पे।
3: अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। तो एकेडमी जाते हैं आप लोग पढ़ाई करने जाते हैं, तो क्या रूटीन रहता है आप लोगों का, बता सकते हैं आप लोग हमें?
1: मतलब 8 to 2 हमारी क्लासेस रहती है, फिर उसके बाद सेल्फ स्टडी, लंच, और जितना है कि बस अपने आप से पढ़ना रहता है।
3: अच्छा, तो मतलब कोचिंग से कब फ्री होते हैं आप लोग, टाइम निकाल पाते हैं खुद के लिए?
1: हाँ, मिलता है ना 15 मिनट।

0: 15 मिनट बहुत ही ज्यादा टाइम मिलता है आपको तो यार.
1: मतलब
2: ऑब्वियसली हर कोई नहीं कर रहा है इस एग्जाम की तैयारी, तो हम समझ सकते
3: हैं. 25 लाख स्टूडेंट्स कर रहे हैं.
2: अच्छा, ओके ओके.
3: आज प्रिपरेशन नहीं करेंगे तो हम पीछे रह जाएंगे.
2: सही बात है. और यही आज का यूथ है यार ईरा. मतलब इतनी ज्यादा इतनी कड़ी मेहनत करके प्रिपरेशन कर रहे हैं, कुछ अलग बात है इसे इसमें.
0: बिल्कुल. और यही तो टाइम है मेहनत करने का. मतलब अब नहीं तो कब, है ना?
3: नहीं तो कब.
0: तो अच्छा ये बताइए, पढ़ाई की बातें तो चलती रहती है, ये बताइए पढ़ाई के अलावा और क्या क्या करना पसंद करते हैं आप लोग?
1: क्रिकेट. हाँ, और क्रिकेट वॉचिंग. क्रिकेट वॉचिंग
0: बस. वॉचिंग प्लेइंग का
3: प्लेइंग प्लेइंग
1: टाइम नहीं मिलता है उसका.
0: नहीं, लेकिन बात बिल्कुल सही है, टाइम नहीं मिल पाता होगा आप लोगों को. लेकिन हेल्थ का ध्यान रखना, स्वास्थ्य का ध्यान रखना तो बहुत जरूरी है ना.
3: वो तो हो जाता है,
0: तो निकाल ही सकते हैं.
3: हो जाता है.
2: अरे
0: सही बात है, 2 साल के लिए सब कुछ त्याग देना होता है,
1: देना पड़ता है.
0: पर सही भी है, उसके बाद जो लाइफ होती है
3: तो फिर एंजॉयमेंट से भरी है.
1: लाइफ को मतलब ये सब मैनेजमेंट करना पड़ता है टाइम का, कि यार आपको इस टाइम पे एंजॉय करना है, इस टाइम पे आपको स्टडीज करनी है, अपने स्टडीज के लिए फोकस भी रहना है. फिर एज भी ऐसी हमारी कि उसमें थोड़े बहुत एंजॉयमेंट भी होते हैं. फ्रेंड सर्कल रहता है हमारा, एकेडमिक फ्रेंड सर्कल रहता है.
0: तो दोस्तों के साथ घूमने जाना, कैफेज जाना, आसपास कहीं जाना, राला मंडल, पातल पानी, ये सब करते हैं या नहीं आप लोग?
1: नहीं, हम तो करते हैं थोड़े बहुत तो करते हैं. बहुत रेयर होता है वो, थोड़ा बहुत करते हैं. कि फ्रेंड्स के भी अच्छा भी नहीं लगता. मतलब वो पढ़े में भी थोड़ा इंटरेस्ट आता है कि फ्रेंड्स के साथ रहते हैं तो थोड़ा अच्छे से पढ़ाई भी हो जाती है.
0: वही तो, थोड़ा रिफ्रेशमेंट भी जरूरी है ना.
2: तो बीच में आपने एक बात कही थी कि IIT JEE स्टूडेंट्स के लिए दिवाली वगैरह दशहरा ये सब कुछ भी नहीं होता. ऐसा क्यों? मतलब ऐसा मन में ऐसा कुछ लगता है कभी कभी कुछ ऐसा कि
1: जैसे 20 लाख स्टूडेंट्स होते हैं उसमें से मतलब बहुत ऐसा कि 1 लाख स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि वो डेडिकेटेड रहते हैं अपने इसके लिए. तो वो ये चीजें नहीं करते हैं कि यार अपन दिवाली पे सेलिब्रेट कर ले या फिर होली पे सेलिब्रेट कर ले, ऐसे सेलिब्रेट नहीं करते हैं. एंड वो सिलेक्ट होते हैं एग्जाम के लिए और अपनी लाइफ में सक्सेस होती है, जिसलिए हम ये चीजें अवॉइड करते हैं, बहुत रेयर करते हैं.
2: यश, आपने बहुत अच्छी बात कही और मेरे ख्याल से इरा हमारे जो सुनने वाले श्रोता हैं वो इस बात से उन्हें बहुत अच्छा मोटिवेशन मिला होगा और मिलना भी चाहिए. इन्होंने इतनी बड़ी बात कह दी, वो भी इतनी छोटी उम्र में. ये हर किसी के बस की बात नहीं है. राइट,
0: बिल्कुल सही कहा अनुभूति तुमने. और डेडिकेशन जो है और कंसिस्टेंसी, ये तो स्टूडेंट्स की जो है वो खासियत है, तो ये तो मेंटेन करना बहुत ही जरूरी है. तो चलिए, यश और वीर आप दोनों से बात करके बहुत ही अच्छा लगा. अब ये बताइए कि आज आकाशवाणी इंदौर की ओर से कौन सा गीत आप सुनना चाहेंगे?
3: तेरी यारी.

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युववाणी। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। लीजिए अब प्रस्तुत है फिल्म संगीत। फिल्म संगीत में आप सभी का स्वागत, अभिनंदन करते हैं। हम आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम के आरंभ में मैं हूं ना, इस फिल्म का गीत जिसे गाया है के और वसुंधरा दास ने। गीत रचना जावेद अख्तर की है और धुन बनाई है अनु मलिक ने।

दिल चाहता है, इस फिल्म का गीत आपको सुनवाते हैं उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज़ है। जावेद अख्तर ने इस गीत को लिखा है, शंकर एहसान लॉय का संगीत। आइए सुने दिल चाहता है इस फिल्म का गीत।

0: आपकी तबीयत कैसी है?
1: डॉक्टर कह रहे हैं कि ऑपरेशन करना पड़ेगा, ब्लड भी चढ़ाना पड़ेगा शायद, लेकिन मुझे डर है कि हॉस्पिटल का ब्लड सेफ है या
0: अगर है तो सेफ ही होगा, क्योंकि ट्रांसफ्यूजन के लिए ब्लड स्टोर करने की अथॉरिटी सिर्फ लाइसेंस ब्लड बैंक और लाइसेंस हॉस्पिटल के पास ही है। और ये भी सुनिश्चित कर लेना कि ब्लड HIV टेस्टेड है या नहीं, क्योंकि असुरक्षित ब्लड ट्रांसफ्यूजन से HIV एड्स जैसे कई बीमारियों की संक्रमण का भी डर रहता है।
1: अच्छा, अब तो मैं लाइसेंस्ड ब्लड बैंक या हॉस्पिटल से ही ब्लड लूंगा।
2: हाँ, और इस बारे में और जानकारी चाहिए हो तो 1097 पर कॉल कर लेना।
3: मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
4: और अब लता मंगेशकर और उदित नारायण की आवाज में आपको सुनवाते हैं दुश्मन फिल्म का गीत।

गुलजार का लिखा गीत आपको सुनवाते हैं एआर रहमान के संगीत निर्देशन में, दिल से फिल्म का ये गीत सुनवाते हैं आपको, उदित नारायण और महालक्ष्मी अय्यर की आवाज़।

0: लीजिए आप सुनिए।
1: अमिताभ बच्चन और जूही चावला की आवाज़ है। जावेद अख्तर ने इस गीत को लिखा है और संगीत निर्देशन है विशाल शेखर का।

अलका याग्निक और कुमार सानू की आवाज़ में सुनिए रंग फिल्म का गीत। समीर और सुरेंद्र साठी ने इस गीत को लिखा है, नदीम श्रवण का संगीत।

लीजिए फिल्म संगीत का अगला गीत आपको सुनवाते हैं चांदनी फिल्म से, लता मंगेशकर और बाबला ने इसे गाया है, आनंद पक्षी का लिखा यह गीत है और शिवहरी का संगीत।

श्रोताओं, सुमधुर गीत के बाद अब आपको सुनवाते हैं घायल फिल्म का गीत। इसे गाया है आशा भोसले, सब्बीर कुमार और कुमार शानू ने। बप्पी लहरी का संगीतबद्ध किया ये गीत। आपको सुनवाते हैं घायल फिल्म से।

ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है सुगम संगीत। सुगम संगीत में आज आपको सुनवा रहे हैं वैशाली बकुरे के गाए भजन। आइए आरंभ करते हैं मीराबाई के इस भजन के साथ। सुनते हैं वैशाली बकुरे की आवाज़ में ये भजन।

इस समय आप सुन रहे हैं सुगम संगीत में वैशाली बकोरे के गाए गीत और भजन। आइए सुनते हैं इनका एक और गीत जिसे लिखा है अजय।

वैशाली बकोरे के गाए गीत और भजन आप सुन रहे थे। सुगम का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। लीजिए अब प्रस्तुत है लोक संगीत, और लोक संगीत बैरू सिंह चौहान और साथियों के गाए लोकगीत।

इस समय लोकगीत में आप भैरू सिंह चौहान और साथियों के गाए लोकगीतों का आनंद ले रहे हैं। आइए इन्हीं के स्वर में सुनते हैं एक और लोकगीत।

0: लोक संगीत में अभी आप सुन रहे थे भैरू सिंह चौहान और साथियों के गाए लोकगीत। इसी के साथ लोक संगीत का कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। इस समय शाम के 7 बजने वाले हैं। अब से थोड़ी देर में हिंदी में समाचार हम दिल्ली केंद्र से प्रसारित करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं करिश्मा राय। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण 2025 के 1 जुलाई से सफलतापूर्वक लागू होने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। केंद्रीय मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस मिशन के अंतर्गत राज्यों के लिए 25,000 करोड़ रुपए की सहायता राशि जारी की। उन्होंने कहा कि मनरेगा को लागू होने में 3 साल से अधिक का समय लगा था, जबकि विकसित भारत जी राम जी को पूरे देश में सिर्फ 1 दिन में लागू कर दिया गया। सरकार ने तरल प्राकृतिक गैस एल से आपातकालीन पाबंदियां हटा ली हैं। यह निर्णय पश्चिम एशिया संघर्ष में युद्ध विराम के बाद हॉर्मुज जलडमरू मध्य से प्राकृतिक गैस शुरू करने के बाद किया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा कि प्राकृतिक गैस आपूर्ति नियमन आदेश 2026 में संशोधन किया गया है। इसी बीच पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक प्लस ने वैश्विक तेल बाजार की स्थितियों की समीक्षा के लिए आयोजित वर्चुअल बैठक के बाद इस वर्ष अगस्त से प्रतिदिन 188,000 बैरल तेल उत्पादन बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। आज हुई बैठक के बाद जारी बयान में तेल उत्पादक समूह ने कहा कि यह निर्णय बाजार स्थिरता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लिया गया है। सरकार ने सोशल मीडिया साइट इंस्टाग्राम पर शुल्क वाले विज्ञापनों में बाल यौन शोषण और दुर्व्यवहार सामग्री के प्रसार को लेकर मेटा को कड़ी चेतावनी जारी की है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार सरकार ने इंस्टाग्राम को ऐसे विषय वस्तु को बढ़ावा देने और इसकी पहुंच को सुगम बनाने वाले सभी विज्ञापनों और सामग्री को बंद करने का आदेश दिया है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने मेटा से 7 दिनों के भीतर विस्तृत स्पष्टीकरण

0: मांगा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर जकार्ता जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी श्री सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी की इंडोनेशिया यात्रा दोनों देशों के बीच मौजूदा संबंधों को मजबूती प्रदान करेगी और सहयोग के नए क्षेत्रों के द्वार खोलेगी। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने विनाशकारी भूकंप के बाद सहायता के लिए भारत का आभार व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में सुश्री रोड्रिगेज ने कहा कि ब्रिटेन, कतर, फ्रांस, भारत, बारबाडोस, ब्राजील और अर्जेंटीना के बचाव कर्मियों को उनके अमूल्य योगदान और संकट की इस घड़ी में एकजुटता प्रयासों के प्रति वेनेजुएला सम्मान व्यक्त करता है। भारतीय नौसेना के पूर्वी बेड़े के उदयगिरी, शक्ति और कवरत्ती युद्धपोत ने सिंगापुर के चांगी नौसैनिक अड्डे का दौरा पूरा कर लिया है। यह दौरा भारतीय नौसेना की परिचालन तैनाती का हिस्सा था। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि यह दौरा भारत और सिंगापुर के बीच बढ़ती समुद्री साझेदारी में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि है। ग्रामीण विकास मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों का एक दल आज से 11 जुलाई तक कर्नाटक के दौरे पर है। इसका उद्देश्य राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठकें करना और प्रमुख योजनाओं के प्रगति और कार्यान्वयन का आकलन करना है। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर कुछ व्यक्तियों द्वारा व्यापार, प्रवासन और अन्य नीतिगत मामलों पर मंत्रालय को सलाह देने संबंधी दावों का खंडन किया है। विदेश मंत्रालय की तथ्य जांच इकाई ने कहा कि ये सोशल मीडिया हैंडल मंत्रालय के साथ काम करने के तरीकों पर सशुल्क सलाह के साथ साथ सत्र भी आयोजित कर रहे हैं। इकाई ने स्पष्ट किया कि इन व्यक्तियों का विदेश मंत्रालय से कोई संबंध नहीं है। महाराष्ट्र में तेज बारिश से जनजीवन प्रभावित है। अधिकारियों ने लोगों को मॉनसून के दौरान नदियों, जलप्रपातों और अन्य जल निकायों से दूर रहने की सलाह दी है। मौसम विभाग ने मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगढ़ और रत्नागिरी सहित कोंकण जिलों में अगले 24 घंटों के दौरान मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। और फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में आज ब्राजील का सामना नॉर्वे से होगा। यह मैच भारतीय समय अनुसार रात डेढ़ बजे से न्यूजर्सी में खेला जाएगा। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 662.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। श्रोताओं लीजिए, अब आपको बता दें आज प्रसारित होने वाले शेष और कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। सात बजकर 10 मिनट से आप सुनेंगे भोपाल केंद्र से प्रादेशिक समाचार। सात बजकर बीस मिनट पर लेकर हाजिर होंगे आपके लिए फिल्म संगीत और 7:30 से आप सुनेंगे आईसीसी वुमेन्स T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल मैच के अंतर्गत इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जाने वाले मैच की कमेंट्री का सीधा प्रसारण मैच की समाप्ति तक। अब हम आपको बता दें कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रम इस प्रकार हैं। आप सुनेंगे सुबह 6:05 पर वंदना, 6:30 पर लेकर हाजिर होंगे आपके लिए चिंतन, जिसमें कल का विषय है आत्मसमर्पण। 6:35 पर खेती की बातें कार्यक्रम में आपको सुनवाएंगे बागवानी उद्यान में मौसम के अनुसार समसामयिक कार्य, जानकारी देंगी भारती उपाध्याय। 6:40 पर प्रसारित होगा हमेशा की तरह श्री रामचरितमानस गान। 7:20 पर गुड मॉर्निंग इंदौर के साथ हाजिर होंगे और कल होंगी बातें हरियाली महोत्सव की। कल हमारे साथ जुड़ेंगे वरिष्ठ पर्यावरण वैज्ञानिक डॉक्टर राम रक्षेश, समाजसेवी युवा हैप्पी गादिया और बलूनी मेहता, और साथ ही ब्रिगेडियर संजीव कुमार से सेना द्वारा किए जा रहे पर्यावरण संरक्षण कार्यों के विषय में बातचीत करेंगे। तो ये है कार्यक्रम गुड मॉर्निंग इंदौर, जो आप सुनेंगे सुबह 7:20 से। 8:09 सुनेंगे मराठी कार्यक्रम और 9:30 पर आपके लिए लेकर हाजिर होंगे शास्त्रीय संगीत, जिसमें कल हम आपको सुनवाएंगे अब्दुल सलाम नौशाद का क्लैरिनेट वादन, राग होगा अहीर भैरव, एकल पखावज वादन करेंगे बिठल राजपुरा। सुबह 10 बजे भोपाल से प्रसारित की जाएगी जिले की चिट्ठी। फोन इन कार्यक्रम एमएच हॉटलाइन, जिसका इंतजार आपको होता है, 10:05 पर सुबह प्रसारित किया जाएगा, जिसमें आप अपनी पसंद के गीत सुन सकते हैं। मध्य प्रदेश केंद्र से प्रसारित किया जाएगा 11 से फोन इन कार्यक्रम फोन करे गीत सुने। फिल्म संगीत का प्रसारण 12:02 पर और 12:30 से आप सुनेंगे संग्रहालय से। स्वास्थ्य दर्पण प्रस्तुत किया जाएगा 1 से और लोक संगीत का प्रसारण समय 1:30, सुगम संगीत 1:45 पर। आकाशवाणी इंदौर से शाम की सभा का आरंभ होगा युवाणी के साथ शाम 5। फिल्म संगीत का आनंद लीजिएगा 5:45 पर और प्रायोजित कार्यक्रम NCERT सुनिएगा शाम 6। सुगम संगीत में कल आप सुनेंगे प्रकाश पार्णिकर के गाए गीत शाम 6:30 पर। 7:20 पर लेकर हाजिर होंगे महिलाओं के लिए कार्यक्रम ग्राम लक्ष्मी। सुर्खियों में भोपाल केंद्र से प्रसारित किया जाएगा ये कार्यक्रम रात 8 और 8:15 पर फिल्मी गीतों का विशेष कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया सुनिएगा 8:15 पर। चित्रगीत का प्रसारण समय हमेशा की तरह 9:15 और पब्लिक स्पीक प्रसारित किया जाएगा 9:30 पर, जिसका प्रसारण हमारे दिल्ली केंद्र से होगा। रात 10 श्रोताओं के मनपसंद कार्यक्रम मनपसंद गीत लेकर हाजिर होंगे मन भावन कार्यक्रम में और रात 10:30 पर आप सुनेंगे अब्दुल सलाम नौशाद का क्लैरिनेट वादन, रात में होगा राग बागेश्री। तो श्रोताओं, ये थे आज प्रसारित होने वाले शेष और कल प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों का विवरण। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है।

0: ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। अब से थोड़ी ही देर में हमारे भोपाल केंद्र से आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। थोड़ी ही देर में प्रादेशिक समाचार होंगे।
2: कम्प्रीमियम ज्यादा बोनस अपनों के लिए सबसे सही RPLI, इससे बेहतर कुछ नहीं।
3: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
4: दीदी नौकरी लग गई।
5: अरे वाह, बधाई हो। तो अब तो ढेर सारी शॉपिंग।
4: हाँ जी, नया मोबाइल।
5: अरे रुको शहजादे, सैलरी से पहले खर्चे।
4: इंस्टेंट लोन भी तो मिलता है।
5: पहले बजट बनाना सीखो फिर खर्च करो।
4: प्रदीप
5: देखो, कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचाना चाहिए, लेकिन पार्टी देने से नहीं बचोगे तुम।
4: हाँ जी, पार्टी मेरी, बजट तुम्हारा।
5: अच्छा।
6: RBI कहता है,
7: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
8: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं नवनीत चौबे। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शिवपुरी में डिफेंस प्लांट का शिलान्यास किया। VBG रामजी अधिनियम के तहत राज्यों के लिए 25,000 करोड़ की राशि जारी की गई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कल भोपाल के सतगढ़ी में स्मार्ट इंडस्ट्रियल पार्क का भूमि पूजन करेंगे। और प्रदेश भर में मॉनसून हुआ सक्रिय, आज कई जिलों में भारी बारिश की संभावना। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय संचार एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज शिवपुरी में अदानी समूह के लगभग 2,500 करोड़ रुपए की लागत वाले अत्याधुनिक डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का शिलान्यास किया। यह परियोजना औद्योगिक विकास के विजन को नई गति प्रदान करेगी। परियोजना के माध्यम से क्षेत्र के छोटे एवं मध्यम उद्योगों को रक्षा उत्पादन की सप्लाई चेन से जुड़ने का अवसर मिलेगा। इस दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश में निवेश का एक नया मार्ग खुला है।
9: आज ग्वालियर अंचल में हमारा डिफेंस कॉरिडोर का पहला प्रोजेक्ट लगभग 2,500 करोड़ से 3,000 करोड़ का, जहां मिसाइलें बनेगी, यहां पर रोजगार भी मिलेगा और मिसाइल भी 1,000 किलोमीटर लंबी वाली, जिस प्रकार से उन्नत प्रकार की जो चीजें हो सकती है वो सब होकर के साथ साथ 211 करोड़ के अलग अलग विकास कार्यों का लोकार्पण भूमि पूजन भी यही संपन्न हुआ, जिसमें 6 से 8 संदीपनी विद्यालय जो बनकर तैयार हो गए और नए 2 पुल सड़क अलग अलग प्रकार के निर्माण कर, इसी के साथ साथ यहां भविष्य की आवश्यकताओं के लिए कि यहां हमारा अंदर का 4 लेन बने जो 14 किलोमीटर का 120 करोड़ का, उसको बनाने की घोषणा की।
8: कार्यक्रम में केंद्रीय संचार एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में आज यह शुभ शुरुआत हुई है। उन्होंने कहा कि विश्व के सबसे आधुनिक शस्त्र शिवपुरी में बनाए जाएंगे।
10: आज ये शुभ शुरुआत संभव हो पाई है। 1,500 से 2,000 करोड़ रूपये का निवेश गुना में अडानी सीमेंट प्लांट का, 2,500 से 3,000 करोड़ का निवेश शिवपुरी में। यहाँ केवल मिसाइल का प्रोपेलेंट नहीं, लेकिन बारूद का, मिसाइल की असेंबली, समस्त रूप से सबसे विश्व की आधुनिक शस्त्र शिवपुरी में उत्पादित की जाएगी। कि ये दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा, भारत का नहीं, संपूर्ण दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा निवेश निजी क्षेत्र की कोई कंपनी का है जो आज शिवपुरी में संभव हो पाया है।
8: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कल से शुरू होने वाली इंडोनेशिया यात्रा दोनों देशों के बीच मौजूदा संबंधों को मजबूती प्रदान करेगी और सहयोग के नए क्षेत्रों के द्वार खोलेगी। आज जकार्ता में आकाशवाणी को दिए एक साक्षात्कार में इंडोनेशिया में भारतीय राजदूत संदीप चक्रवर्ती ने कहा कि 6 से 8 जुलाई तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया यात्रा के दौरान भारत और इंडोनेशिया के बीच सहयोग के कई नए क्षेत्र खुलेंगे और इन दोनों देशों के बीच संबंधों में मजबूती और आर्थिक जुड़ाव में वृद्धि स्पष्ट रूप से दिखाई देगी। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 1 जुलाई से वीबीजी रामजी अधिनियम 2025 सफलतापूर्वक लागू होने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। श्री सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस मिशन के अंतर्गत राज्यों के लिए 25,000 करोड़ रूपये की मुख्य सहायता राशि जारी की। श्री चौहान ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण विकास मंत्रियों के साथ वीबीजी रामजी योजनाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा भी की। उन्होंने कहा कि आज जारी की गई पहली किस्त का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि राज्यों के पास पर्याप्त धनराशि हो ताकि मजदूरी का भुगतान 15 दिनों के भीतर किया जा सके। उन्होंने कहा कि मनरेगा को लागू होने में 3 साल से ज्यादा का समय लगा था, जबकि विकसित भारत जी रामजी को पूरे देश में सिर्फ 1 दिन में लागू कर दिया गया। अब समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
6: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
8: मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कल भोपाल के सदगड़ी में विकसित किए जा रहे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्मार्ट इंडस्ट्रियल पार्क का भूमि पूजन एवं शिलान्यास करेंगे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर यह कार्यक्रम होगा। कार्यक्रम में 200 से अधिक प्रमुख उद्योगपति, निवेशक और उद्योग संगठनों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। लगभग 173 एकड़ क्षेत्र में विकसित होने वाला यह पार्क औद्योगिक गतिविधियों के विस्तार का नया आधार बनेगा। परियोजना में आधुनिक औद्योगिक अधोसंरचना, उत्कृष्ट सड़क एवं परिवहन संपर्क, आईटी एवं एआई आधारित सुविधाएं, लॉजिस्टिक एवं वेयरहाउसिंग कॉम्प्लेक्स तथा भविष्य की औद्योगिक आवश्यकताओं के अनुरूप स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया जाएगा, जिससे निवेशकों को विश्व स्तरीय औद्योगिक वातावरण उपलब्ध हो सके। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि मध्य प्रदेश ने विशेष गहन पुनरीक्षण SIR एवं मतदाता सूची के परिशोधन का कार्य अत्यंत पारदर्शी, सुलभ और व्यवस्थित तरीके से संपन्न किया है। आज इंदौर में मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने संवाद के दौरान कहा कि भारत की चुनावी प्रक्रिया विश्व की सबसे पारदर्शी और विश्वसनीय प्रक्रियाओं में से एक है। इसी पारदर्शिता और दक्षता के कारण भारत आज विश्व के 35 प्रमुख लोकतांत्रिक देशों के संगठन इंटरनेशनल आइडिया की अध्यक्षता कर रहा है। उन्होंने देशवासियों से आह्वान किया कि वे राष्ट्र की उन्नति, समाज के विकास और मानवीय मूल्यों को सशक्त बनाने के लिए समर्पित भाव से कार्य करें। सरकार ने तरल प्राकृतिक गैस LNG की आपूर्ति से आपातकालीन पाबंदियां हटा ली है। यह निर्णय पश्चिम एशिया संघर्ष में युद्ध विराम के बाद हॉर्मुज जल डमरू मध्य से प्राकृतिक

प्राकृतिक गैस की आपूर्ति फिर शुरू होने के बाद लिया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा है कि प्राकृतिक गैस आपूर्ति नियमन आदेश 2026 में संशोधन किया गया है। सरकार ने सोशल नेटवर्किंग साइट इंस्टाग्राम पर सशुल्क विज्ञापनों में बाल यौन शोषण और दुर्व्यवहार सामग्री के प्रसार को लेकर मेटा को कड़ी चेतावनी जारी की है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार सरकार ने इंस्टाग्राम को ऐसी विषय वस्तु को बढ़ावा देने और इसकी पहुंच को सुगम बनाने वाले सभी विज्ञापनों और सामग्री को बंद करने का आदेश दिया है। मुख्यमंत्री दिव्यांगजन शिक्षा प्रोत्साहन योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 31 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। सामाजिक न्याय दिव्यांगजन कल्याण मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा ने कहा कि प्रदेश सरकार दिव्यांगजनों को शिक्षा, तकनीकी और गतिशीलता से जोड़ने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। उन्होंने पात्र विद्यार्थियों से समय सीमा के भीतर आवेदन करने तथा जिला अधिकारियों को योजना का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। अब बात मौसम की। प्रदेश में मॉनसून पूरी तरह सक्रिय हो गया है। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के कई हिस्सों में भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। भोपाल, इंदौर, उज्जैन और नर्मदापुरम संभाग में वर्षा का सबसे अधिक असर रहने का अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार 9 जिलों में अति भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं उज्जैन, इंदौर सहित 20 जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप का फाइनल मुकाबला अब से कुछ देर बाद लॉर्ड्स में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच होगा। इंदौर शहर को पीएम ई बस सेवा योजना के अंतर्गत कुल 150 अत्याधुनिक इलेक्ट्रिक बसें उपलब्ध कराई गई हैं। इनमें से पहले चरण में 10 बसों का संचालन ट्रायल के रूप में शुरू किया गया है। धार में खेल युवा कल्याण विभाग द्वारा मध्य प्रदेश राज्य तीरंदाजी अकादमी में प्रवेश हेतु तीरंदाजी के खिलाड़ियों का ट्रायल लिया गया। इसमें 23 खिलाड़ियों ने भाग लिया। आगरमालवा जिला मुख्यालय स्थित सरकारी गोचर भूमि से लगभग 100 से अधिक झोपड़ियां, कच्चे मकान तथा गुमटियों को बुलडोजर के माध्यम से हटाने की कार्रवाई की गई। नर्मदापुरम में कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिले के सभी स्कूलों और महाविद्यालयों में विशेष नशा विरोधी जागरूकता अभियान चलाया जाए। इंदौर में जिला रोजगार कार्यालय द्वारा कल एक दिवसीय युवा संगम रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। मेले में प्रतिष्ठित कंपनियों द्वारा 250 से अधिक रिक्त पदों पर भर्ती की जाएगी। जबलपुर शहर में ऑपरेशन सेफ क्लिक 2.0 के तहत आज सिविल लाइन थाना पुलिस ने साइबर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए कल सुबह 7:10 पर। नमस्कार।

0: तीनों कॉलेज में।
1: डोंट वरी,
0: फीस तो देखो।
2: क्या हाल है, क्या हुआ?
1: फीस की टेंशन,
2: राहुल का बैंक अकाउंट तो है ही,
3: रास्ता क्लियर। बैंक से जरूरत भर के हिसाब से स्टूडेंट एजुकेशन लोन इजीली मिलेगा और उसमें भी 4 लाख रुपए तक, नो कोलैटरल।
2: वो कहाँ है? मिठाई।
4: आरबीआई कहता है
5: तरो से ही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
6: मीडियम वेव 662.96 मीटर यानी 644 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। डीजे प्रस्तुत है फिल्म संगीत। श्रोताओ, शुरुआत करते हैं इस कार्यक्रम की आराधना फिल्म के गीत के साथ। मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाज है, आनंद बख्शी के लिखे बोल हैं और एस जी वर्मन का संगीत।

0: NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर से प्रसारित हो रहा है शाम 6 बजे।
1: लता मंगेशकर की आवाज में लीजिए अब सुनिए चुपके चुपके फिल्म का गीत। आनंद बख्शी ने इस गीत को लिखा है और संगीतबद्ध किया SG वर्मन ने। आइए सुनिए चुपके चुपके फिल्म का ये गीत।

0: ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। अगला प्रसारण दिल्ली केंद्र से होगा।
1: यह आकाशवाणी है। आईसीसी वुमेन्स टी20 वर्ल्ड कप 2026 के अंतर के बीच खेले जाने वाले फाइनल टी20 क्रिकेट मैच का आंखों देखा हाल सुनने से पहले आइए सुनते हैं विशेष कार्यक्रम फर्स्ट बॉल 20।
2: दिस इज आकाशवाणी। We now bring you ball-by-ball commentary of the final T20 cricket match to be played between Australia and England of the ICC Women's T20 World Cup 2026. Before that, listen to a special program, First Ball 20.
3: सुजन से संक्रमण का भी डर रहता है।
4: अच्छा, अब तो मैं लाइसेंस्ड ब्लड बैंक या हॉस्पिटल से ही ब्लड लूंगा।
3: हाँ, और इस बारे में और जानकारी चाहिए हो तो 10
5: मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
6: फौजी साथियों, विशेष जयमाला कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं महावीर चक्र से सम्मानित असिस्टेंट कमांडेंट रामकृष्ण वाधवा की शौर्य गाथा। बिना वक्त गवाए वाधवा अपनी दो प्लेटून्स के साथ मोर्चे पर रवाना हो गए। सरहदी इलाकों की ये चौकी अपने रूखे मौसम और सुनसान वादियों जहां कांटेदार बाढ़ के इर्द गिर्द सीमा सुरक्षा बल की चुनौतियां ज्यादा ही हैं, लिहाजा कहां खाई यानी ट्रेंचेस, कहां बारूदी सुरंगें बिछाई गईं, कहां मोर्टार्स, कहां कितनी हैवी शेलिंग हो सकती है कहना मुश्किल था। और फिर उतना ही मुश्किल कि दुश्मन सैनिकों की तादाद क्या है। चुनौतियां देते अपनी चौकी को अपने कब्जे में करने, दुश्मनों को धूल चटाने और उन्हें मौत की नींद सुलाने का दृढ़ निश्चय कर कमांडेंट वाधवा आगे बढ़ने लगे। राजा मोहतम चेक पोस्ट की ये चौकी कुछ ऊंचाइयों पर बनाई गई थी जिससे शत्रु की निगरानी आसानी से की जा सके। ये पोस्ट जिसमें अब ऊपर की तरफ और नीचे खाई में शत्रुओं ने कमांडेंट वाधवा ने अपनी सैनिक टुकड़ी को दो तरफ से कवर देने की ताकीद की और मोर्चे पर डट गए। इस टुकड़ी के आने की सुगबुगाहट होते ही शत्रुओं ने ऊपर की तरफ से कमांडेंट वाधवा और उनके साथियों पर मशीन गन्स से ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू की। इस फायरिंग से खुद को बचाते हुए खाई की दीवारों की आड़ लेते हुए भारतीय सेना की इस टुकड़ी को सतर्कता से वाधवा ने चौकी के ऊपर की ओर पोजीशन लेने का रास्ता सुझाया। चंद सैनिकों को निगरानी और दुश्मनों को रोकने को लेकर निचले इलाके पर तैनात होने को कहा और स्वयं आगे बढ़ते रहे। इससे पहले कि दुश्मन कुछ समझ पाता, कमांडेंट रामकृष्ण वाधवा और उनके साथियों ने अपनी मशीन गन का मुंह खोल दिया और

मीटिंग के बाद आपसी गुत्थम गुत्था में वाधवा और उनके साथियों ने कई दुश्मन सैनिकों को अपनी संगीन काभिनिशाक को जिंदा पकड़ लिया। अपने असलाहों का जखीरा वहीं छोड़ दुश्मन जान बचाकर भाग खड़ा हुआ। अब तक इस चौकी पर वाधवा और उनके सैनिकों का कब्जा हो चुका था।

भारतीय सेना की इस पोस्ट पर कब्जा करने का शत्रु धीरे धीरे इसी चौकी की तरफ फिर रेंगने लगा। 10 दिसंबर की आधी रात का सन्नाटा था, इसमें गोलियों की गड़गड़ाहट गूंजने लगी। वाधवा ने समझ लिया कि वो शत्रु बाज क्यों कर आएगा, इनके इरादों को एक बार फिर नाकाम करने की सौगंध उठाए। कमांडेंट रामकृष्ण वाधवा ने अपने लक्ष्य पर निशाना साधते हुए बेहिसाब फायरिंग के बीच अपने जख्मों की परवाह किए बिना दुश्मनों पर सिंह की तरह टूट पड़े। हैंड ग्रेनेड और ऑटोमेटिक मशीन गन से निकलती गोलियों को दुश्मनों पर फुर्ती से दागना शुरू किया। इधर बारूदी माइंस के फटने से और दुश्मनों की फायरिंग में कुछ भारतीय मदद हुई।

कमांडेंट रामकृष्ण वाधवा ने दुश्मन की बलोच रेजिमेंट और सैनिकों को मौत की नींद सुला दिया और बाकी बचे अपने सैनिकों को हिफाजत से लेते हुए लगभग पूरी चौकी पर पुनः कब्जा कर लिया। इस बात की तसल्ली की कि अब मंजिले मकसूद को हासिल किया जा चुका है। दुश्मन

राजा की अफरा तफरी में हलाक होता रहा और कुछ बचे दुश्मनों ने मौत पक्की समझ बची चंद गोलियों को करते रहे। वाधवा खाई के एक किनारे से दूसरे किनारे अपने साथियों के साथ वहीं डटे रहे कि आग में शायद कहीं घात लगाकर बैठा हो। जिस्म लहूलुहान, आंखों में फतेह का तिरंगा लहराता था कि माटी को तन में लपेटे इस अजीम और शान वतन को महफूज रखने की वो कसम जो एक बार फिर पूरी हुआ था। कुछ ऐसा ही सपना फिर एक बार सच होता नजर आया। ये सोचते हुए एक फौजी के फर्ज पर आगे बढ़ते रहे कि तभी खाई में बिछाई गई बारूदी सुरंग में एक जोरदार धमाका हुआ और आर के वाधवा के गया। माँ भारती के इस शेर दिल सिपाही ने अपनी सांसों को थाम मादरे वतन की इस मिट्टी को सिजदा का तिरंगा लहराता रहा। होठों पर फिर एक बार मुस्कुराहट बिखर गई। साथ ही सैनिकों ने अपनी जांबाज दिया, उन्हें फरीदकोट दाखिल करवाया गया जहां भारतीय सीमा सुरक्षा बल के जांबाज कमांडेंट रामकृष्ण वाधवा ने 11 दिसंबर को आखिरी सांसें ली और मातृभूमि की रक्षा में जीत का परचम लहराते हुए देश के लिए शहीद हो गए।

एक और ऐतिहासिक जंग भारत के नाम रही। फौजी साथियों, सन 1971 की जंग में फिरोजपुर की राजा मोहतम चौकी पर पुनः कब्जा करने हिलकर ने कुशल नेतृत्व, दृढ़ संकल्प, अद्वितीय रणकौशल, अदम्य साहस और अतुलनीय सुरक्षा बल के जांबाज अफसर असिस्टेंट कमांडेंट रामकृष्ण वाधवा को महावीर चक्र से सम्मानित

फौजी साथियों, आज के विशेष जयमाला कार्यक्रम की शौर्य गाथा की इस कड़ी में आपने सुनी महावीर चक्र से सम्मानित बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जांबाज सिपाही एसएस वाधवा की शौर्य गाथा। शोध आलेख और स्वर था संगीता श्रीवास्तव का। इस कार्यक्रम के संपादक और प्रस्तुत, अब दीजिए इजाजत। जय हिंद।

0: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
1: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।
0: करोड़ों हिंदुस्तानियों की भावना को

ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए अब इंद्रधनुष में साज और आवाज, इसमें आज आप सुनेंगे प्रतिज्ञा सेन और सुमित भौमिक की पियानो और वायलिन पर बजाई फिल्मी धुनें। आज की फिल्में हैं सिलसिला और मुकद्दर का सिकंदर।

0: आज के हवा महल में प्रस्तुत है हरि मेहरा की लिखी नाटिका बहादुर की शादी, निर्देशक गंगा प्रसाद माथुर।
1: बहादुर, अबे वो बहादुर के बच्चे।
2: जी साहब, गुड मॉर्निंग साहब।
1: अबे गुड मॉर्निंग के लगते अलार्म बंद कर, ये आज अलार्म क्यों लगाया है? आज इतवार है और तुझे मालूम है छुट्टी के दिन मैं इतनी जल्दी नहीं उठता।
2: वो तो मालूम है साहब, पर आज साहब को भी तो जल्दी तैयार होना है।
1: वो किस खुशी में?
2: साहब खुशी की तो बात है ही, हमने आपको कितने दिन पहले से बताया था साहब, आज लड़की वाले आपसे मिलने आएंगे।
1: लड़की वाले? किसकी लड़की? कैसी लड़की? मुझे किसी लड़की वड़की से नहीं मिलना।
2: लड़की से नहीं साहब, लड़की के बाप से।
1: किसका बाप? लगता है रात ज्यादा चढ़ा ली, जो नाप शनाप बके चला जा रहा है। चल दवा हो जाए यहाँ से और सोने दे मुझे।
2: क्या है साहब, आप भी हमारी बेइज्जती खराब करना चाहते हैं साहब? हमारी इज्जत का सवाल है साहब, वो लोग ठीक 10 बजे आ जाएंगे और अभी हमें आपको नाश्ता देकर हजामत बनवाने जाना है साहब, स्नान भी करना है और तैयार भी होना है।
1: भाई बक बक कर रहे हो, ओफो किस जंगली से पाला पड़ा है। कहा ना मुझे अभी नाश्ता नहीं करना, तुम जाओ अपनी हजामत कराओ और मुझे सोने दो।
2: पर साहब आपको भी तो टाइम पर रेडी होना है साहब, और वो लोग आपको मिलने आते हैं साहब।
1: कौन लोग? मुझे कोई नहीं मिलने मिलने आ रहा।
2: साहब जी आप सब कुछ भूल गया साहब, वो लोग हमारी शादी के वास्ते आपसे बात नहीं करेंगे तो किससे करेंगे साहब? हमारा और कौन है साहब इधर? आप ही तो है हमारा माई बाप साहब, भाई बंधु आप ही तो है, और 10 बरस से आपके साथ हैं हम साहब।
1: ठीक है ठीक है, देखो अभी सिर्फ 7 ही बजे हैं, बहुत वक्त है। हाँ। मैं वक्त पर तैयार हो जाऊंगा, तुम दफा हो जाओ यहाँ से, जाओ
2: गेट आउट। साहब जी
1: हा? तुम अभी तक यही हो
2: साहब?
1: क्या है
2: साहब, वो रीटा मैम साहब आज भी आएंगी।
1: हाँ, पर ये बेहुदा सवाल किस लिए?
2: नहीं साहब, आप उनको फोन कर दो साहब, आज वो थोड़ा देर से आएंगी।
1: क्यों?
2: वो साहब इसलिए कि हमने लड़की वालों को बोला है कि हमारे साहब का अभी शादी नहीं बना।
1: ठीक ही तो बोला है।
2: तो वो यही तो गड़बड़ है साहब, अगर वो लोग रीटा मैम साहब को यहाँ देखेंगे तो क्या समझेंगे? तो
1: उनके समझने ना समझने से क्या होता है?
2: सब कुछ होता है साहब, सब कुछ होता है। हम आपको कितनी बार बोला है साहब कि तुम लोग अपनी शादी बना लो, अब हमारी मुसीबत हो जाएगी साहब।
1: हमारी शादी हो या ना हो उससे तुम्हारी कैसे मुसीबत हो जाएगी?
2: वो लोग ठहरे सीधे साधे पहाड़ी आदमी साहब, वो बड़े लोगों की बात नहीं समझते। हमारे मुल्क में शादी के बिना लड़की किसी के घर में नहीं जाती। मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ साहब, तुम साहब उनको मैम साहब को फोन कर दो।
1: वो बकवास बंद करो, सोने दो मुझे, गेट आउट।
2: हाँ साहब, हम तो गेट आउट होता है साहब, पर आप जरा सोने से पहले हमारी बात कुछ जरा थोड़ा गौर करो साहब।
1: बहादुर, अरे भाई बहादुर दरवाजा खोलो यार, लगता है कोई लंबी चौड़ी हजामत कराने गया है, क्या मुसीबत है। अरे रीटा तुम, क्या बचा है?
3: डार्लिंग तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना?
1: हाँ हाँ बिल्कुल, लेकिन अचानक ये सवाल क्यों? फिर तुम, मेरा मतलब मैं तो तुम्हें 10 बजे से पहले एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था।
3: थैंक गॉड, मैं तो डर गई थी। बहादुर ने फोन किया, शाबाद देर से उठेगा, शो मेम साहब तुम भी देर से आना। मैंने पूछा क्या बात है तो बोला साहब की तबीयत रात को जरा ठीक नहीं थी इसलिए देर से आंख लगी है। कहाँ है बहादुर, मुझे तो डरा दिया उसने।
1: क्या बजा? 9:30, पर वो लोग 10 बजे आएंगे।
3: कौन लोग? तुम्हें मालूम था डार्लिंग, आज हमारा सारा दिन बाहर रहने का प्रोग्राम है, फिर तुमने 10 बजे का अपॉइंटमेंट किसे दे दिया?
1: भाई मैंने नहीं, बहादुर ने।
3: बहादुर ने? ये बहादुर आज को मिस्टीरियस फिगर बन रहा है। देखो अनिल डार्लिंग, अब ज्यादा परेशान ना करो, हमारा संडे सब स्पॉइल हो जाएगा। तुम जल्दी से नहाकर तैयार हो जाओ, मैं चाय लाती हूँ और 10 बजे से पहले ही रखो चाय।
1: नहीं नहीं, अरे अरे भाई सुनो तो, ऐसा नहीं हो सकता, किसी की इज्जत का सवाल है, तुम नहीं जानती।
3: मैं सब जानती हूँ, यू गेट रेडी एंड नो मोर एक्सक्यूजेस, ओके? खूब तमाशा है। देखा, मैं कब से कह रही हूँ लेट्स गेट मैरिड, लेकिन जनाब को तो पहले प्रमोशन चाहिए, फिर बड़ा फ्लैट चाहिए, स्कूटी के बजाय कार चाहिए, और मेरे ख्याल से होने वाले बच्चे के लिए किसी स्कूल में जगह का बंदोबस्त भी पहले से ही हो जाना चाहिए। क्यों?
4: अरे इसमें हंसने की क्या बात है?
1: दिस इज कॉल्ड प्री प्लानिंग। हमारी शादी और बहादुर की शादी में बहुत फर्क है।
4: बहादुर आ गया लगता है।
3: हाँ।
1: बहादुर आया साहब।
2: ओ मैम साहब, आप भी आ गया।
3: वाह बहादुर, तुम तो आज बड़े टिप टॉप हो, क्या बात है?
2: हम साहब वो आज।
3: घबराने की कोई बात नहीं बहादुर, मुझे साहब ने सब कुछ बता दिया है।
2: सब कुछ बता दिया?
3: हाँ हाँ, डरो नहीं, मैं कबाब में हड्डी नहीं बनूंगी। जैसे ही वो लोग आएंगे मैं दूसरे कमरे में चली जाऊंगी, तुम बिल्कुल फिक्र ना करो।
2: नहीं नहीं मैम साहब, ऐसे कैसे हो सकता है, तुम इधर ही बैठना, हम सब कुछ संभाल लेगा। साहब वो लोग आ गए साहब, हम हाथ जोड़ता है साहब, आप हमारा इज्जत का ख्याल रखना साहब।
1: आइए आइए, तशरीफ लाइए।
5: सलाम साहब जी, सलाम साहब जी।
1: सलाम सलाम, बैठिए। अरे अरे नीचे नहीं,
5: नहीं साहब,
1: यहाँ यहाँ कुर्सी पर बैठिए।
5: अरे नहीं साहब, हम लोग नीचे ही ठीक है साहब।
1: ये कैसे हो सकता है, आप हमारे मेहमान हैं।
5: अच्छा लक्ष्मी, तुम इसी कुर्सी पे बैठ जाओ साहब जी, ये हमारा घर वाली है साहब, हमारा लड़की की माँ है साहब, ये बहुत शर्माता है साहब, बहुत शर्माता है। अरे मेरी शर्माती रहोगी या साहब को सलाम भी करोगी? सलाम करो।
6: सलाम साहब।
1: सलाम।
6: सलाम मैम साहब।
7: सलाम।
6: बहादुर, ये तुम्हारी मालकिन है, तुम तो बोला था कि तुम्हारे साहब ने भी शादी नहीं बनाया।
1: ये ठीक ही कहा था बहादुर ने आपसे, हमारी अभी शादी नहीं हुई पर एंगेजमेंट, मेरा मतलब है सगाई हो चुकी है।
5: मेम साहब शादी से पहले ही इसी घर में रहती हैं?
3: जी नहीं, मैं हॉस्टल में रहती हूँ।
5: होटल में साहब?
3: होटल नहीं, हॉस्टल, जहाँ सिर्फ लड़कियाँ रहती हैं। शादी के बाद मैं इसी घर में रहूंगी। नहीं नहीं नहीं, इस घर में नहीं साहब, इससे भी बड़ा घर लेंगे तब।
1: ये सब बातें इनसे करने की क्या जरूरत है, ये लोग बहादुर के रिश्ते के लिए आए हैं, हमारी शादी तय करने के लिए नहीं। बहादुर भाई, इन लोगों के लिए कुछ खाने पीने के लिए तो लाओ।
2: मैं अभी लाता हूँ साहब।
3: ठहरो बहादुर, मैं भी तुम्हारी मदद करती हूँ।
1: आप लोग ठंडा लेंगे या गरम?
5: नहीं साहब नहीं, हम बिल्कुल नहीं साहब, हम लड़की वाले हैं साहब, हम आपका पानी तो क्या उसमें नहा भी नहीं सकते साहब।
1: अरे भाई ये सब पुरानी बातें हैं, ये घर बहादुर के माँ बाप का तो है नहीं, आप यहाँ कुछ भी खा पी सकते हैं।
6: ए जी, बहादुर तो बोलता था कि साहब इसके माई बाप सब कुछ है, पर साहब तो कुछ और ही बोलते हैं।
1: नहीं नहीं नहीं, आप लोग गलत ना समझिए, मेरा मतलब था कि अभी हमारी शादी थोड़ी हुई है। रीटा।
3: हाँ, तो आप लोग ठंडा लेंगे या गरम?
5: अच्छा साहब, आप बहुत मजबूर करता है तो दोनों ले लेंगे साहब, दोनों ले लेंगे।
6: चलो आप साहब से साफ साफ बात कर लो।
1: क्या बात करना चाहते हैं आप लोग? अगर बहादुर के बारे में आप जानना चाहते हैं तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि लड़का नहायत शरीफ, मेहनती और अच्छे घर का है।

0: मेरे पास पिछले 10-12 बरस से है। इसका बाप मेरे बाप के पास काम करता था और हो सकता है कि इसका दादा मेरे दादा के पास रहा हो। और कुछ जानना चाहते हैं तो पूछिए।
1: नहीं शाम, नहीं, बहादुर के बारे में तो हम सब सब कुछ जानते हैं। उसका बाप हमारे गांव का इशार।
0: तो फिर रुकावट किस बात की है? फौरन शादी कर डालिए। और हाँ, बाय द वे, आपकी लड़की को बहादुर ने देखा तो है ना?
2: राम राम राम राम राम राम, क्या बोलते हैं साहब, शादी से पहले हम अपनी पार्वती को गैर मर्द को कैसे दिखाएंगे?
0: लेकिन लड़के लड़के को तो एक दूसरे को देख लेना चाहिए।
2: ना, ना, ना, ना, ना।
0: इसमें हर्ज ही क्या है, शादी तो उन दोनों को करनी है ना।
1: अरे क्या बोलता है साहब, हमने भी अपनी लक्ष्मी को शादी के बाद ही देखा था साहब।
0: वो तो नजर आ ही रहा।
1: क्या मतलब साहब?
0: नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था। मेरा मतलब ये था कि अब जमाना बदल गया है।
1: कुछ अदला बदला नहीं साहब, कुछ अदला बदला नहीं। दरअसल आदमी लोग बहुत बेशरम हो गया है साहब। हमारी पार्वती बहुत सुंदर है साहब। हाँ। कोई नुकस नहीं। हाँ, घर का सब काम का जानती है, खेती में काम करती है साहब, घर का चूल्हा चक्की।
0: खुशी की बात है ये तो। अब ये बताइए, शादी कब करना चाहते हैं आप लोग?
1: शादी की बात भी हो जाएगा साहब, पहले एक बात का फैसला हो जाना चाहिए साहब।
0: हाँ हाँ, क्या बात है?
1: तुम्हारी बात का साहब।
0: भाई मुझे कोई एतराज नहीं, बहादुर को रिश्ता पसंद है तो मैं कौन होता हूँ मना करने वाला।
1: नहीं साहब नहीं, बात ये साहब के बात ये कि
2: मैं... तो बोलते क्यों नहीं, इसमें संकोच की क्या बात है? अजी पार्वती की जिंदगी का सवाल है, बोल दो साहब को, साफ साफ साफ बात कर दो।
1: चल तू ही बोल दे साफ साफ।
0: देखिए अगर कुछ लेने देने की या दान दहेज की बात है तो वो आप लोग बहादुर से ही फैसला कर लीजिए।
1: नहीं साहब नहीं, दान दहेज लेने देने पर हम तो थूक थूक दे साहब। हाँ ये फैसला तो

0: कि तुम अपना शादी कब करोगे, उसके माफिक ही हम बहादुर और पार्वती की शादी का दिन निकालेंगे।
1: देखिए आप लोग हद से बढ़ रहे हैं।
2: मैं शादी कब करूंगा, कैसे करूंगा, कहाँ करूंगा, ये सब पूछने वाले आप कौन होते
3: हैं? चलो जी अब बस बहुत हो गया। हमने तुमको पहले ही बोला था कि बहादुर को शाह बोल दो, शाह का शादी होगा तो पार्वती की शादी करेंगे। अपनी छोकरी को

0: तो शाप का शादी होगा तो पार्वती की शादी करेंगे। अपनी छोकरी को ऐसे घर में कैसे छोड़ दे, अपना भी कोई धर्म है।
1: ठीक कहती है।
2: ना गुस्सा में क्यों है शाप?
3: बहादुर, तुम्हें पहले से इन लोगों से सब फैसला कर लेना था और फिर मेरे पास लाना था।
4: क्या फैसला करना?

0: रेत।
1: थैंक यू श्याम, थैंक यू। अब हम शांति से जा सकते हैं श्याम। अच्छा बहादुर, शादी जब श्याम का हो जाए तो हमको खबर देना।
0: अच्छा खबर नहीं, बल्कि आप सब लोगों को हमारी शादी में आना होगा।
1: जरूर आएंगे मैम श्याम, जरूर आएंगे। अच्छा सलाम श्याम। सलाम मैम,
0: आना होगा
1: जरूर।
2: गुड आइडिया, मैं बस गया और आया।
3: भीम श्याम जी, श्याम किधर गया?
0: अंदर कमरे में तैयार होने।
3: अच्छा
0: वाह बहादुर, तुमने तो आज कमाल कर दिया।
3: ये सब तो मैंने आपके लिए किया मैम साहब। हाँ हम श्याम नहीं था श्याम, तो इसलिए ये ड्रामा हमने सोचा। ठीक था ना मैम साहब?
0: अरे ठीक नहीं था बहादुर। अच्छा बहादुर, तुम इन दोनों को कहाँ से पकड़ लाए?
3: ये अब हमारा शादी तो बचपन में ही हो गया था। हाँ हम 10 बरस का था तब। अब तो हमारा गौना होने वाला मेम साहब। तब हम अपनी पार्वती को इधर बुलाएंगे।
0: क्या बात है, वाह बहादुर वाह। इनाम आज तुम भी मौज करो। हाँ
3: थैंक यू मेम साहब, थैंक यू मेम साहब।
4: अभी आपने सुनी निर्देशक गंगा प्रसाद माथुर। विविध भारती की इस प्रस्तुति के साथ ही आज का हवा महल कार्यक्रम समाप्त होता है।

चित्रलोक कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज कार्यक्रम में आपके साथ है आपकी दोस्त प्रीति शर्मा। हमने लिया है फिल्म फटा पोस्टर निकला हीरो से, इसे गाया है अरिजीत सिंह ने, गीत अमिताभ भट्टाचार्य का है, संगीत प्रीति।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
2: चित्रलोक का शेष भाग अंतराल के उस पार।

अंतराल के बाद चित्रलोक में आपका फिर से स्वागत है। आइए अब सुनते हैं जिसे हमने लिया है फिल्म लज्जा से। इसे गाया है के ने, गीत समीर का है, संगीत अनु मलिक का,

0: भागती दौड़ती जिंदगी में अपनी सेहत से हर कोई जूझ रहा है। पीसीओडी यानी पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज की समस्या के बारे में लोग आज भी बहुत कम सजग हैं। क्या है पीसीओडी, जानिए गायनेकोलॉजिस्ट लता देवलीकर से।
1: जब पेशेंट आता है एकदम से तो उसको लैप्रोस्कोपी, आईवीएफ या आईयूआई एडवाइस हम लोग नहीं कर सकते हैं, हम नेचुरल वे से करते हैं। पहले साइज ठीक ठाक करेंगे और उसको प्रेगनेंसी के लिए, कंसीव के लिए वो जो मेडिसिन है जिसे पुराने जमाने में हम क्लोमिफेन, टेट्राजोल और मल्टीविटामिन, विटामिन डी 3, ओमेगा 3 और क्या कम है दिख जाता है पेशेंट में, कुछ डिफिशिएंसी है हो, ये सब देकर।
0: सुनिए 6 जुलाई सेहतनामा शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आइए अब सुनते हैं हाफ गर्लफ्रेंड फिल्म का गाना। ऐश किंग और शशा त्रिपाठी की आवाजों में गीत रफत महमूद और तनिष्क बागची का है, संगीत दिया है तनिष्क बागची ने।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जया भारती। भारत में दक्षिण पश्चिम मॉनसून और तेज, मुंबई के लिए रेड अलर्ट जारी, चेतावनी। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शिवपुरी में 2500 विनिर्माण संयंत्र की आधारशिला रखी। विदेश मंत्री एस जयशंकर पश्चिम एशिया की 6 दिवसीय यात्रा पर, दोहा में कतर के प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जासिम अस्सानी से मुलाकात की। ओपेक प्लस ने बाजार स्थिरता में सहयोग के लिए अगले महीने से प्रतिदिन 188,000 बैरल तेल उत्पादन बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में आज रात से, और टी20 क्रिकेट विश्व कप में लॉर्ड्स में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच निर्णायक मुकाबला जारी। अब समाचार विस्तार से। देश में दक्षिण पश्चिम मॉनसून और तेज हो गया है। कई राज्यों में तेज, मुंबई के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने कल छत्तीसगढ़, गुजरात, कोंकण और गोवा, मध्य महाराष्ट्र, पूर्वी राजस्थान, हिमाचल, कर्नाटक, केरलम, माहे और मध्य प्रदेश में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। दिल्ली के कुछ हिस्सों, हरियाणा, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उड़ीसा, सौराष्ट्र, कच्छ, उत्तराखंड और उत्तर पूर्वी राज्यों में भी हल्की से तेज बारिश की संभावना है। महाराष्ट्र में तेज बारिश से जनजीवन प्रभावित है। मौसम विभाग ने मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगढ़ और रत्नागिरी सहित कोंकण जिलों में अगले 24 मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है।
1: हवाई अड्डे पर लगभग 1 घंटे के लिए रनवे संचालन अस्थायी रूप से बंद करना पड़ा, जिससे उड़ान सेवाएं प्रभावित हुई। बृहन्मुंबई महानगर पालिका यानी के अनुसार दिन भर में पेड़ गिरने की 64 घटनाएं तथा दीवार या मकान के कुछ हिस्से गिरने की 8 घटनाएं दर्ज की गई। शहर में पेड़ गिरने की 2 अलग अलग घटनाओं में 63 वर्षीय एक व्यक्ति और 18 वर्षीय एक युवक की मौत हो गई। भारी बारिश के कारण ठाणे और पालघर जिलों में भी व्यापक नुकसान हुआ। लगातार हो रही बारिश के कारण महाराष्ट्र की कई नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। इसके चलते कई सड़कें भी बाधित हुई है और गडचिरी, कोल्हापुर, रायगढ़ और रत्नागिरी सहित कई जिलों में यातायात प्रभावित हुआ है। इस बीच रायोशी जलप्रपात में भारी बारिश के कारण अचानक जलस्तर बढ़ जाने से फंसे 10 से 12 पर्यटकों को पुलिस और बचाव दल ने सुरक्षित किया। शैलजा तिवले, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: गुजरात में अगले 7 दिनों में मूसलाधार बारिश का अनुमान है। डांग, नवसारी, वलसाड़, दमण और दीव, दादरा और नगर हवेली, भावनगर, अमरेली तथा गिर सोमनाथ में कल बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। मछुआरों को अगले 5 दिन तक समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने रक्षा विनिर्माण संयंत्र की आधारशिला रखी। यह संयंत्र अडानी समूह द्वारा लगभग 2,500 करोड़ रुपए के निवेश से।
2: केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि आज शिवपुरी के इतिहास में एक नया अध्याय लिखा जा रहा है। उन्होंने

0: इसे एक ऐतिहासिक कहा कि ये परियोजना जिले को औद्योगिक विकृति, युवा नए हथियार और मिसाइल, भारतीय सेना को मजबूत करेंगी। ये कारखाना राष्ट्रीय राजमार्ग 27 पर स्थित पाली गांव में बनेगा। इसमें गोला बारूद, उच्च तकनीक वाले हथियार और मिसाइल का उत्पादन किया जाएगा। अडानी समूह के निदेशक जीत अडानी ने कहा कि समूह वर्ष 2000 में 1,20,000 रोजगार सृजित करेगा। भोपाल से अभिनव गोयल की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
1: आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं समाचार संध्या में आपका फिर। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर आज कतर, बहरीन, कुवैत और ओमान सहित पश्चिम एशिया की अपनी आधिकारिक यात्रा शुरू की। यात्रा के पहले डॉक्टर जयशंकर दोहा पहुंचे, जहां उन्होंने कतर के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जासिम अस्सानी से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न पहलुओं, विशेष रूप से ऊर्जा, व्यापार, निवेश, संपर्क, सुरक्षा और जनसंबंधों की समीक्षा की। सोशल मीडिया पोस्ट में विदेश मंत्री ने कहा कि उन्होंने रणनीतिक साझेदारी को और गहरा करने के नए अवसरों पर विचार विमर्श किया। सुरक्षा तथा कल्याण सुनिश्चित करने के लिए कतर के प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया और पश्चिम एशिया संघर्ष तथा उसके प्रभाव पर की सराहना की। डॉक्टर जयशंकर इस महीने की 13 तारीख को अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर की यात्रा करेंगे, जहां वे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के कार्यकाल के लिए भारत के आधिकारिक अभियान का शुभारंभ करेंगे। इंडोनेशिया गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की वहां की ऐतिहासिक यात्रा की शताब्दी मनाएगा। इसके लिए वर्ष 2026 और 2027 के दौरान 15 महीने का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इंडोनेशिया में भारत के राजदूत संदीप चक्रवर्ती ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कल से शुरू होने वाली इंडोनेशिया यात्रा के दौरान इन कार्यक्रमों का शुभारंभ किया जाएगा। शताब्दी समारोहों में प्रदर्शनियां और पूरे वर्ष चलने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम।
2: प्राइम मिनिस्टर्स अराइवल इन इंडोनेशिया,
3: प्रधानमंत्री के सांस्कृतिक और शैक्षिक आदान प्रदान वर्ष के रूप में मनाएंगे। इस अवसर पर एक विशेष प्रदर्शनी आयोजित की गई है। हमने पर एक पुस्तक भी तैयार की है, जिसे माननीय प्रधानमंत्री को भेंट किया जाएगा। इसके अलावा रविन्द्रनाथ टैगोर की इंडोनेशिया यात्रा की स्मृति में पूरे वर्ष विभिन्न सांस्कृतिक और शैक्षिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
1: पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक प्लस ने वैश्विक तेल बाजार की स्थितियों की समीक्षा के लिए आयोजित वर्चुअल बैठक के बाद इस वर्ष अगस्त से प्रतिदिन और बैरल तेल उत्पादन बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। आज हुई बैठक के बाद जारी बयान में तेल उत्पादक समूह ने कहा कि यह निर्णय बाजार स्थिर किया गया है। समूह ने कहा कि वह वैश्विक तेल बाजार पर नजर रखना जारी रखेगा और सहमति वाले उत्पादन लक्ष्यों का अनुभाग लेने वाले देशों की अगली बैठक 2 अगस्त को निर्धारित है। ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामी आज तेहरान में राजनीतिक, सैन्य और धार्मिक नेतृत्व ने सामूहिक प्रार्थना में भाग लिया। 9 जुलाई को मशहद में आयतुल्ला अली खामेनेई का अंतिम संस्कार किया जाएगा। इसके बाद 40 दिनों तक सार्वजनिक शोक मनाया जाएगा। ब्रिटेन की सेना ने बताया कि लाट पर आज एक मालवाहक जहाज पर हमला हुआ। ब्रिटेन के यूनाइटेड किंगडम मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस UKMTO ने बताया कि यह हमला होदित हूती विद्रोहियों के नियंत्रण वाले क्षेत्र में है। वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने विनाश का भारत का आभार व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में सुश्री रोड्रिगेज ने कहा कि ब्रिटेन, कतर, फ्रांस, भारत, बारबाडोस, अर्जेंटीना के बचाव कर्मियों को उनके अमूल्य योगदान और संकट की इस घड़ी में एकजुटता प्रयासों के प्रति वेनेजुएला सम्मान व्यक्त करता है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर

0: उपलब्ध है। ये आकाशवाणी है। इस समारोह में शामिल होंगे। मंत्रालय ने बताया कि यह समारोह सहकार से समृद्धि की परिकल्पना के अनुरूप आयोजित किया जाएगा। श्री शाह कई महत्वपूर्ण पहलुओं का उद्घाटन करेंगे। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत रोजगार और आज 2025 के 1 जुलाई से सफलतापूर्वक लागू होने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। केंद्रीय मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस मिशन के अंतर्गत राज्यों के लिए 25,000 करोड़ रुपए की सहायता राशि जारी की। उन्होंने कहा कि विकसित भारत जी राम जी को पूरे देश में सिर्फ एक दिन में लागू कर दिया गया।
1: मनरेगा को पूरे देश में लागू करने में 3 साल लगे थे, लेकिन मुझे आप सब पर गर्व है, 1 साल 2 साल नहीं, पहले दिन ही योजना एक साथ पूरे देश में लागू हो गई। 100 दिन नहीं, अब 125 दिन रोजगार, 5 साल में 7.5 लाख करोड़ से ज्यादा 1,000 पंचायतों में ठीक से लग गई, तो गांव संपूर्ण विकसित हो जाएंगे, समृद्ध और विकसित गांव का निर्माण हो जाएगा।
0: ग्रामीण विकास मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों का एक दल आज से 11 जुलाई तक कर्नाटक के दौरे पर है। इसका उद्देश्य राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ समीक्षा और प्रमुख योजनाओं की प्रगति और कार्यान्वयन का आकलन करना है। छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति को विश्व पटल पर विशिष्ट पहचान दिलाने वाली विश्व विख्यात पंडवानी गायिका और पद्म विभूषण से सम्मानित डॉक्टर तीजन भाई को आज शाम दुर्ग जिले में स्थित उनके पैतृक गांव गनियारी में पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। इस अवसर पर जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारियों, कलाकारों, साहित्यकारों ने नम आंखों से लोक कला की इस महान विभूति को अंतिम प्रणाम किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोशल मीडिया पर विरासत के प्रसार के प्रति तीजन बाई का योगदान अविस्मरणीय रहेगा। उपराष्ट्रपति ने कहा कि तीजन बाई ने भारत की समृद्ध लोक सांस्कृतिक परंपराओं की कालजयी कहानियों को लोगों तक पहुंचाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उनका निधन कला और संस्कृति जगत के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। प्रधानमंत्री मोदी ने वयोवृद्ध व्यक्त किया है। जम्मू कश्मीर में वार्षिक श्री अमरनाथ यात्रा में भारी जनभागीदारी दर्ज की गई है। तीर्थयात्रा के 55,000 से अधिक तीर्थयात्रियों ने पवित्र गुफा मंदिर में दर्शन किए। आज रिकॉर्ड 24,648 श्रद्धालुओं ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज कैलाश मानसरोवर यात्रा 2026 के पहले जत्थे को चंपावत जिले के तनकपुर कहा कि कैलाश मानसरोवर यात्रा केवल एक धार्मिक यात्रा नहीं है, बल्कि आध्यात्मिक जागरूकता, सांस्कृतिक एकता और राष्ट्रीय सद्भाव का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि यह तीर्थयात्रा सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास, पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा देती है। युवा मामले और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने आज सुबह नई दिल्ली में आयोजित फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल पहल के 80वें संस्करण में भाग लिया। श्री सत्य साई बाबा की 100वीं जयंती के उपलक्ष्य में श्री सत्य साई सेवा संगठन के सहयोग से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। डॉक्टर मांडविया ने मीडिया से 1 घंटा मोबाइल स्क्रीन से दूर रहने का आग्रह किया।
2: साइकिलिंग हार्ट को ठीक रखता है और बॉडी को भी फिट रखता है, का काम करता है। एक साइकिलिंग से पोल्यूशन का सॉल्यूशन होता है, अपने स्वयं को फिट रखती है। साइकिलिंग ही ट्रैफिक का भी समाधान है, अपने स्वयं को फिट रखें और फ्यूल की बचत करें।
0: फीफा फुटबॉल विश्व कप के प्री क्वार्टर फाइनल में आज नॉर्वे का सामना ब्राजील से होगा। यह मैच भारतीय समयानुसार रात 1:30 बजे से न्यू जर्सी में खेला जाएगा। वहीं कल सुबह 5:30 बजे इंग्लैंड का मुकाबला मैक्सिको से होगा। उधर महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में लंदन के लॉर्ड्स में ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड के खिलाफ मैच में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। ताजा समय इंग्लैंड ने 11वें ओवर में 3 विकेट पर 70 रन बना लिए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत में दक्षिण पश्चिम मॉनसून जारी, कई राज्यों में तेज वर्षा की चेतावनी। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री

300 करोड़ रुपए की लागत वाले रक्षा विनिर्माण संयंत्र की आधारशिला रखी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर पश्चिम एशिया की 6 दिवसीय यात्रा दोहा में कतर के प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जासिम अस्सानी से मुलाकात की। ओपेक प्लस ने बाजार स्थिरता में सहयोग के लिए अगले महीने से प्रतिदिन 188,000 बैरल तेल उत्पादन बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। T20 क्रिकेट विश्व कप में लॉर्ड्स में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच निर्णायक मुकाबला जारी और फीफा फुटबॉल का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन प्रस्तुत है कार्यक्रम आपके लिए। कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं लता मंगेशकर की आवाज के साथ। फिल्म का नाम है तुम्हारे लिए, गीत लिखा है नक्शलाल पुरी ने, संगीत जयदेव का है।

0: करता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है जीवन का संगीत, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि भमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री संगीत सरिता नई श्रृंखला शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका 45 मिनट सिर्फ विविध भारती पर।
2: आइए सुन, स्वीकार किया मैंने फिल्म का ये गाना, गीत निदा फाजली ने लिखा है, संगीत से सवारा है उषा खन्ना ने।

कार्यक्रम का अगला गाना लता मंगेशकर की आवाज में है, फिल्म का नाम है कालीचरण, गीत इंद्रजीत सिंह तुलसिया का है, संगीत कल्याण जी आनंद जी का।

0: इस गाने के साथ ही प्रीति शर्मा को कार्यक्रम के लिए समाप्त करने की अनुमति दीजिए और आप सुनते रहिए विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन।
1: देश की सुरीली धड़कन विविध भारती चैनल पर रोजाना सुबह 7 बजे सुनिए पुराने फिल्मी गीतों का कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। प्रायोजक वीको प्रोडक्ट।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: आज के फनकार कार्यक्रम आप सुनेंगे कुछ ही पलों।

0: इसी के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: चंदा मामा दूर की हुए पकाके,
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: एक जमाना था 1951 या 50 में, बाबूलाल चतुर्वेदी एक यहाँ प्रोग्राम इंचार्ज दिल्ली से आए,
0: संगीतकार रवि।
2: उन्होंने एक दिन फोन किया, कहने लगे यहाँ हम लोरियां रिकॉर्ड करना चाहते बना रिकॉर्ड कर। तो मेरी माँ अक्सर गाना गा के नहीं एक लाइन सुना करते, दो लाइन, चंदा मामा दूर के पुए पकाए मूर के। मैंने उसकी ट्यून, चंदा मामा दूर के पुए पकाए मूर के।
1: आप खाए थाली में
0: जी, अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती आपका
3: आज के फनकार।

0: Right, right, right. All right.
1: How old dear, hum chalte hain.

फिल्म शहनाई का ये गाना सुनकर आपने अंदाजा लगाना शुरू कर दिया होगा कि आज के फनकार कार्यक्रम आज किस प्रतिभा पर केंद्रित है। लेकिन दरअसल इस गाने के जरिए अगर आप अंदाजा लगाएंगे तो शायद आपका अंदाजा बहुत गलत होगा, क्योंकि आज के फनकार कार्यक्रम आज जिस हस्ती पर केंद्रित है उसका ताल्लुक इस गाने को लिखने वाले गीतकार से है, जो निर्देशक भी रहे, यानी कि पीएल संतोषी। लेकिन आज हम पीएल संतोषी की बात नहीं कर रहे, बल्कि उनके सुपुत्र राजकुमार संतोषी की बातें आज के फनकार कार्यक्रम में।

निर्माता, निर्देशक और गीतकार पीएल संतोषी के बेटे होने के बावजूद राजकुमार संतोषी का फिल्मों में सफर आसान नहीं रहा। उन्होंने बहुत बुनियादी शुरुआत की गोविंद निहलानी की फिल्म अर्धसत्य के साथ। ये फिल्म सन 1982 में आई थी और राजकुमार संतोषी इस फिल्म में असिस्टेंट डायरेक्टर थे। जरा सोचिए कि बतौर स्वतंत्र निर्देशक अपना करियर शुरू करने में राजकुमार संतोषी को पूरे 8 साल लग गए। सन 1990 फिल्म आई घायल। सनी देओल की मुख्य भूमिका वाली ये फिल्म एक गुस्सैल नौजवान की कहानी है जो व्यवस्था के खिलाफ संघर्ष करता है। राजकुमार संतोषी ने इस संवेदनशील कहानी का ताना बाना काफी चतुराई से बुना और उन्हें अपनी इस पहली ही निर्देशित फिल्म में काफी प्रशंसा मिली। सन 1990 में राजकुमार संतोषी को फिल्म घायल के लिए मिला सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का फिल्म फेयर पुरस्कार।

फिल्म घायल बेहद कामयाब रही। राजकुमार संतोषी के लिए बड़ा आसान था कि वो अपनी दूसरी फिल्म में इसी तरह के किसी विषय को दोहराएं, लेकिन एक अच्छे निर्देशक की पहचान ये होती है कि वो अलग अलग विषयों में अपनी परीक्षा लेता है, अपने आप को आजमाता है। राजकुमार संतोषी ने अपनी दूसरी फिल्म घायल से बिल्कुल अलग विषय पर बनाई। ये फिल्म थी सन 1993 में आई दामिनी।

0: एक चौंका देने वाली फिल्म लेकर आए, क्योंकि उनसे उम्मीद नहीं की जा रही थी कि वो इस बार बनाएंगे एक कॉमेडी फिल्म। ये फिल्म थी अंदाज अपना अपना। ये वो दुर्लभ मौका था जबकि सलमान खान और आमिर खान एक साथ रजत पट पर नजर आए। अंदाज अपना अपना को आज भी एक बेहतरीन कॉमेडी फिल्म माना जाता है। इसके बाद राजकुमार संतोषी ने बनाई फिल्म बरसात। इस फिल्म को कोई खास सफलता नहीं मिली, लेकिन फिल्म बरसात के जरिए बॉबी देओल ने फिल्मों की दुनिया में अपना पहला कदम रखा।
1: हमको सिर्फ तुमसे प्यार है, हमको सिर्फ तुमसे प्यार है।
0: साल 1996 में घायल से मिलते जुलते विषय को लेकर उन्होंने बनाई फिल्म घातक। साल 1998

राजकुमार संतोषी की खासियत ये है कि वो हर बार एक अलग विषय लेकर आते हैं। एक निर्देशक के तौर पर वो हर बार अपनी परीक्षा लेते हैं, अपने आप को आजमाते हैं और अक्सर बॉक्स ऑफिस पर कामयाब साबित होते हैं। साल 2000 में उनकी फिल्म पुकार को चारों तरफ बड़ी प्रशंसा मिली।

इसके अगले ही साल राजकुमार संतोषी ने अपने करियर की एक बहुत महत्वपूर्ण फिल्म बनाई। इसका नाम था द लेजेंड ऑफ भगत सिंह। अजय देवगन शीर्ष भूमिका।

फिल्म भगत सिंह के लिए राजकुमार संतोषी को नेशनल फिल्म अवार्ड मिला और फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। इसके बाद साल 2004 में हॉकी

बच्चन राजकुमार संतोषी के निर्देशन में पर्दे पर नजर आए। इसके बाद तो अमिताभ बच्चन को उन्होंने दोहराया अपनी अगली फिल्म फैमिली में। ये फिल्म साल 2006 में आई। साल 2008 में अजय देवगन की मुख्य भूमिका वाली फिल्म आई हल्ला।

साल 2009 में एक बार फिर से राजकुमार संतोषी ने एक नई किस्म की कॉमेडी रोमांटिक फिल्म वो लेकर आए जिसका नाम था अजब प्रेम की गजब कहानी। रणबीर कपूर वाली ये फिल्म इस साल की बेहद कामयाब फिल्मों में गिनी गई। संगीतकार थे प्रीतम।

0: आज के बाद कार्यक्रम आज केंद्रित था। निर्देशक राजकुमार संतोषी, यूनुस खान, प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

0: बीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।
1: छाया गीत के सुनने वालों को बारिश के साथ जैसे छा गई है उदासी की धुंध, आसमान जैसे बरस रहा है, और दुनिया के जितने उदास लोग हैं यह आसमान उनका साथ दे रहा है, यह आ रहा है अपनी बातें। ये बारिश नहीं है, ये कुदरत का दुख है।

0: कभी कभी यूं लगता है जैसा नहीं है, जैसे अनगिनत अनजान चेहरों वाली इस भीड़ भरी दुनिया में हम एक अजनबी हैं। हर कोई धक्का मार रहा है, एक अजनबी जो इस संगदिल दुनिया में तलाश रहा है अपना ठौर।
1: कभी

0: तेरे दिल की जुबान ये आंसू में।
1: शाम के सुरमई आसमान पर तुम्हारा ख्याल जैसे डूबता हुआ सूरज, इस ख्याल को भी सूरज की तरह डूब जाना है। शाम के इस सुरमई आसमान पर आखिरकार अंधेरा छा जाना है। शाम का ये सुरमई आसमान, अंधेरे में डूबा हमारा दिल है।

0: वही हूँ।
1: जब जब कल्याण जी आनंद जी
0: रहा गए देशों में हर दम मेरे इश्क तारा।
1: दो बदन शकील बदायूनी रवि।
0: ये आंसू मेरे दिलान है।
1: हमराही हसर जयपुरी शंकर जयकिशन। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। आज का छाया गीत इतना ही। इजाजत दीजिए यूनुस खान को। नमस्कार।

0: सुनिए एक खुशखबरी।
1: कहिए ना।
0: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखियां फोन बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आपका कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर।
2: शुक्रिया, शुक्रिया।
0: रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए आपकी बात। सुनिए अपनी पसंद के गाने।

0: साथ।
1: FM 101.6 MHz पर हम बोल रहे हैं विविध भारती के इंदौर केंद्र से रात्रि के चारों की प्रतीक्षा कीजिए।

FM 101.6 MHz पर हम बोल रहे हैं विविध भारती के इंदौर केंद्र से। रात्रि के 11:05 हो रहे हैं। संपन्न हो रही है हमारी आज की सांध्यकालीन सभा। अपनी प्रातःकालीन सभा के साथ कल सुबह 5:51 पर इसी मीटर पर आपसे पुनः भेंट होगी। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। जय हिंद।